आपको लगता होगा कि शायद इसके कारण भी हम बता दें कि ये किन कारणों से होता है। यदि आपको लगता है कि आपको सर्वाइकल है तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होने लगते हैं कि आपको गर्दन में हल्का सा दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और या तो या आपको उठने बैठने और चलने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे नियम जो मैं आज आपको बताऊंगी, यानी सर्वाइकल में अपनाने वाले योग्य नियम। गर्दन को लंबे समय तक एक ही स्थिति में बिल्कुल ना रखें। मोबाइल को नीचे झुककर देखने की बजाय आंखों के सामने ही रखें और कम समय के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। जब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करें तो आप जीरो पॉइंट का ही, लेकिन आपको चश्मा लगा करके ही मोबाइल को देखना है। हर 30-40 मिनट बाद 2-3 मिनट का ब्रेक जरूर लें। यदि आप किसी जॉब में हैं या घंटों बैठकर आपको काम करना पड़ रहा है, बहुत ऊंचा या बहुत मोटा तकिया ना लगाएं, पतला तकिया बेहतर रहता है। अचानक गर्दन झटकने या भारी वजन उठाने से भी बचें। कई बार मैंने देखा है महिलाएं सुबह जब काम करती हैं अपने घरों में, पानी भारी से भारी बाल्टी को यूं ही झटके में उठा लेती हैं, या फिर जमीन पर कोई चीज गिर जाती है तो उसे झटके से झुक करके उठा लेती हैं। तो ये आदतें भी आगे चल करके आपको सर्वाइकल का शिकार बना सकती हैं। रोज 20 से 30 मिनट हल्की सैर करें। पर्याप्त नींद यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त नींद कहलाती है, जो कि हर किसी को लेनी चाहिए। सर्वाइकल के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल कई घरों में सुनने को मिला है, देखने को मिला है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि आप अपना वजन कम करें और योग अभ्यास करें। गिरवा संचालन यानी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने के लिए यह आसन किया जाता है। आप रोज 15 से 20 मिनट इस आसन को कर सकते हैं, जो कि है ग्रीवा संचालन। दूसरा है ताड़ासन। कई बार बहुत सारी सीरीज में हमने ताड़ासन के बारे में बताया है। भुजंग आसन, मकरासन, मामरी आसन, मांजरी आसन या उसे कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं, बालासन और अंत में शवासन, जो कि 5 से 10 मिनट हम आराम की मुद्रा में जाकर के इसको कर सकते हैं। अब आता है प्राणायाम की स्थिति। अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट और 5 मिनट करके आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। सर्वाइकल के लिए आज मैं आपको एक डाइट चार्ट भी देने वाली हूं, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक का आपको हर एक खाने की डाइट उसमें बताई जाएगी। सबसे पहले तो सुबह गुनगुना पानी, आपको आदत डालने

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका अपना सुबह का आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी पहली किरण, जहां हर सुबह होती है नई उम्मीदों भरी, नई ऊर्जा और ईश्वर से जुड़ाव का एक नया अवसर प्रदान करने वाली। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और आज की ये पहली किरण समर्पित है देवों के देव महादेव यानी शिव शंभू को। दोस्तों, शिव केवल एक नाम नहीं, ये एक भाव है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। शिवत्व का मतलब है शांत रहकर भी शक्तिशाली होना। हम कई दफा हर एक बात का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, ना जाने कितना ज्ञान है हमारे पास, पर शिवत्व हमें ये सिखाता है, जब हम शांत रहते हैं ना, तो हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं, खुद को भी और सामने वाले को भी वो चीज़

महसूस होती है। सब कुछ पाकर भी अहंकार से दूर रहना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। शिव हमें सिखाते हैं, अगर जीवन में कुछ पाना है तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा।

दोस्तों, शिव के बारे में मैं क्या ही बोलूं। शिव अपने आप में पूरी दुनिया है, यानी पूरा ब्रह्मांड शिवमय है। लेकिन इनका एक रूप है तांडव का। जब ये बहुत क्रोधित होते हैं तो ये तांडव करते हैं। पर इसका एक और पक्ष भी है, चलिए बताते हैं। कहते हैं जब संसार में असंतुलन बढ़ जाता है तो महादेव तांडव करते हैं। लेकिन ये तांडव विनाश नहीं, बल्कि नई सृजन की शुरुआत होती है। इसका संदेश ये है कि जब आपके जीवन में कुछ टूटता है तो समझ लीजिएगा कुछ नया बनने वाला है।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुबह का यानी भोरे भोरे का आध्यात्मिक कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शिव शंकर शिव शंभू की। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है जो कि जाना जाता है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र के नाम से, जिनके शब्द हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नाकाराय नमः शिवाय। यानी ना शब्द का क्या अर्थ है ये इस पूरे दोहे में बताया गया है। दोस्तों, ये स्तोत्र सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारे मन को शांति देने वाला एक दिव्य कंपन है। रोज सुबह अगर 5 मिनट भी ओम नमः शिवाय का जाप करें तो मन शांत और विचार सकारात्मक हो जाता है। कहते हैं कि जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उसमें हम सभी को समाहित कर लेते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं, हम अपने अपनों के लिए और इस पूरे विश्व की शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं। पर जब खुद की समृद्धि और कुशलता की बात आती है तो हमें ओम हटा के यानी केवल नमः शिवाय का जप करना चाहिए। आइए आप पहले एक भजन का आनंद उठाएं, फिर उसके बाद इस पूरे स्तोत्र और इसका क्या मतलब है मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगी।

जी हाँ दोस्तों, चलिए तो अब सुन लेते हैं कि आखिर में शुभंक्षाक्षरी स्तोत्र का अर्थ क्या है और हर एक दोहे में हर एक शब्द का क्या तात्पर्य है। सबसे पहले ना यानी ना

जो सर्पों की माला धारण करते हैं, तीन नेत्र वाले हैं, भस्म से जिनका शरीर अलंकृत है, जो महान ईश्वर हैं, जो नित्य हैं, शुद्ध हैं और दिगंबर हैं, उन ना अक्षर वाले स्वरूप शिव को प्रणाम है। दूसरा शब्द है माँ। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय

जो गंगा जल और चंदन से पूजित हैं, नंदी और गणों के स्वामी हैं, मंदार और अनेक पुष्पों से जिनकी पूजा होती है, उन माँ अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अगला शब्द है शी। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्ष ध्वर नाशकाय, श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो पार्वती जी के मुख कमल के प्रिय हैं, जो यक्ष यानी दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, नीलकंठ और वृषभ यानी नंदी ध्वज वाले हैं, उन शी अक्षर वाले शिव स्वरूप को प्रणाम। अगला शब्द है वा, यानी वशिष्ठ कुंभोद्व गौरतमाय, मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्राकर वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। जिनकी पूजा वशिष्ठ, अगत्स, गौतम आदि ऋषि और देव करते हैं, जिनकी आंखें चंद्र, सूर्य और अग्नि के समान हैं, उन वा अक्षर स्वरूप वाले शिव को प्रणाम। अब आखिरी शब्द यानी या। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, पिन्नाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै अकाराय नमः शिवाय। जो यक्ष स्वरूप जटाधारी हैं, पिनाक यानी त्रिशूल धारण करते हैं, सनातन हैं, दिव्य और दिगंबर देव हैं, उन या अक्षर स्वरूप शिव को प्रणाम। अंत में समापन श्लोक, पंचाक्षर मिदम पुण्यम यह पटेक्षे समनिधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो व्यक्ति इस पवित्र पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ आनंदित रहता है। सरल भाषा में अगर समझने को कहें दोस्तों, तो नामा शिवाय यानी नमः शिवाय, ये पांच अक्षर केवल मंत्र नहीं, ये जीवन के पांच सूत्र हैं। ना माने नम्रता, मा माने मन की शुद्धता, शा माने शांति, वी माने विश्वास और या माने आत्मयोग। जो इन्हें जी लेता है वही सच्चे अर्थ में शिव

तो दोस्तों, शिव और साधना यानी शिव और शक्ति, इनका अगर हम दैनिक जीवन से जुड़ाव देखते हैं तो कैसे देखते हैं? शिव जी की साधना है शक्ति यानी माँ पार्वती। शिव जी की साधना बहुत सरल है, ना कोई दिखावा ना कोई भव्यता, बस एक सच्चा मन, थोड़ी सी श्रद्धा और एक लोटा जल। भोले बाबा तो इसी इतने में खुश हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हमें एक आत्मिक शांति मिलती है और इससे ये सीख मिलती है कि अहंकार को बहाना है और जीवन को सरल बनाना है। जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं होती, यही है शिवत्व।

अब चलते हैं उस ओर। शिव, शिव यानी ये जगत, ये विश्व, हर कहीं है शिव। और प्रकृति, प्रकृति यानी पार्वती, यानी वो शक्ति जो शिव की शक्ति कहलाती है। चलिए इन दोनों का संबंध क्या है इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महादेव का हर रूप हमें प्रकृति से जोड़ता है। जटा में गंगा यानी कि जल का महत्व, गले में सर्प यानी कि भय पर नियंत्रण, शरीर पर भस्म यानी जीवन की सच्चाई। शिव कहते हैं प्रकृति के साथ रहो, तभी जीवन संतुलित रहेगा। बेशक अगर आज की दुनिया से इसे हम जोड़ के देखें तो आधुनिक दुनिया आजकल कहीं ना कहीं मोबाइल में ही सिमट के रह गई है, जबकि असली जीवन हमें मिलता कहाँ से है? प्रकृति से, नेचर से, इस प्रकृति की गोद से।

तो दोस्तों आज की पहली किरण में बस इतना ही याद रखिए, शिव बाहर नहीं आपके भीतर हैं, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। और जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं यानी शिव और शक्ति को एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं भोलेनाथ के कुछ नामों की ओर और उनका अर्थ क्या है, आखिर में इनका इतना बहुरूपी नाम क्यों है। हर नाम अपने भीतर एक गहरा अर्थ

0: और जीवन जीने का तरीका छुपाए हुए है। चलिए आपको उसे रूबरू कराते हैं। भोलेनाथ, भोले यानी सरल, निष्कपट भाव वाले भगवान। ये नाम हमें ये सिखाता है कि जीवन में सरल और सच्चे रहो। चालाकी से नहीं, दिल से जीने वाले ही सच्चे सुखी होते हैं। महादेव, देवों के देव, सबसे महान। महान बनने के लिए दूसरों को छोटा नहीं करना पड़ता। असली महानता विनम्रता और सेवा में है। नीलकंठ, जिसने विष को अपने गले में धारण किया, जीवन की नकारात्मकता को अंदर रोककर दूसरों तक ना फैलाना, ये है नीलकंठधारी का असली मतलब। हर कड़वाहट को सहन करना और सकारात्मकता में बदलना। योगेश्वर, योग के स्वामी, ध्यान के देवता। रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालना। मन को शांत रखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्वरूप, अगर आज के दौर की बात करें तो उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालें और अपने मन को उस ओर अग्रसर करें जहां आपके मन को शांति की प्राप्ति हो। रुद्र, क्रोध और विनाश के देव। क्रोध बुरा नहीं होता दोस्तों, अगर वो अन्याय के खिलाफ हो। गलत के खिलाफ खड़े होना भी जरूरी है। चंद्रशेखर, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जीवन में शांति और संतुलन रहना जरूरी है। तो ये गुण सीखते हैं हम भोलेनाथ के चंद्रशेखर स्वरूप से। पशुपतिनाथ, सभी जीवों के स्वामी। हर जीव के प्रति दया और प्रेम रखना। प्रकृति और जीव जंतु का सम्मान करना। शिव के हर नाम में एक सीख छुपी है। अगर हम इन नामों को केवल जपने के बजाय जीने लग जाएं, तो हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा।
1: सम्मान करो इसका, शुक्र करो, क्योंकि प्यार
2: से खूबसूरत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में।

दोस्तों, शिव पूजन में वेल पत्र का विशेष स्थान है। इसके पीछे एक सुंदर भावपूर्ण कथा जुड़ी है, माता पार्वती और भगवान शिव की। मान्यता है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने जंगल में रहकर अत्यंत सरल जीवन अपनाया। तब के दौरान वे अक्सर बेल यानी बिल्व वृक्ष के नीचे ध्यान करती थी। कहा जाता है कि पार्वती जी के तप, पसीने और तप ऊर्जा से वेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस वृक्ष में देवी का अंश माना गया। जब शिव जी पार्वती जी से प्रसन्न हुए तो उन्होंने इस वृक्ष को वरदान दिया, जो भी मुझे वेल पत्र अर्पित करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। वेल पत्र की तीन पत्तियां दर्शाती हैं कि वेल पत्र आमतौर पर तीन पत्रियों वाला यानी त्रिपत्र वाला होता है, जो बहुत गहरा संदेश देता है। पहला त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, दूसरा त्रिगुण सत्व रज तम। ये तीनों ही गुण हम इंसानों में यानी आप सभी में और हम में पाए जाते हैं। जो जैसा कर्तव्य करता है यानी जिसके जो कर्म होते हैं उसी हिसाब से उसके ये गुण उसमें निहित माने जाते हैं। त्रिशक्ति यानी इच्छा ज्ञान और क्रिया। और एक और सुंदर भाव, ये तीन पत्तियां शिव शक्ति जीव के मिलन का प्रतीक भी मानी जाती हैं। वेलपत्र की शीतल प्रकृति शिव के उग्र रूप को शांत करती है। ये सरलता और पवित्रता का प्रतीक है जो शिव को सबसे अधिक प्रिय है। पार्वती जी का अंश होने के कारण ये शिव शक्ति का मिलन दर्शाता है। शिव को बेलपत्र इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें प्रेम, तप और समर्पण छुपा है। अगर हम भी अपने कर्मों में सरलता, शुद्धता और सच्चा भाव जोड़ दें तो हमारा हर काम भी भगवान को अर्पण हो जाएगा।

दोस्तों, आपने कभी एक बात पे गौर फरमाया है? हो सकता है आपने नहीं गौर फरमाया हो, तो चलिए मैं आपको उस ओर लेके चलती हूँ। कभी आपने देखा है कि जो हमारा शिव परिवार है, यानी माता पार्वती, भोलेनाथ, कुमार कार्तिकेय और हमारे गोलू मटोलू जी, यानी कि हमारे गणपति जी, इन सभी की सवारी पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक दूसरे के कहीं ना कहीं दुश्मन पक्ष माने जाते हैं। जैसे कि माता रानी यानी पार्वती जी का जो वाहन है वो है सिंह, और वहीं पे अगर हम भोलेनाथ की बात करते हैं तो उनका जो सवारी है वो है वृषभ, और वहीं पे दूसरी ओर देखें यानी उनकी सवारी मूषक, और कुमार कार्तिकी उनकी सवारी मयूर यानी मोर। ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपक्ष को दर्शाते हैं, पर इससे जो शिक्षा निकल के आती है वो ये है कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी समाज में रहें, हमें कैसे रहना है, शांत होकर रहना है। हमें अगर हमारा उग्र स्वरूप भी है तो वो नहीं दर्शाना है, क्योंकि शांति ही वो चीज है जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद है कि इस छोटी सी बात से आपको आज बहुत बड़ी वाली सीख मिली होगी।

श्रोताओं, शिव शब्द आखिर में क्या क्या समाहित करके रखता है, चलिए आपसे इस पे भी बात करते हैं। शिव एक छोटा सा शब्द नहीं, बल्कि इसका अर्थ असीमित है। संस्कृत में शिव का मूल अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ, यानी जो हर स्थिति में भलाई, संतुलन और शांति लाए, वही शिव है। आदि अनादि की बात करें तो आदि यानी शुरुआत, जब सृष्टि का कोई रूप नहीं था, तब भी जो शुद्ध चेतना थी वो थी शिव, अनादि जिसका आरंभ ना हो। शिव समय, जन्म और मृत्यु से परे हैं, एक सनातन सत्ता, इसीलिए शायद सनातन हमारे धर्म को कहा जाता है, क्योंकि शिव इन सभी से परे हैं, यानी कि मृत्यु और जन्म के उस पार। इसलिए शिव केवल देवता नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूल चेतना है। वैदिक और उपनिषद की दृष्टि की अगर बात करें तो वैदिक ग्रंथों में शिव का संबंध रुद्र से मिलता है, जो विनाशक नहीं बल्कि रक्षक और परिवर्तक है। उपनिषदों में शिव का भाव ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी से जुड़ा हुआ माना जाता है। मतलब साफ है, जो सब में है, सबके परे है और सबको जोड़ता है, वही शिव है।

दोस्तों, अब मैं दर्शन शास्त्र की बात करती और वहाँ पे शिव शब्द का क्या महत्व है आपको समझाती। भारतीय दर्शन में शिव को अलग अलग रूपों में समझा गया। अद्वैत दर्शन, शिव यानी ब्रह्म यानी आत्मा, यानी मैं और ईश्वर अलग नहीं है, ये दोनों ही एक हैं, यानी के आप और आपकी आत्मा और उसमें ईश्वर का जुड़ाव, सभी एक हैं। कश्मीर शैव दर्शन की बात करें तो शिव यानी चेतना, शक्ति यानी उसकी ऊर्जा। बात साफ है कि शिव माने भोलेनाथ और शक्ति माने माता पार्वती, यानी जो लोग चेतना में हैं उनकी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती उन्हें? शक्ति से। शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं और शक्ति बिना शिव के अस्तित्वहीन है। यानी जब हम स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो जब तक दोनों एक साथ नहीं होते तो होते तो हैं लेकिन अस्तित्व विहीन होते हैं। होते तो हैं लेकिन उनमें चेतना पूरी नहीं मानी जाती है। हम होते तो हैं पर हमारी ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी देखी जाती है। अब तंत्र दर्शन की बात करें तो शिव यानी शुद्ध साक्षी, ध्यान और जागरूकता का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है शिव को। शिव का रूप हमेशा सामाजिक संतुलन सिखाता है। भस्म रमाए साधारण वेश सिखाता है कि सादगी से जीवन कैसे यापन करें। गली में सर्प सिखाता है कि भय और बाकी चीजों पर कैसे नियंत्रण प्राप्त करें। नंदी, गंगा, चंद्रमा यानी प्रकृति से सह अस्तित्व, ये हमारी प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाते हैं। शिव समाज को बताते हैं ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक समान है। आधुनिक युग में अगर शिव के अर्थ की बात करें तो आज के समय में शिव को ऐसे समझा जा सकता है, इनर पीस यानी कि अंतर मन की शक्ति, माइंडफुलनेस यानी कि जागरूकता, बैलेंस यानी कि संतुलन। जब दुनिया भाग रही है जैसा कि आज का दौर है, शिव हमें रुककर खुद से जुड़ना सिखाते हैं। बहुत ही जरूरी है, जो हमारी लाइफ को एक पॉज की जरूरत है जो हम सभी भूल गए हैं कहीं ना कहीं देना। उम्मीद है कि आज के इस सेगमेंट से आपको वो फल प्राप्त होगा जिससे आप खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और खुद की आत्मा से खुद का जुड़ाव महसूस करेंगे। शिव कोई मूर्ति नहीं, एक अनुभव है। जब मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और आत्मा संतुलित हो तो समझिए आपके भीतर शिव जाग चुके हैं।

तो दोस्तों आज की पहली किरण यहीं समेटते हैं, जहां हर बात में था शिव का अर्थ, एक एहसास में था शिव का स्पर्श। याद रखिए, शिव कोई दूर बैठे देव नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति, संतुलन और सच्चाई का नाम है। जब भी जीवन में शोर बढ़े तो ओम नमः शिवाय की एक धीमी धुन से अपने मन को फिर से शांत कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी हर सुबह शिवमय हो, शुभमय हो, मंगलमय हो। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त यानी कि आरजे आकांक्षा अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट वाले रेडियो चैनल यानी कि रेडियो ज्ञानसली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन के साथ पहली किरण की अगली सुबह के साथ। हर हर महादेव।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ओ आर एस और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अन इंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंबू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और फाइनली आज की शुरुआत भी हम बारिश के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, सो आज देखते ही देखते 20 जुलाई आ गई है और आज भी जो शुरुआत हुई दिन की वो दरअसल बारिश के साथ में हुई है। सो कह सकते हैं कि भाई ये जो डे है वो रेनी डे है। सो चलिए इसी खूबसूरत से दिन में अब बताते हैं कि आज का मंडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या है और आज आप इसको किस तरह अपने संग रखने वाले हैं होल डे। और अगर प्यारा लगे, समझ में आए या आप कहें कि वाह क्या बात है, तो इसको रख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। है ना बेहतरीन ऑफर? जी हाँ। सो उससे पहले हम वेलकम करते हैं फ्रीक्वेंसी से सुनने वाले, रेडियो गार्डन से सुनने वाले और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुनने वाले सभी श्रोताओं का आपके अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो लेट्स गो।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, सो फिर आज का मंडे स्पेशल थॉट क्या कह रहा है, चलिए चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ। और आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि आप दुनिया में जो बांटते हैं वो हमेशा आपके पास आ जाता है। जी हाँ, आप दुनिया में जो प्यार बांटते हैं वो हमेशा आपके पास आ जाता है। द लव यू गिव आउट इन टू द वर्ल्ड विल ऑलवेज फाइंड इट्स वे बैक टू यू। सो हम अगर दुनिया में प्यार बांटते हैं तो वो डेफिनेटली हमारे पास वापस आता है, और इसका एक नहीं कई उदाहरण हम खुद महसूस कर चुके हैं कि जब हम खुश होते हैं, लोगों से खुशी से बात करते हैं, या किसी दिन अच्छा मूड हो और कोई नया शख्स मिला हो, उसके बाद वो 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद वापस से मुलाकात हुई तो यही कहता है, अरे कैसे थे आप, कहाँ थे, तो फिर याद आता है कि अच्छा हाँ, जिस वक्त हम फर्स्ट टाइम मिले थे हमने बड़े ही वार्मली उनका वेलकम किया था, उनसे बातचीत की थी। इस तरह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें वापस हमें मिल जाती है। सो इसलिए हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर प्यार जो है वो अपार है, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। और इसको हम जब बांटने लग जाते हैं दुनिया में तो वो हम तक वापस आने का रास्ता आखिर खोज ही लेता है, और आ ही जाता है हम तक वापस। ऐसा कहना है आज के इस थॉट ऑफ द डे का। सो आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि आप दुनिया में जो प्यार बांटते हैं वो हमेशा आपके पास वापस आ जाता है। सो भाई, जब जिस चीज़ की कमी ही नहीं है, और जो चीज़ अपार है, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है, खूबसूरत है, लाजवाब है, शानदार है, बेमिसाल है, तो क्यों ना उसको बांटा जाए, क्यों ना उसको लेकर के चला जाए। ये बात अपने आप में स्पेशल बनाती है। और वैसे भी ना, हर कोई कहता है यार कि अगर बस खुश रहें, टेंशन फ्री रहें। सो टेंशन तो रहेगी, लेकिन टेंशन से फ्री रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्यार बांटते रहो, क्योंकि इतना वापस मिलने लग जाएगा कि टेंशन जो है वो कम तो नहीं होगी, लेकिन मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो फिर टेंशन उसके आगे नज़र नहीं आएगी। जी हाँ, यही कहना है आज के इस थॉट ऑफ द डे का। सो आई होप कि आज का थॉट ऑफ द डे आप तक पहुंच गया है, और आप इसको बखूबी समझ भी रहे होंगे कि भाई ये थॉट आखिर में कहना क्या चाहता है, इस थॉट के मायने क्या हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल आपको जैसा भी लगा आज का थॉट ऑफ द डे, आप भी आकर के बयां कर सकते हैं। और साथ ही साथ, आज मंडे है ना, इस वीक से थोड़ी सी मोहब्बत ज़्यादा बांट कर देखिएगा, डेफिनेटली वापस आने वाली है, ये मैं वादा कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ। और ये करने के बाद आप खुद कहेंगे हाँ सच में ऐसा ही हुआ है। तो चलिए, फिलहाल आइए इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी सुबह इतने खूबसूरत से थॉट और सॉन्ग के बाद एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान और बारिश फिलहाल थमती हुई नजर आ रही है।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

आप दुनिया में जो प्यार बांटते हैं वो हमेशा आपके पास वापस आ जाता है। बड़ा ही प्यारा आज का थॉट। और जैसा आज का मौसम है, जैसी आज की बारिश है, बिल्कुल वैसा ही थॉट है। सो चलिए भाई, इस वीक की शुरुआत हम प्यार बांटने से जब कर रहे हैं तो जाहिर है ये वीक कैसा जाने वाला है, सो रोमांटिक, है ना। इसके बाद आपने जवाब दिए हैं, कुछ बातें लिखी है, मैसेजेस आए हैं चैट बॉक्स पर। आइए सीधे चलते हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुनने वाले श्रोताओं की तरफ। चैट पर आपने मेंशन किया है, क्या लिखा है बताते हैं। सो सबसे पहला जो थॉट ऑफ द डे आ रहा है, आ गया है, वो आश मिश्र जी का है। सुप्रभात सर जी, सुप्रभात। आपको भी जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो है वो लाजवाब है। क्या बात है, थैंक यू सो मच टू यू, बहुत ही प्यारा सा मैसेज। सविता दुबे जी भी मौजूद हैं और आपने लिखा है सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी। और इसके अलावा आशु जी ने कहा सर जी लखनऊ में भी कल से बारिश हो रही है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि कल से लखनऊ में भी बारिश हो ही रही है। एंड सविता जी कहती हैं सर आप बहुत शैतान बच्चे हैं, बारिश में भीग कर तो नहीं आए। नहीं नहीं नहीं, हम तो शरारत और शैतानी वाले बच्चे हैं, लेकिन फिलहाल बारिश ऐसी नहीं है ना। सो आपने कहा कि मैंने प्यार दिया मुझे भी मिला है, आज का सुविचार बहुत प्यारा अपने जैसा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात को महसूस किया और आपने कहा कि हाँ ये खुद आपके साथ में हुआ है। आशु जी लिखती हैं जब कोई आपका साथ निभाए तो उसकी कद्र जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ अच्छे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं और उनकी अहमियत अक्सर तब समझ में आती है जब वो हमारे पास नहीं रहते। वाह, वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और आगे लिखती हैं प्यार खूबसूरत चेहरे से नहीं, खूबसूरत दिल से होता है, और जो दिल से प्यार करता है वो कभी साथ नहीं छोड़ता। बेशक, अनोखी का है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड यस, इस वक्त फ्रिक्वेंसी से आपने ट्यून कर लिया है, कार ड्राइव करते हुए, खेतों में काम करते हुए, किचन में पराठे बनाते हुए, अभी अंगड़ाइयाँ लेते हुए अपने बिस्तर से आप उठ रहे हैं, और आपको एक बार वापस से गुड मॉर्निंग गोंडा। सो चलिए भाई, जाग जाइए, और बड़ा ही अच्छा वक्त है। थैंक यू सो मच अनोखी कि आपको भी थॉट पसंद आया। सो यस, इस बार जो है वो हम चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ, और वापस से आने के बाद हम आज कई सारी बातें बताने वाले हैं। सो कई सारी क्यों होने वाली, क्योंकि आज है मंडे और आपको पता है कि भाई वीक की शुरुआत होती है। सो कहीं ना कहीं जब वीक की शुरुआत होती है तो ऐसा मन चाहता है कि इस वीक की सारी चीज़ें आपको बता डालें, हालांकि बहुत जाके सब्र करने के बाद आराम से हम कह पाते हैं। सो फिलहाल आज भी बहुत कुछ है जो आपसे साझा करना है आपके मॉर्निंग वाले शो में। आप बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, अपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपकी मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फिलहाल भाई साहब 9:14 हो गए हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में और आप ट्यून किए हुए हैं अपना गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो भाई, कई सारे ऐसे रॉबिन हुड्स का तो नाम आपने सुना है जो अमीरों से लेकर के गरीबों को बांटता है। इवन आपने मूवीज़ में भी ऐसे कई डायलॉग सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो फ़िलहाल ऑटिज़्म से जूझ रहे हैं खुद और ज़रूरतमंदों के लिए कर रहे हैं हेल्प। जी हाँ, यानी किसी और से ले भी नहीं रहे हैं बल्कि ज़रूरतमंदों में बांट रहे हैं। कौन है ये शख्स, आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Arjun Khan.

दरअसल आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं फिलीपींस के रहने वाले 32 साल के क्रिस्टोफर क्रिस। जी हाँ, क्रिस्टोफर क्रिस फ्रांसिस्को ने इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। ऐसा क्या किया है आखिर क्रिस्टोफर क्रिस ने? जी हाँ, तो दरअसल ऑटिज्म से जूझ रहे क्रिस ने 2 साल से ज़्यादा वक्त तक का लेकर के 5 पैसों के सिक्के बचाए और उनमें से 160 क्रेयॉन ब्रॉक्स खरीद करके आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को मुफ्त में बांट दिए। उन्होंने बच्चों को पीरियोडिक टेबल भी पेंट की ताकि उनकी पढ़ाई में मदद मिल सके। क्रिस खुद पहली कक्षा से आगे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन सीखने का इनका जुनून कभी कम नहीं हुआ और ये रेगुलर लाइब्रेरी से जाकर किताबें लेकर के पढ़ते हैं। और इनकी इस निस्वार्थ पहल से प्रभावित होकर स्कूल ने इन्हें सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया है। सो इनकी कहानी बताती है कि दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए बड़े रिसोर्सेस की नहीं बल्कि बड़े दिल की ज़रूरत होती है। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि भाई ऑटिज्म से खुद जूझ रहे हैं ये और सिक्के जोड़कर ज़रूरतमंद बच्चों को 160 क्रेयॉन बॉक्स जो हैं वो दान में दिए। ज़रा सोचिए, खुद ऑटिज्म से जूझ रहे हो और 2 साल का वक्त लगाएं, 2 साल तक के जो पैसे बचते हों सिक्के वो जोड़ करके और उसके बाद बच्चों में बांट दें। मतलब सच में ऐसा देखा जाए तो जब ऐसी कोई भी बात सुनो तो लगता है कि सच में करने की नीयत की बात आती है, क्योंकि जहां चाहो वहां हो तो जाता ही जाता है। सो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है एंड जिस तरह का एग्जाम्पल पेश किया है क्रिस्टोफर क्रिस फ्रांसिस्को ने, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दरअसल ये हमने बताया ना, ये जो बात है ये फिलीपींस जो देश है वहाँ के रहने वाले हैं क्रिस्टोफर क्रिस फ्रांसिस्को, जिनके बारे में हमने आपको बताया। ऑब्वियस सी बात है, जो भी इंसानियत के लिए काम करता है उसको हम रियल हीरो मानते हैं। सो कैसे लगे आपको हमारे ये रियल हीरो जो कि क्रिस्टोफर क्रिस हैं और ये रहने वाले हैं फिलीपींस के? आई होप कि आपको इनकी स्टोरी भी ज़रूर अच्छी लगी ही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिस्टोफर ने भी जो काम कर दिखाया है वो बाकी लोग सोचते रह जाते हैं और क्रिस्टोफर उस काम में कामयाब भी हो गए। और शायद वो मेंटल सेटिस्फैक्शन जो किसी को नहीं बता सकते, लेकिन उनको इस काम से ज़रूर मिला है और इसीलिए तो उन्होंने 2-2 साल लगा ले, है ना। सो 2 साल लगा के अगर ऐसा कोई कर रहा है तो जाहिर है कि उसको उसका उद्देश्य जो है वो मिल चुका है और वो तो भाई मज़े से सारी चीज़ें फिर कर सकता है। सो चलिए हम भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ के उद्देश्य को एक बार वापस से देखने के लिए निकल पड़ते हैं। सो फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और फिलहाल अब चलते हैं अगले गाने की तरफ, वापस से आएंगे बातों का पिटारा। आज मौजूद हैं क्योंकि आज है मंडे स्पेशल शो। सो जैसा शो है उसी तरह की बातें भी हैं, बहुत सारे किस्से भी हैं और आप तक काफ़ी कुछ पहुंचाना है, इसलिए आप बने रहिए अपने गोंडा FM पर अपने मॉर्निंग जॉक RJ Adnan के संग। स्टे ट्यून।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 88400918123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

भैया फीफा का फीवर जो है वो पूरी दुनिया पे इस वक्त चढ़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि इसी में एक सवाल आपसे पूछ ही लेना चाहिए। सवाल बड़ा ही सिंपल सा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, स्पेशली वो जो देख रहे हैं आजकल फीफा वर्ल्ड कप। सो फीफा विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल किस खिलाड़ी ने किए हैं? दो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए या बी में से जो भी आपको लगता है आप चैट पर आकर के बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है किस खिलाड़ी ने इस फीफा विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। ऑप्शन ए है लियोनेस मेसी, यस ऑफ कोर्स हर कोई जानता है इन्हें। एंड ऑप्शन बी है मिरोस्लाव क्लोजे। सो कौन से खिलाड़ी ने विश्व कप यानी फीफा विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं? सो किस खिलाड़ी ने किए हैं? ऑप्शन ए लियोनेल मेसी या ऑप्शन बी मिरोस्लाव क्लोजे। इनमें से जो भी आपको लगता है कि भाई ये राइट आंसर हो सकता है उसको आप बता सकते हैं हमको चैट बॉक्स पर आकर के, चैट बॉक्स जिससे आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन, वहीं आपको चैट का ऑप्शन मिलता है और आप हमको आकर के बता सकते हैं कि आखिर किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं फीफा विश्व कप में।

सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और जवाब आपसे जानने की मेरी चाह। फिलहाल हमने आपसे पूछा था कि भाई फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल आखिर किस खिलाड़ी ने किए। ऑप्शन ए बताया हमने लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी मिरोस्लाव क्लोजे। ये दो नाम आपको हमने बताया था जिसमें हमारे धर्मेंद्र मोहन जी ने फ्रॉम आवास्विका से लियोनेल मेसी का नाम लिया। ओके, सो मुझे लगता है वैसे भी आप लियोनेल मेसी को ही ज़्यादा जानते हैं, नाम भी सुना है एंड कहीं ना कहीं इस बात में इनका नाम भी आ गया है। तो वैसे हम बता दें कि जो आपने बताया इन दो नामों में वो बिल्कुल सही है। लियोनेल मेसी ने अब तक बहुत ज़्यादा गोल किए अगर हम जितने भी विश्व कप इनके करियर के देखें, सो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा। और अगर 2026 की हम बात करें कि इस विश्व कप में शीर्ष पे कौन है गोल स्कोरर, तो नाम आता है किलियन माम्बाप्पे का। जी हाँ, जिन्होंने फ्रांस के हैं और 22 गोल किए हैं, यानी 2026 विश्व कप में किलियन माम्बाप्पे ने 22 गोलों के साथ फुटबॉल इतिहास में सर्वकालिक अग्रणी गोल स्कोरर बनने का रिकॉर्ड बनाया है और मिरोस्लाव क्लोजे और लियोनेल मेसी ने दोनों को पीछे इन दोनों को छोड़ दिया है। और माम्बाप्पे ने 3 टूर्नामेंट में खेले गए सिर्फ 22 मैचेस में 22 गोल किए हैं। सो फिलहाल ये है। और दूसरे नंबर पर है लियोनेल मेसी जो कि 21 गोल के साथ अर्जेंटीना के हैं और मिरोस्लाव क्लोजे 16 गोल के साथ जर्मनी के हैं। एंड आपको पता ही है कि भाई फिलहाल इस विश्व कप में क्या हुआ है, नहीं पता है? ऑलराइट, सो आपको नहीं पता कि भाई इस विश्व कप में अर्जेंटीना की हार हुई है? जी हाँ। सो फिलहाल ये जो 2026 हम विश्व कप देख रहे थे फीफा वर्ल्ड कप, इसमें कहीं ना कहीं जो लोगों का अंदाज़ा था वो सही भी हुआ और कुछ लोगों का अंदाज़ा गलत भी हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का मानना था कि भाई अर्जेंटीना जो है वो स्पेन को हरा करके चैम्पियन बनेगी, बट हुआ इसका जस्ट उलट। अर्जेंटीना को हरा करके स्पेन बन गया है विश्व चैम्पियन। सो आई होप कि भाई ये जानकारी आप तक पहले ही पहुंच गई होगी एंड हमारी प्रीति जी ने भी सही आंसर किया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल अब चलते हैं अपने इस सॉन्ग की तरफ और वापस से आने के बाद कई बातें हैं जो लगातार हम आपसे बताने वाले हैं, कहने वाले हैं, करने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन विद योर मॉर्निंग शो कार्य।

0: पटेल नगर गोंडा, अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
11: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
12: मतलब
11: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
13: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: दोस्ती का फर्ज तो बहुत बार हमने निभाया है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सालों बाद दोस्ती प्लस इंसानियत का फर्ज भी निभाते हैं। बाप सोच रहे हैं कि भाई ऐसे कौन हैं जो इस तरह एक साथ दो दो इतने बड़े काम कर रहे हैं। तो चलिए आपको आखिर बता ही देते हैं कि भाई दोस्ती का फ़र्ज जिसे हम बता रहे हैं वो आखिर किसने निभाया है और कितने वक्त बाद निभाया है और क्यों निभाया है, ये सब कुछ बताने वाले हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो बता दे भाई, 1991 की बात है, आज की भी नहीं, यानी हमारे पैदा होने की भी कई साल पहले की बात है। दरअसल सऊदी अरब में एक साथ काम करने के दौरान केरल के मोहम्मद इस्माइल ने अपने साथ में काम करने वाले एडला लचन्ना से ज़रूरत पड़ने पर 120 सऊदी रियाल यानी तब का तकरीबन 1000 रुपये उधार लिए थे। कुछ वक्त बाद दोनों भारत लौट आए और हमेशा कांटेक्ट के लिए उनका टूट गया। न फ़ोन नंबर था न पता था, लेकिन इस्माइल उस उधार और दोस्त से किया वादा कभी नहीं भूले थे। सो तकरीबन 35 साल बाद इस्माइल अपने दोस्त को ढूंढने के लिए केरल से तेलंगाना पहुँचे। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि भाई लचन्ना धर्मापुरी गांव के रहने वाले हैं। गूगल मैप और आसपास के लोगों की मदद से आखिरकार वो उनके घर पहुंच गए। लचन्ना विदेश में थे, इसलिए इस्माइल ने उनके परिवार को आज के हिसाब से 25,000 रुपये देकर पुराना कर्ज चुका दिया। बाद में दोनों ने वीडियो कॉल पर बातचीत की और लचन्ना ने कहा कि उन्हें नहीं पता इस्माइल ने इतनी बड़ी रकम कैसे तय की, लेकिन उनकी ईमानदारी और दोस्ती ज़िंदगी भर याद रहेगी। सो क्या कभी आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त आया है जिस पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो जाहिर है ये स्टोरी आप उनको डेडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी दोस्ती की स्टोरीज़ होती है जो हमारे आसपास होती है और जब हम सुनते हैं तो मतलब हैरान से हो जाते हैं यार कि इतनी बढ़िया दोस्ती, इतनी ईमानदारी। एंड होता है ना, जैसे कई लोगों में ऐसे बहुत बार देखा गया कि अगर एक रुपये भी बोला हुआ है कि उधार है तो रात में सोने में भी याद आ रहा है कि यार वो एक रुपये देना है। और ये अगर ऐसा है तो शायद ऐसे लोग इस स्टोरी को बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे। लेकिन ज़रा सोचिए कि 35 साल पहले लिया हुआ उधार पैसा, आज जब हम उधार देते हैं और मांगते हैं तो हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। सामने वाला कहता है अरे कहीं भाग थोड़ी ना जा रहे हैं, दे ही देंगे, कौन सी बड़ी बात है। इस तरह न जाने कितने सारे किस्से आपके साथ भी हुए होंगे आपकी इसी ज़िंदगी में, और मेरे साथ भी हुए हैं। लेकिन जब ऐसी स्टोरी पढ़ते हैं या ऐसी स्टोरी जब समझ में आती है तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, और भी लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं, उनके लिए लिया हुआ उधार मतलब उधार ही होता है। और ज़रा सोचिए, एक दो नहीं, हम यहाँ 1-1.5 साल के अंदर हम लोग भूल जाते हैं किससे क्या लिया था, किसको कितना दिया था। लेकिन मानना पड़ेगा मोहम्मद इस्माइल जी को, जिन्होंने 35 साल बाद 1000 उधार का 25,000 रुपये दे करके पुराना कर्ज अदा किया और दोस्ती का भी फ़र्ज निभाया। आई होप कि आपको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लग रही है, क्योंकि ये सच में काफ़ी इंस्पायरिंग है और हमें उस फ्रेंड की याद आ रही है जो हमारे लिए इसी तरह का है, यानी जिस पर हम आंखें बंद करके बिलीव कर सकते हैं। जाहिर है आपकी भी फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा होगा ही, और अगर ऐसा है तो खुश हो जाइए कि आप भी इस मामले में एक ब्लेस्ड फ्रेंड हैं। सो यस, और साथ ही साथ कैसी लगी ये स्टोरी हमको आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरी फ्रेंडशिप पर है और कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता हम कहते हैं कि कोई भी रिश्ता हो और अगर फ्रेंडशिप है तो डेफिनेटली वो रिश्ता बहुत अच्छा होता है और बहुत आगे तक जाता है ना। सो इसलिए अगर आप में भी ऐसी कोई इस बात को कभी भी महसूस किया हो सो आप भी इस बात को कह सकते हैं। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल वाला ब्रेक सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग चौकार चेतन।

और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: छोटे सुन।
1: हाँ हाँ बता बड़े।
0: तुझे पता है पहले हम लोगों के दरवाजे खटखटा के भाग जाया करते थे।
1: और
0: अब लोगों के फोन पे व्हाट्सएप मैसेज करके डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं।
1: अच्छा शरारत तो वही सोच नहीं।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, यानी कि बरसात में दीवार पर सीलन, फफूंद और एक बदबू सी आती है, सो क्या लगता है आपको, दुनिया का कोई जुगाड़ नहीं है जो काम आ सकता है? ऐसा नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा और आरजे अतना लाइव है, तो इसका भी जुगाड़ आरजे अतना आपको बताने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड।
1: 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: ना जानू ना जानू ना क्यों उदक उदक के धड़कनों की चल रही ये लहरियाँ। मैं जानू ना जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा।
1: खाने से मेडल नहीं आ जाएगी।

0: अपने पापा की टेक्निक भूल जा, इधर वही सीख जो मैं सिखा रहा हूँ, समझी?
1: हेलो जी, गीता तो बाहर गई।
2: कितने साल हो गए ना मैंने तुम दोनों से जान मुझ के हारते हुए। इट इज द ट्रूथ।
0: देखा, टेक्निक सही हो तभी पहलवान साइन करता है ना? चलो
3: जल्दी से नेशनल जीत ले, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी।
4: सो भाई, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसका सलूशन फिलहाल हमारे पास है और वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, बता करके कि अगर आपके घर में भी ऐसी प्रॉब्लम है, यानी बरसात के मौसम में मॉनसून में दीवार पर सीलन, फफूंद और एक अजीब सी बदबू आती है, तो चलिए उसमें क्या कर सकते हैं हम बताते हैं आपको।
5: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, Ajay Khan.

सो कुछ ऐसी बातें हैं अगर जिनका हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे उस तरह से, तो कह सकते हैं कि मॉनसून प्रूफ बना सकते हैं अपने घर को। सो क्या कर सकते हैं? बहुत ही आसान सी बात है, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, शहद का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, नीम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि नीम में एंटी फंगल गुण होते हैं और सीलन वाली जगहों पर नीम की पत्तियां रख देने से इससे नमी कम होती है और फंगल की बदबू भी नहीं आती है। दूसरा है, मैंने आपका नमक खाया है मालिक। सो नमक को भी आप एक बर्तन में नमक भरकर कमरे के कोने में रख देंगे, सो ये हवा की नमी को सोख करके सीलन को बचाता है। जी हाँ, अगर एक छोटे से बर्तन में नमक भर करके कमरे के कोने में रख देंगे तो ये हवा की नमी को सोखने का काम करता है और सीलन से बचाता है। इसके अलावा नारियल का तेल प्लस कपूर, इन दोनों को मिला करके लकड़ी के फर्नीचर पे आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगी, फफूंदी नहीं लगेगी और फर्नीचर चमकता रहेगा। क्या क्या? नारियल तेल और कपूर, इसको मिला करके लगाने से फर्नीचर यानी लकड़ी पे इसमें फफूंद नहीं लगती और ये चमकते भी रहते हैं, चमकदार होते हैं। सो धूप भी ज़रूरी है, गद्दे हों, चादरें हों, तौलियां हों, इनको वक्त वक्त पर धूप में सुखाया जाए और इससे महक और बैक्टीरिया जो है वो सब दूर होते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम करता है, वो है बेकिंग सोडा। जी हाँ, सो दीवारों पर या फिर अलमारियों में सीलन हो तो उस पर बेकिंग सोडा छिड़क सकते हैं, क्योंकि यह नमी को सोख लेगा और बदबू भी हटा देगा। तभी तो है अपना खास बेकिंग सोडा। एंड इसके अलावा है इंडोर प्लांट्स। जी हाँ, सो स्नेक प्लांट या फिर पीस लिली जैसे जो पौधे हैं वो हवा की नमी को बैलेंस रखते हैं, सो घर की हवा शुद्ध और ताज़ा बनाते हैं। सो इंडोर प्लांट्स आप लगा सकते हैं, जिसमें हमने आपको एग्जांपल दिया, स्नेक प्लांट्स या फिर पीस लिली, ये ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जो नमी को बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे घर की जो हवा है वो प्योर होती है और फ्रेश होती है। इसके अलावा सही वेंटिलेशन। जी हाँ, सो कमरे में हवा का आना जाना बना रहे, खिड़कियाँ आप खोल के रखिए, एग्जॉस्ट फैन है तो वो चला सकते हैं, सीलन जमने नहीं देगा अगर ये सारी चीज़ें हैं। सो इन देसी तरीक़ों को अगर आप अपनाएंगे तो आपका घर भी साफ रहेगा, सूखा रहेगा और हेल्दी रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आपको आपकी इम्यूनिटी को लेकर के अक्सर कहा करते हैं, याद दिलाया करते हैं कि भाई इम्यूनिटी पे काम करना है जिससे कि हम बीमारियों से बच सके। उसी तरह घर की जो बीमारी है वो है सीलन, और इसी सीलन में ऑफकोर्स बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये तब होता है जब मॉनसून आता है, यानी इसी सीज़न में जो चल रहा है, इसमें सीलन की बड़ी प्रॉब्लम होती है जिससे अजीब सी स्मेल आती है। सो इन सारे तरीक़ों को अगर आप अपना लेंगे या इनमें से जो कुछ भी आप कर सकते हैं, सो फिर आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। देखिए लगातार बारिश हो रही है और अभी भी घर में आपके इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो इसको आप ज़रूर अपनाएं। दीमक के लिए पेस्ट कंट्रोल करा लें, क्योंकि मैंने भी बड़ी कोशिशें की थी जब नहीं हो पाया, सो पेस्ट कंट्रोल वाले आए और उन्होंने सच में जो किया उससे अभी तक दोबारा नहीं लगा है, इवन एक साल होने वाला है, और इतनी ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई थी दीमकों की कि काफ़ी कुछ नुकसान कर चुके थे। लेकिन फ़िलहाल पेस्ट कंट्रोल अगर आप बुला लेते हैं घर में और उनसे करा लेते हैं काम, तो डेफिनेटली इट विल वर्क, क्योंकि मेरे यहाँ और मेरे घर पे ये चीज़ हुई है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझता हूँ। जब हम सारी कोशिशें कर चुके, हमने हर तरह से केमिकल्स का इस्तेमाल किया, दवाओं का किया, कई और चीज़ें की, नहीं हुआ, तो फिर पेस्ट कंट्रोल को कॉल किया और सारा काम आराम से हो गया। सो फिलहाल कुछ चीज़ें जो आपसे कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही, उसके लिए आप एक्सपर्ट्स की ज़रूर मदद लें। और जहाँ तक सीलन की बात रही और उससे आने वाली स्मेल की, जिसको लेकर के हमने कुछ ख़ास उपाय बता दिए हैं, आई होप कि ये उपाय आप जान गए हैं और अब आप आज़माने भी वाले हैं। और अगर अभी आपको नहीं याद हो क्या है तो आपको हम बता दें, एक कटोरी में नमक भर करके रखने के लिए बताया, वेंटिलेशन के लिए बताया, धूप में गद्दे तकिए चादर सुखाने के लिए बताया,
नीम की पत्ती जहाँ पर आपके यहाँ सीलन है वहाँ रखने के लिए बताया है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बताया। अगर इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखते हैं, सो डेफिनेटली बहुत वर्क करने वाला है, बहुत वर्क करने वाला है। सो चलिए फिलहाल चलते हैं अब अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ। और अगला म्यूजिकल ब्रेक एक जबरदस्त सॉन्ग लेकर आ रहा है आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया गोंडा एफएम रेडियो 11.89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो हमने जो लास्ट मैसेज पढ़ा था उसके बाद भी कई सारे और मैसेजेस आ चुके हैं, और किसने क्या कुछ लिखा है आइए बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में। तो हमने जो मैसेज पढ़ा था उसके बाद धर्मेंद्र मोहन जी हैं, और आपने लिखा है अदनान से गुड मॉर्निंग, साथ में चैट बॉक्स में आने वाले साथियों को भी प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू सो मच टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति जी हैं, सर जी झमाझम झमझम बारिश, हैप्पी मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपको भी हैप्पी मॉर्निंग टू यू। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय जी हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। इरफान शाह ने भी लिखा है बरसात के मौसम को लेकर के, थैंक यू सो मच। एंड धर्मेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। कमल नयन जी लिखते हैं गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स आर जितना से, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। अच्छा, पेस्ट कंट्रोल घर के बगल में हुआ, सो घर के बगल में नहीं, आपको अपने घर में कराना होगा, क्योंकि हमने कराया, डेफिनेटली पूरा पूरा फ़ायदा उसका मिला है, तो मुझे लगता है एक बार प्रॉपर आप करा के देख लें, एंड किसी बेहतर कोई शख्स को बुलाएं जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रही हो, जिनके रिव्यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे हों। आई होप कि आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, एंड फ़िलहाल वक्त है कि हम भाई चले अपने अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, क्योंकि आपकी तरफ से हमको मिल गया है कॉन्टेंट जो कि हम आ करके आपको बताने वाले हैं कि आज क्या आया है हमारे पास में, और आप तक हम पहुंचा देने वाले हैं, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और अब इस गाने को एंजॉय करेंगे जो आपको लगता है लाजवाब बेमिसाल शानदार। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्या है ना, बिल्कुल, और ये ख्याल आना लाजिम भी है कि भाई ये सोचा जाए कि ऐसा कौन सा गाना है जो इतना ज़्यादा ख़ास, इतना ज़्यादा अलग लगता है। सो चलिए, ये तो खैर आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा लेंगे, लेकिन ये है कि भाई लगातार हम बेहतरीन सॉन्ग्स एंजॉय करते जा रहे हैं हमारे मॉर्निंग वाले शो में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा, और वेदर जो है वो रोमांटिक होता ही चला जा रहा है, बारिश हल्की हल्की अभी भी जारी है, और इसी को देखते हुए ये खूबसूरत सा गाना एंजॉय करिए आज के ब्रेकफास्ट के साथ।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1-800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: एक बात कहनी थी आपसे, शायद कहने का वक्त आ गया है और आपसे कह दूं। ये बात मैं अभी नहीं, इस कंटेंट को ले लेने के बाद और जाते जाते कहने वाला हूं। बहरहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। और इस वक्त गोंडा शहर डूबा हुआ है बारिश में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो ये जो कंटेंट आया है वो हमारी प्रीति जी की तरफ से बहराइच से आया है, और ये देखिए कि कितना हौसला बुलंद हो गया है। अब आप जो कुछ भी सुनती हैं, आपके थॉट्स चलते हैं और आप लिख देते हैं, और मुझे पता है कि लिख देने वालों को कितना रिलैक्स्ड महसूस होता है, कितना बड़ा बोझ उनके सर से उतर जाता है, या कितनी ज़्यादा खुशियाँ मिल जाती है लिखने भर से, है ना। चलिए देखते हैं हमारी प्रीति जी ने आखिर क्या लिखा है। आप लिखती हैं कि बुलंद हौसला मेरा, न मैं गिरी न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरी न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। न मैं गिरी न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल गमों का नहीं था वो तो मैं पी गई, सवाल गमों का नहीं था वो तो मैं पी गई, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं सारे गमों को पी के भी बुलंद हौसलों संग जी गई। क्या बात है, कितना खूबसूरत लिखा है आपने, और कितनी हिम्मत दे रहा है ये आपकी लिखने का अंदाज़। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा लिखा है। थैंक यू सो मच प्रीति शुक्ल जी फ्रॉम बहराइच, थैंक यू सो मच इतने अच्छे कंटेंट को लिखने के लिए, न सिर्फ लिखने के लिए बल्कि हम तक पहुंचाने के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और बहुत सारी विशेज कि आप यूं ही लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें, और हम तक ऐसी चीज़ें ऑब्वियस सी बात है कि पहुंचते रहें, ताकि हम भी बहुत अच्छा महसूस करते रहें, क्योंकि हम लिखने को जानते हैं कि हाँ क्या होता है आखिर लिखना। सो मुझे आपसे कहना था, दरअसल कहना ये था कि समझ लीजिए आज का तोहफा है ये जो मैं कहने वाला हूं, शायद कहना चाहिए आपसे, चलिए कह ही देता हूं, ठीक है। बहुत आगे तक आप जाएंगे अगर आप अपनी भाषा से एक शब्द हटा दें, गलती, और आगे जाना हो तो एक और शब्द हटाइए, मजबूरी। न कुछ गलती से होता है, न कहीं मजबूर हैं आप। उस आदमी की जिंदगी में क्रांति हो गई जिसकी जिंदगी से गलती शब्द जो है वो मिट गया है। जी हां, कभी नहीं कहेंगे कि मैंने कुछ गलती से कर दिया, मैंने करा, इंसान हूं, मैच्योर्ड हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूं। भले ही मुझे अंदर से कई सारे लॉजिक आ रहे हों कि तुम्हारी गलती नहीं थी, सबकी मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, सिचुएशंस ही ऐसी थी, तुम अकेले जिम्मेदार नहीं, और भी तो लोग ऐसा करते हैं, ये सारी बातें, ये सारे लॉजिक्स आपको अंदर से मिलेंगे। भले ही मुझे अंदर से सवाल उठ रहे हों, लेकिन आपको आना है और कहना है कि नहीं, गलती नहीं बल्कि मैंने खुद किया। दरअसल ये खुद की जिम्मेदारी बड़ी खूबसूरत होती है, और जिस दिन इसका एहसास होता है उस दिन सारे गिले शिकवे और सारी मजबूरियां खुद ब खुद मिट जाती हैं। आई होप कि आज आपको मंडे स्पेशल शो ज़रूर पसंद आया होगा। वैसे कैसा लगा ये भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और अब फिलहाल चलने का वक्त चूंकि आ गया है, आपसे इजाज़त ले रहे हैं। आज का शो कैसा लगा हमको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिलहाल जाते जाते ये खूबसूरत सा सॉन्ग आदित्य रिखारी की आवाज़ में आप तक।

0: और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर। क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टर्स किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
9: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
10: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
11: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
10: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
11: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
10: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
12: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
13: राव की गूंज, राव की गूंज, राव की गूंज।
14: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी होस्ट सविता गांव के गूंज की अपार सफलता के बाद सभी श्रोताओं के लिए एक बार फिर से नया एपिसोड हम सभी मिलकर लाए हैं, जिसमें हमारे मुख्य गायिका श्रीमती किरण पांडे जी के मधुर आवाज में बधाई गीतों की माला पिरोई गई है और जिनका साथ देने आ रहे हैं अदनान जी, श्वेता जी, जिमी जी और अर्चना। इस एपिसोड का विषय है जच्चा बच्चा। अरे जिमी, कितने दिनों बाद देखा है तुम्हें, क्या हाल चाल है भाई, सब ठीक है?
15: हाँ समता, सब ठीक है, सच में काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम सब। अच्छा श्वेता का क्या हाल है?
16: लीजिए, मैं भी आ गई।
15: लो, नाम लिया और आ गई।
14: अच्छा सुनो सभी, एक खुशखबरी है, अपने तिवारी जी जो रमचेरापुर गांव के हैं, उनके यहाँ पोता हुआ है और उनके भाई के यहाँ बेटी हुई है।
16: यह तो बहुत खुशी की बात है, चलिए उनके यहाँ चलकर कुछ सोहर वगैरह गाकर आते हैं।
15: हाँ हाँ, चलो चलो।

0: कितना प्यारा बच्चा है, नजर ना लगे, काला टीका लगा दो कोई भाई इसको।
1: अरे अरे, बधाई हो बधाई हो, आप सभी को बधाई हो और बच्चे की माँ को भी बधाई हो।
2: चलो भाई, ये सब तो ठीक है, पर बच्चे के साथ साथ माँ के खान पान पर भी और साफ सफाई का भी ध्यान रखना। क्यों, ठीक कहा ना?
3: हाँ हाँ, सही कहा।

0: एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बच्चे को समय समय पर टीका जरूर लगवाते रहिएगा। क्यों, ठीक है ना?
1: हाँ हाँ सही कहा।

0: अरे समता, जानती हो अपने तिवारी जी का पोता 2 साल का हो गया है और आज उसका मुंडन।
1: वाह, तब तो चलो फिर बधाई भी दे आए और कुछ मुंडन के गीत भी गाते हैं।
2: हाँ हाँ,

0: तिवारी जी नमस्कार, कैसे हैं आप
1: जी? नमस्कार नमस्कार
0: तिवारी जी, बहुत बहुत बधाई हो। चुनमुन बेटा तो आपका बहुत प्यारा हो गया है।
1: हाँ हाँ, सही कहा आपने। धन्यवाद बहन जी, हम लोग आप लोगों को याद ही कर रहे थे। आपके लोकगीत के बिना तो जन्मदिन बिल्कुल सूना था। हम तो ही कहेंगे कि लगे हाथ एक जच्चा गीत और हो जाए।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस,

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हाँ जी, हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? नमस्ते, आदाब, आपका स्वागत करते हैं आपकी अपने वाले FM यानी कि आप सुन रहे हैं 89.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी अपनी आरजे नदी मौजूद है आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में लेकर के मंडे वाला स्पेशल ज्ञानस्थली लाइव, जिसमें हम लाते हैं बड़ी यूनिक चीज़ें। जस्ट बिकॉज आई एम यूनिक, यू आर यूनिक, तो मंडे क्यों ना यूनिक बनाए? क्यों हर बार मंडे को देखकर ही एक अलग सा भूत सवार हो जाता है कि अरे यार फिर से मंडे, फिर से काम है, बताओ, ये भी कोई बात होती है? हालांकि ये हमको भी होता है, वो अलग बात है कि मेरी संडे को भी छुट्टी नहीं होती है, लेकिन वीकेंड का मज़ा जो आता है ना, वो बहुत गजब का होता है। और स्पेशली आज तो बारिश हो रही है, बारिश में एक जो गाना है ना, एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी, वो आज एक्चुअली मैं मुझ पर बिल्कुल सूट कर रहा था। रातों में जग रहे थे, भीग भाग के भाग भाग के आए हैं आपके स्टूडियो में, और इस भीगे भागे मौसम के साथ आपको बताएंगे आज कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें जो आप सुन के कहोगे आए तौबा, ऐसा भी होता है क्या? जी हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए तो हम आपके साथ लेकर आए हैं। दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियाँ रहती हैं और अलग अलग संस्कृतियाँ अपने अनूठे चीज़ों के लिए जानी जाती हैं। इतनी यूनिक चीज़ें वो परफॉर्म करती हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, इवन मैं भी नहीं सोच सकती हूँ। आपके भारत में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी से बहुत अलग हैं। कल्चर डिफरेंस है, ड्रेस डिफरेंस है, आपके खाने में डिफरेंस है, बट वहीं पर एक डिफरेंस आता है जो है आपके सुपरस्टिशंस में, यानी कि आपके अंधविश्वास में। मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहती है ना कि रात में झाड़ू नहीं लगाना, लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, रात में नाखून नहीं काटना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सिर्फ हमारे देश के अंदर ही नहीं चल रहा होता है, बाकी देशों में भी दौड़ रहा है, चल रहा है, भरपूर मात्रा में चल रहा है, और स्पेशली एशिया में तो आमतौर पर देखने को मिल जाता है। और आप तो जानते ही है ना, जब एशिया में अगर आप किसी अंधविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं ये सोच कर कि अरे हम तो काबिल इंसान हैं, हमने किताबें पढ़ ली हैं और मम्मी के सामने झाड़ू लगा के दिखाते, कोई लक्ष्मी नाराज नहीं होती, पीछे से मम्मी की उड़ती हुई चप्पल आती है, कहती है ऐसे कैसे नहीं मानोगे तुम मेरी बात, है बताओ, तुम ज़्यादा बढ़ के दीदी बन रहे हो क्या? हम हैं तुम्हारी मम्मी, तुम हमारी मम्मी नहीं हो, तुम हमको मत सिखाओ, हम तुमको सिखाते हैं। और एक डायलॉग और मार दिया जाता है कि चार अक्षर अंग्रेजी के क्या पढ़ लिए, अब तुम हमको पढ़ाओगे बेटा, होता है ना फिलहाल? हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता है, मैं हमेशा अपनी मम्मी को कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ, मेरी मम्मी मुझे ही सुना देती है कि इस बच्ची को मैंने इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया, इस बच्ची को मैंने ये कराया, इस बच्ची को मैंने वो कराया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, और अब ये इतनी बड़की दीदी बन गई हैं कि अब हमको ही सिखाने आ गई हैं। क्या ऐसा नहीं, ऐसा होता है, बताइए। अब मतलब अपने पेरेंट्स की मदद करने में बड़ा मज़ा भी आता है, प्रस्ताने सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो दुनिया भर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत यूनिक हैं, बहुत अलग हैं, लेकिन ये टोटली अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, अपने भारत का भी बताऊंगी, भारत की भी कुछ ऐसे अजीबो गरीब अंधविश्वास के बारे में ज़रूर जानेंगे, और आप इसके अलावा भी जानेंगे बाहर के देशों के बारे में कि जापान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। ये तो हमेशा हम इनकी तारीफ़ें सुनते हैं, लेकिन कुछ कमियाँ हर देश में होती हैं, वो कौन सी है हम आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए, इंजॉय करते रहिए। आप सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त अपनी शिव नदी के साथ इस खूबसूरत मौसम का खूबसूरत अंदाज वाला शो ज्ञानस्थली लाइव। स्टे ट्यून्ड।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव में। और आपने ट्यून कर लिया है 94.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और पीछे से किसी ने तो खर्च किया था भैया, जिससे मेरा दिमाग की बत्ती जल गई थी। होता है जब आपका दिमाग कहीं और होता है और पीछे से आके कोई वू करते ना, तो हालत ऐसी हो जाती है जैसे मेरी हो रखी थी। इसलिए हम गोंडा शहर की धड़कन में ही कहीं गोंडा शहर में ही अटक गए थे, धड़कन की तो बात ही नहीं आई। फिलहाल मैं हूं आपकी आरजी उन्नति, और आइए चलते हैं और बात करते हैं दुनिया भर के उन सुपरस्टिशंस की जिनके बारे में आपको बिल्कुल खबर नहीं है, हालांकि हमें बहुत है। यूं तो हमारे घर में कहा जाता है कि ये मत करो, वो मत करो, दही चीनी खा के जाओ, कुछ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मतलब पेपर अच्छा जाएगा। अब आप बताइए, दही चीनी आपका पेपर कैसा अच्छा कर रहा है? हालांकि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन जरूर होता है। रीजन ये होता है कि दही आपके पेट को ठंडा रखता है, चीनी से आपको एनर्जी मिलती है। तो जो बच्चे सुबह कुछ खा के नहीं जाते हैं, रात भर जगते रहते हैं, उनका ग्लूकोज डाउन नहीं होता और वो डर के मारे बेहोश नहीं होते। बस इतना सा काम था दही चीनी का, लेकिन उसको तो जोड़ दिया गया है शगुन। और अब शगुन से अगर दही चीनी खा के जाएंगे तो काम अच्छा हो जाएगा, नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं। फिलहाल वो अलग बात है, मेरी मम्मी ने मुझे कभी दही चीनी खिलाया ही नहीं आज तक, और हम सारे एग्जाम ऐसे ही देते आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पड़ोसी देशों में भी कुछ चल रहा है, चलिए उनमें से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पसंदीदा देश यूरोप और अमेरिका की, जिसकी बातें हम दिन रात करते हैं, जिसकी तारीफों के पुल लगा देते हैं, झड़ी लगा देते हैं कि भैया तो अमेरिका ऐसा, अमेरिका वैसा, टैक्स कम है, ये कम है, वो कम है, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, न जाने कितनी ही है उनकी तारीफें करते हैं। वहाँ पर भी एक सुपरस्टिशन माना जाता है, यानी कि वहाँ पर भी कुछ अंधविश्वास हैं जो माने जाते हैं। जी हाँ, इसको सुनने के बाद कहीं आप ये तो नहीं करें कि हाय तौबा, अमेरिका में भी? जी हाँ, अमेरिका में भी। चलिए बता देते हैं वो है कौन सा। घर के अंदर छाता खोलना मना है। आप अपने घर के अंदर छाता जरूर खोलते होंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, या तो आपके घर के बच्चों ने खोला होगा या तो आपके घर के बड़ों ने खोला होगा। घर से बाहर अगर आप निकल रहे हो, बारिश हो रही है, तो कोशिश करते हैं कि अगर गेट बहुत बड़ा है तो क्यों ना घर के अंदर ही खोल लें, ट्राई करके देख लेते हैं छाता नया है, ठीक ठाक है कि नहीं है, पुराना तो नहीं हो गया। मतलब हम कभी ना कभी छाता जरूर खोल लेते हैं, बट अमेरिका में ऐसा अगर आपने कर दिया ना, तो सूर्य देवता नाराज हो जाएंगे। अब आप बताइए, छत के नीचे हम खड़े हैं और हमने छाता खोला, तो सूर्य देवता हमें छत के उत्पार से देखकर कहेंगे जाओ अब हम नहीं आते तुम्हारे पास, हम तुम्हारे देश में ही नहीं खिलेंगे। सोचिए कैसा लगेगा आपको ये बात सुन करके। हाँ, आगे आने वाली जनरेशन भले ही सुपरस्टिशन के खिलाफ कुछ तो बोलेगी, हो सकता है बोला भी हो, बट ये मान्यता आगे से चली आ रही है और यूं ही चलती रहेगी। भैया घर में छाता खोलना साफ मना है, अगर आप खोलते हैं तो पीछे से फिर वही होता है जो यहाँ पे होता है, यानी कि मम्मी की उड़ती हुई चप्पल आएगी और आपको दिखेगी भी नहीं, क्योंकि मम्मी का जो वेपन होता है वो बहुत हार्ड होता है और बहुत सटीक जगह पर जाकर लगता है, पता नहीं कैसे, लेकिन मम्मी का निशाना बड़ा अच्छा होता है। कभी कभी तो लगता है मेरी मम्मी आर्मी में थी क्या। इसके अलावा टूटा हुआ शीशा, भैया टूटा हुआ शीशा ये हमारे देश में भी है और आपके पड़ोसी देश में भी है, यानी कि अमेरिका में भी है, यूनाइटेड किंगडम में भी है, वहाँ पर भी टूटा शीशा नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि अगर आपसे गलती से भी शीशा टूट जाता है तो आने वाले 7 सालों तक आपके लिए लगातार बैड लक लग जाएगा। मतलब अगर आज रात आपने कोई शीशा तोड़ा तो जैसे हम कहते हैं कि आपकी 7.5 लग चुकी है, वैसे वहाँ पर भी मानते हैं कि भैया 7 साल तक अब आप रहने वाले हैं परेशान हैरान, क्योंकि अब आपका बैड लक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और आप कि भैया हमारा शनि भारी हो गया है, इसलिए अब हमारा पीछा कोई छोड़ ही नहीं रहा है, हम काम तो करने जा रहे हैं, इंटरव्यू तो देने जा रहे हैं, लेकिन हम हर बार फेल हो जाते हैं, न जाने कैसे, कोई तो रिश्वत दे रहा है। बट हाँ, ये चीज मानी जा रही है और हमारे यहाँ पे टूटा शीशा नहीं रखते, स्पेशली शीशे में देखते नहीं है, अगर वो शीशा टूट गया है तो खंडित चीजें हमारे घर में नहीं रखी जाती हैं। और ऐसा सुपरस्टिशन हमारे देश में भी है और आपके पड़ोसी देश में भी है। आपके घर में कौन सा सुपरस्टिशन ज्यादा माना जाता है, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए। और आई लेते छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं और हम आपको सुनाते हैं एक बढ़िया सा गाना है विशाल मिश्रा की आवाज में, दीवानियत। जी हाँ, वही जो आपने गेस कर लिया। फिलहाल एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं ज्ञान असली लाइव अपनी आर्ष्णती के साथ 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन पर।

और भाई सोचिए, अगर आपकी महबूबा सच में तस्वीर से निकल के सामने आ जाए तो आप ताबीज बनवाएंगे या सीधे बाबा के पास भाग के जाएंगे कि बाबा बचा लो मुझे, पता नहीं कैसे लेकिन ये तस्वीर बोलने लग गई है ना। मंजलिका वाली फीलिंग आती है, वो अलग बात है कि शायर और शायरी के अंदर ये सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत नज़र आती है कि ओए होए होए क्या रोमांटिक गाने लिखे जा रहे हैं। बट अगर इसको आप लॉजिकली देखेंगे ना तो ये रोमांटिक नहीं, हॉरर ज़्यादा लगता है, मुझे तो काफ़ी हॉरर लगता है। फिलहाल आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। आपकी अपनी आरजी मौजूद हैं आप सभी के साथ, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त, और इस खूबसूरत मौसम में आपका वापस से स्वागत करते हैं आपकी अपने मंडे की यूनिक स्पेशल वाले प्रोग्राम, नाम है ज्ञानस्थली लाइव। और क्योंकि हम यूनिक चीज़ें लेकर आते हैं, हमने आज तक बहुत सारी यूनिक चीज़ों पर बात की है, लाइक यूनिक गेस्ट गेस्चर्स पे हमने बात की। और आपको पता चला होगा कि जब आप किसी के घर खाना खाने जाते हैं तो किस तहजीब और तमीज़ के साथ बैठना है और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो खाना बनाने वाला गुस्सा हो जाता है और वो फिर आपको खाने पे बुलाएगा ही नहीं कि तुमको मेरे खाने की इज्जत नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ जिसको प्लेट चट करना कहते हैं, वहाँ पर प्लेट छोड़ना पड़ता है, आप पूरी प्लेट साफ़ नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ एक चम्मच खाना ज़रूर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शेफ़ महाराज बौखला जाएंगे। फिलहाल इन सारी चीज़ों के बीच में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिक सुपरस्टिशंस, यानी कि वो अंधविश्वास जिसकी कोई सीमा नहीं होती। डियर, अब वैसे अंधविश्वास के चक्कर में ना आजकल हमारे इंडिया में बहुत सारे केसेस भी हो चुके हैं। जी, आपको पर्दा में मैं ऐसी कहानियां सुनाती रहती हूँ जो कहीं ना कहीं क्राइम से रिलेटेड है, और ऐसे ही मेरे पास दो तीन और भी किस्से आए जिनको देखने के बाद लगा ओ अम्मा भैया कितना कितना खतरनाक होता है एक इंसान अगर अंधविश्वास के शिकार में आ जाए तो। कोई किसी की जान ही ले लेता है क्योंकि वो अंधविश्वास के शिकार में है। और आजकल एक अंधविश्वास ये भी है कि अगर किसी को सांप काट ले तो झाड़ने वाले लोग आ जाएंगे। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि सांप जिसको काट रहा हो आप उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, बाबा के पास नहीं। जहर नीम के पत्तों से नहीं उतरेगा लेकिन हाँ एंटी वेनम से ज़रूर उतर जाएगा। तो ये आपके लिए छोटा सा रिमाइंडर था, बिकॉज क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश के बीच में सांप निकल रहे हैं और काफ़ी सारे हादसे सुनने में आ रहे हैं कि लोगों को सांप काट रहा है, बिच्छू काट रहा है, ये काट रहा है, वो काट रहा है। तो भैया कोशिश कीजिए कि आप सही टाइम पर सही दवा दें, सही इलाज दें, ना कि बाबा के पास ले जाके नीम के पत्ते करेले के पत्तों से उसको झड़वाना शुरू कर दें। ये बहुत गलत आदत है और इसी के चक्कर में भारत में बहुत सारे लोगों की जान चली भी जाती है। तो एक जिम्मेदार नागरिक बने, एक जिम्मेदार घरवाले बने और सही वक्त पर सही इलाज की तलाश करें। इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले सुपरस्टिशन, और जो कि हमारे भारत और ब्रिटेन दोनों जगह माना जाता है, और वो ये है कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा मतलब अब आपकी जिंदगी और आपका रास्ता पूरा तहस नहस हो गया है। अगर आपने काली बिल्ली का रास्ता काटा हुआ पार कर लिया तो भूत पीछे पड़ जाएगा। ऐसा आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है तो अब चीज़ें खराब हो जाएंगी, जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम नहीं बन पाएगा, इंटरव्यू देने जा रहे हो इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में पुराने ज़मानों में होता बस इतना सा था कि जब काली बिल्ली रास्ता काटी थी तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होता था, कोई शिकार हो सकता था, और क्योंकि बैलगाड़ियाँ चलती थी तो कहीं ना कहीं उसकी आंखों को देखकर बैल परेशान हो जाते थे, वो थोड़े से भड़क जाते थे, उनको थोड़ा सा टेंशन हो जाती थी, एंजाइटी जो अटैक आप समझते हैं आपकी भाषा में वो हो जाती थी, और इसकी वजह से वो पीछे लौट पड़ते थे और लोग गिर जाते थे। न जाने क्यों तब से काली बिल्लू को अपशगुन बना दिया गया है कि अपशगुन हो गया है अगर काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो दूसरा नहीं काट लेगा, तब तक आप मत काटिएगा नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। और ये सिर्फ आपके भारत में नहीं है, भारत के अलावा यूके जैसी कल्चर में भी इसको फॉलो किया जाता है, जहाँ पर बिल्ली का रास्ता काटना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, स्पेशली अगर वो काली बिल्ली है। अब काली बिल्ली भी सोच रही होगी यार हम ही से क्या दिक्कत है, हम ही ने क्या बिगाड़ा है, हम काले हैं तो क्या ऐसे करोगे, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले तो है ना। बट हमारे यहाँ काली बिल्ली को अपशगुन माना जाता है, लोग मानते हैं कि ये कोई खतरा है या फिर कोई विपत्ति का संकेत है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पुराने ज़मानों में जो चीज़ें हमारे पास चलती चली आ रही हैं वो बहुत अलग होती थी, और जो हम समझते हैं वो बहुत अलग होने लगी हैं। अब आप बताइए, आप किसी ऐसे सुपरस्टिशन के बारे में जानते हैं जिसका असल मकसद लोगों को सावधान करना था, जिसको असल मकसद ये था ताकि लोग सुरक्षित रह सकें, और उसको आगे जाकर एक ऐसे सुपरस्टिशन में बदल दिया गया है कि लोग अब इससे परेशान हो चुके हैं और वो इस छोटी छोटी बातों से डरने लगे। सही जानकारी हमेशा आपको बचा कर रखती है, लेकिन हमेशा गलत जानकारी आपको परेशान करती है और आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ज़रूर करती है। फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं मेरी महबूबा जो हमने बीच में ही आपके लिए रोक दिया था। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: हाँ जी, तो आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। आपकी अपनी आरजीनती मौजूद हैं आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं ज्ञान स्थली लाइव। तो आज हम बात कर रहे थे सुपरस्टिशंस की और हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं, और अब बात करते हैं उसकी जिसको सुनने के बाद आप कहोगे सच में ऐसा क्या, मैं तो रात में ही खा जाता। ऐसा क्या, चलिए बता देते हैं आपको। बता दें कि बेडरूम में तकिए के नीचे ब्रेड रखा जाता है। कहाँ पर? जर्मनी में। मम्मी कहती है ना कि अगर बेड पर एक भी दाना खाने का दिख गया तो नाइटमेयर्स आएंगे, यानी कि डरावने सपने आएंगे, बट यहाँ तो पूरा का पूरा ब्रेड रखा जा रहा है, क्यों? चलिए बताते। जर्मनी में शादी के टाइम पर या फिर उससे जुड़े रिवाजों के वक्त पर तकिए के नीचे ब्रेड रखा जाता है, और उम्मीद की जाती है कि इस ब्रेड के टुकड़े से आपकी आने वाली जिंदगी में कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी, यानी कि खाने की कमी नहीं होगी। और अगर आप तकिए के नीचे वो ब्रेड का टुकड़ा नहीं रख रहे हो तो आपके पास कुछ खाने को नहीं मिलेगा, मतलब आप रास्ते में ही खा जाएंगे। मेरे भाई जैसा इंसान तो बीच रास्ते में खा जाएगा, मतलब बीच रात में ही खा जाएगा, उठ के खाना आगे का होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी जो ब्रेड रखा है वो तो ख़राब हो रहा है ना, चलो खाते हैं। अगर पीनट बटर रखा हुआ तो वो पूरा साफ कर जाएगा, वो तो सोचेगा भी नहीं। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं होता, जर्मनी में रखा जाता है और लोग इन्जॉय करते हैं और बस रिवाजों को मानते भी हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि नॉर्वे और रूस में सीटी बजाना मना है, और इसको लेकर के कई सारे सुपरस्टिशंस भी हैं। इन देशों के घरों के अंदर सीटी बजाना बिल्कुल मना है, माना जाता है ऐसा करने से बुरी आत्माएं आकर्षित होती हैं, और इसीलिए सीटी नहीं बजाई जाती, विसल नहीं बजाई जाती है। हमारे यहाँ तो विसल पे गाने बन रहे हैं, फिलहाल वो छोड़ो। आपको भी पता होगा कि भारत और कोरिया जैसे देशों में भी रात के वक्त में सीटी बजाना मना होता है। कोरिया में तो स्पेशली इसको सख्त तरीके से मना किया जाता है, क्योंकि मानते हैं कि अगर आप रात में यानी कि स्पेशली नाइट के टाइम पर सीटी बजाते हो तो कोई ना कोई निगेटिव एनर्जी, चुड़ैल, जिन, आत्मा, भूत, पिशाच आपके पीछे ज़रूर पड़ेगा। हमारे यहाँ इत्र की खुशबू से पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पे सीटी से पड़ेगा। अक्सर होता है यार, मम्मी घर से बाहर निकलते ही बहुत सारा परफ्यूम लगा लो, तैयार हो जाओ, खुले बाल रख लो, तुमको तो पक्का आज जिन उठाएगा, तुमको तो पक्का जिन पकड़ेगा, ये बोल के ना डरा देती हैं, और कहती है बाल बांधो, बिना बाल बांधे नहीं जाओगे, परफ्यूम इतना मत लगाओ, बहुत हार्ड परफ्यूम है। और हम लोग कहाँ मानने वाले, हम तो परफ्यूम से नहा धोकर निकलते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे निकलते हैं कि भैया कमरे में आते ही ना उनकी स्मेल चारों तरफ आ जाती है, और इवन वो चले भी जाते हैं इसके बाद भी उनकी स्मेल उसी कमरे में ठहर जाती है, रुक जाती है, तो जो भी अंदर रहता है वो सोचता है कौन आया था इस कमरे में, कौन आया था, और यही तो चाहिए ना बॉस। बट आपको भले ही बालों के लिए रोका जाता हो, परफ्यूम के लिए रोका जाता हो, लेकिन कोरिया, रूस और नॉर्वे जैसे देशों में सीटी बजाने के लिए रोका जाता है कि नहीं बाबू सीटी मत बजाना, सीटी बजाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने फ्राइडे की नोटिस किया है कि फ्राइडे को 13 तारीख पड़ रही है, तो पश्चिमी देशों में यह माना जाता है कि अगर शुक्रवार का दिन है, 13 तारीख है, तो यह दिन बहुत अशुभ है, और इस दिन का मतलब है कि आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है, ना कहीं घूमने जाना है। हो सकता है कि आपकी फ़्लाइट की टिकट 13 तारीख को ही हो और 13 तारीख को ही शुक्रवार पड़ जाए, तो आपको वो भी कैंसिल कराना पड़ेगा कि हम तो नहीं जाएंगे, क्या पता हमारे साथ कुछ हो गया, तो का जवाब तो है ही नहीं। और इसी के अलावा एक आखिरी, और इसके बाद हम चलेंगे अपने चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस को देखने, और आखिरी जो है वो है जापान से जुड़ा हुआ। जापान जो अपनी एनिमेशन, अपने फूड कल्चर, अपने कल्चर और बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, वो है अपना ग्रीन ग्रीन माचा, जिसको पीने के बाद कई लोग मुँह बना रहे हैं, कई लोग एस्थेटिक बन रहे हैं, कुछ लोग दिखा रहे हैं, और कुछ लोग बस उसको शो ऑफ करने के लिए फोटो ले लेते हैं, बाकी पकड़ा देते हैं भैया पकड़ो मेरा हो गया, फोटो चली गई इंस्टाग्राम के ऊपर, अब क्या करना है, इसको पिए थोड़ी, बट कि माचा बहुत हेल्दी होता है। वहाँ पर है कि भैया रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, अगर आप रात में नाखून काटते हैं तो ये आपके लिए अपशगुन माना जाता है, और आपकी माता पिता की मृत्यु से जोड़ दिया जाता है कि अगर आप रात में नाखून काटते हैं तो आपके माँ बाप की, आपके माता पिता की उम्र कम होती है, और आप ही की वजह से, आपके नाखून काटने की वजह से आपके मम्मी पापा की डेथ हो सकती है, और इसी डर की वजह से रात में कोई भी नाखून नहीं काटता। आइए चलते हैं अब चैट बॉक्स में।

रेडी ने कर दिया इशारा, वक्त होता जा रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स में देख लेते हैं कि आपके क्या पैगाम, क्या मैसेजेस आ चुके हैं। आई होप आज का इस सुपरस्टिशन वाला शो आपको पसंद आया होगा और आप किसी ऐसे अंधविश्वास पे विश्वास नहीं कर रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, तो अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा और हम देखते हैं हमारे साथ चैट बॉक्स में आफ्टरऑल जुड़ा कौन कौन है। ओके, तो आज के शो में जो सबसे पहले मैसेज आया था वो सौरभ मिश्रा जी का आया था, जो मैं गोड़ा से ही सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, आफ्टर ऑल गुड आफ्टरनून हो रहा है लेकिन आपके लिए मॉर्निंग मॉर्निंग, क्योंकि सूरज देव तो वैसे भी नहीं निकले। इसके अलावा धर्मेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने हमें नमस्ते बोला है बाय इमोजीज, थैंक यू सो मच, एंड आपका भी स्वागत करते हैं ज्ञानस्थली लाइव में। अनोखी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, लिख रही हैं गुड आफ्टरनून एवरीवन, नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड आफ्टरनून टू यू, आपका भी इस्तकबाल करते हैं हम ज्ञानस्थली लाइव में। ताबिश खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं आपके अपने वाले शो ज्ञानस्थली लाइव में। फिलहाल के लिए आज का शो बस इतना ही, आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा, और आपको छोड़कर जा रही हूँ इस गाने के साथ जो कि ख्याल इश्क, और उसके बाद आप सुनेंगे जावेद अली की आवाज़ में तू ही हकीकत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, वक्त है अब आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी कल लेकर के एक बढ़िया सी स्टोरी जो कि रियल लाइफ होती है, यानी कि दुनिया के किसी कोने से मैं आपके लिए कुछ असलियत की कहानियाँ उठाकर लेकर आती हूँ, तो सुनना मत भूलिएगा। आपका अगला प्रोग्राम है सेहत या सिंह, सेहत पर होगी बात, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं रेडियो 10.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। 89.6 FM पर।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त और मेजबान आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने टीबी यानी तपेदिक की जांच और टेस्टिंग के बारे में विस्तार से बात की थी। पिछले एपिसोड में टीकन भाभी ने हमें टीबी की पहचान और जांच के बारे में बताया था, और आज की उसी श्रृंखला की इस अगली कड़ी में हम बात करेंगे टीबी के इलाज की, यानी सामान्य टीबी के इलाज की, दवा और उसके प्रतिरोध यानी एमडीआर टीबी के इलाज की, और बच्चों में टीबी के इलाज की, और इसके अलावा उन सरकारी योजनाओं की जो मरीजों की मदद के लिए बनाई गई है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाने वाले हमारे सेहतिया भैया। सेहतिया भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद आरजे जी, और रेडियो सुन रहे सभी साथियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरह से लोगों ने सवाल पूछा था, उससे पता चलता है कि अब लोग टीबी को लेकर खुलकर बात करना चाहते हैं। यही बदलाव सबसे जरूरी है, क्योंकि साथियों, टीबी की लड़ाई सिर्फ अस्पताल में नहीं की जाती है, ये लड़ाई घरों में, परिवारों में, गाँव में और समाज के भीतर जीती जाती है। जितनी जल्दी लोग बीमारी को समझेंगे, उतनी जल्दी लोग जांच कराएंगे, और जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने भैया। लेकिन भैया, आज की शुरुआत में एक ऐसे सवाल से करना चाहती हूँ जो शायद हजारों लोगों के मन में होता है। अगर किसी व्यक्ति की जांच में टीबी निकल आती है तो सबसे पहले उसके मन में क्या चलता है? कई लोग घबरा जाते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि अब जिंदगी ही खत्म हो गई। कुछ लोगों को लगता है कि टीबी का मतलब मौत है। क्या वाकई ऐसा सब होता है?
1: बिल्कुल नहीं है, और मैं चाहूँगा कि आज के पूरे कार्यक्रम का सबसे पहला संदेश यही हो कि टीबी का इलाज संभव है, टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। आज भारत में लाखों लोग टीबी से पूरी तरह ठीक होकर सम्मान जीवन जी रहे हैं। समस्या बीमारी नहीं है, समस्या बीमारी को छिपाना है, समस्या जांच में देरी करना, समस्या दवा बीच में छोड़ देना, और अगर मरीज समय पर इलाज शुरू करे और डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा कोर्स करे तो वो अधिकांश मामलों में टीबी ठीक हो जाती है।
0: लेकिन भैया, कई बार लोग इलाज शुरू तो कर देते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, और मुझे याद आ रहा है कि एक घटना में जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी बहुत ही खास बन सकती है, क्यों भैया?
1: हाँ आरजे जी, मैं भी ऐसी ही एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ। कुछ साल पहले पास के एक कस्बे में राम बाबू नाम के व्यक्ति रहते थे। उम्र लगभग 50 साल, रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। मेहनती आदमी थे, लेकिन उन्हें शराब की लत थी। सुबह काम और शाम शराब। धीरे धीरे उन्हें खांसी रहने लगी। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर वजन कम होने लगा, शाम को बुखार आने लगा, रात में पसीना आता है। लोग कहते हैं जांच करा लो, लेकिन वो हंसकर टाल देते हैं। कहते हैं अरे कुछ नहीं, 2 दिन आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। अब करीब 2 महीने के बाद हालत बिगड़ गई। जब अस्पताल पहुंचे तो जांच में टीबी निकली। डॉक्टर ने दवाइयां शुरू कराई। कुछ ही हफ्तों में उन्हें राहत महसूस होने लगी। खांसी कम हुई, बुखार कम हुआ, ताकत लौटने लगी। लेकिन यही उन्हें सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, दवा लेना बंद कर दिया। फिर कभी लेते कभी नहीं लेते, शराब भी नहीं छोड़ी, फॉलो अप जांच के लिए भी नहीं गए।
0: यानी बीमारी अंदर ही अंदर बनी रह गई।
1: बिल्कुल, और कुछ महीने के बाद बीमारी पहले से ज्यादा गंभीर रूप में लौट आई। दोबारा जांच हुई, इस बार पता चला कि उन्हें दवा प्रतिरोधी टीबी यानी एमडीआर टीबी हो गई है। अब उन्हें इलाज ज्यादा कठिन था, दवाइयां बदलनी पड़ी, अस्पताल के चक्कर बढ़ गए, कमाई रुक गई, परिवार परेशान हो गया, और दुर्भाग्य से क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी और इलाज को गंभीरता से नहीं लिया, उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया।
0: ये तो बहुत ही दुखद कहानी है भैया, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है कि टीबी से मौत केवल बीमारी की वजह से नहीं होती, कई बार इलाज अधूरा छोड़ने की वजह से भी हो जाती है।
1: बिल्कुल, और इसीलिए आज मैं हर श्रोता से कहना चाहता हूँ कि दवा शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दवा पूरी करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टीबी का इलाज कोई दर्द की गोली नहीं है कि 2 दिन खाई और छोड़ दी, यह एक पूरा उपचार है। जितनी अवधि डॉक्टर ने बताई है उतनी अवधि तक हमें दवा लेना ही होगी, तभी बीमारी जड़ से ख़त्म होगी।
0: तो भैया अब जरा विस्तार से समझाइए, जब किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि हो जाती है तो इलाज कैसे शुरू होता है? क्या मरीज को एक जैसी दवा मिलती है? क्या इलाज महंगा होता है और सरकार इसमें क्या मदद करती है?
1: बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले श्रोताओं को ये जान लेना चाहिए कि भारत सरकार के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के तहत टीबी की जांच और इलाज पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से मरीजों को न सिर्फ दवाइयाँ दी जाती है बल्कि इलाज के दौरान लगातार निगरानी और सहायता भी दी जाती है। इलाज का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को सामान्य टीबी या दवा प्रतिरोधी टीबी, और आगे की चर्चा में हम इन्हीं दोनों प्रकार को विस्तार से समझेंगे।
0: खांसी रहे 2 हफ्ते से पार,
1: जांच कराना समझदार,
0: टीबी हारेगी हम जीतेंगे,
1: इलाज पूरा करके ही रुकेंगे।
0: स्वागत है साथियों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि टीबी का इलाज संभव है, लेकिन इलाज को बीच में छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है हमने राम बाबू की कहानी में भी सुनी, जिन्होंने लापरवाही की और बीमारी को गंभीर बना लिया। अब सवाल ये है कि जब किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि हो जाती है तो उसका इलाज आखिर कैसे होता है? सेहतिया भैया, सबसे पहले हमें सामान्य टीबी के इलाज के बारे में बताइए।
1: बिल्कुल आरजे जी, सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को एक अच्छी खबर देना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति को सामान्य टीबी या ड्रग ससेप्टेबल टीबी यानी दवा के प्रति संवेदनशील टीबी है तो उसका इलाज पूरी तरह संभव है और सरकार ये इलाज मुफ्त इलाज उपलब्ध कराती है। जांच में टीबी की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर मरीज के वजन और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार दवाइयां शुरू करते हैं। ये दवाइयां एक ही नहीं बल्कि कई दवाओं का मिश्रण होती है जिन्हें हम फिक्स डोज या कम्बिनेशन या निश्चित खुराक संयोजन कहा जाता है।
0: मतलब एक गोली में कई दवाओं का असर।
1: बिल्कुल, इससे मरीज के लिए दवा लेना आसान हो जाता है और इलाज अधिक प्रभावी बनता है। लेकिन ये एक बात समझना बहुत जरूरी है, कई मरीज दवा शुरू करने के कुछ ही हफ्तों के बाद बेहतर महसूस करने लगते हैं, खांसी कम हो जाती है और बुखार उतर जाता है, वजन बढ़ने लगता है और ताकत लौटने लगती है। यही सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है कि कई लोग सोचते हैं कि अब बीमारी खत्म हो गई है इसलिए दवा बंद कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि लक्षण कम होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर से सारे कीटाणु खत्म हो गए हैं। अगर दवा बीच में छोड़ दी गई तो कुछ कीटाणु बच सकते हैं, यही बचे हुए कीटाणु बाद में फिर सक्रिय होकर बीमारी को वापस ला सकते हैं।
0: यानी मरीज को अच्छा महसूस हो रहा है तब भी हमें मतलब दवाई जारी रखनी है।
1: बिल्कुल, टीबी का इलाज डॉक्टर द्वारा बताई गई पूरी अवधि तक लेना जरूरी है, कोई भी दवा अपनी मर्जी से बंद नहीं करना चाहिए। और साथियों, सिर्फ दवा लेना ही काफ़ी नहीं है, मरीज को समय समय पर फॉलो अप जांच के लिए भी जाना चाहिए। कई बार डॉक्टर बलगम की जांच या दूसरी जांचें करवाते हैं ताकि ये पता चल सके कि इलाज सही दिशा में जा रहा है या नहीं।
0: मतलब इलाज सिर्फ गोली खाने का नाम नहीं है बल्कि नियमित निगरानी भी उसका एक हिस्सा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: भैया, पिछले कार्यक्रम में हमने बच्चों में टीबी की बात की थी, क्या बच्चों का इलाज अलग से होता है?
1: हाँ, बच्चों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। बच्चों में भी टीबी के लक्षण कई बार बड़े लोगों जैसे स्पष्ट नहीं होते हैं। कभी सिर्फ वजन नहीं बढ़ता है तो कभी भूख कम लगती है, कभी लंबे समय तक बुखार रहता है। इसलिए यदि किसी बच्चे को लंबे समय से खांसी, बुखार, वजन घटना या घर में किसी टीबी मरीज के संपर्क का इतिहास हो तो उसकी जांच जरूरी करानी चाहिए। बच्चों को इलाज में भी मुक्त उपलब्ध है, लेकिन दवाओं की मात्रा या उनके वजन के अनुसार तय की जाती है। और मैं माता पिता से कहना चाहूँगा कि बच्चे थोड़ा ठीक दिखने लगे तो भी दवा बंद ना करें, पूरा कोर्स पूरा कराना उतना ही जरूरी जितना बड़ों में है।
0: तो साथियों, एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है कि इलाज को पूरा करना, लेकिन कई बार मरीज आर्थिक तंगी, कमजोरी या पोषण की कमी के कारण इलाज जारी नहीं रख पाते हैं। क्या सरकार इस दिशा में भी कोई मदद कर रही है सहत्या भैया?
1: जी हाँ, सरकार ये समझती है कि टीबी केवल दवा की बीमारी नहीं है, ये पोषण, आर्थिक स्थिति और सामाजिक सहयोग से भी जुड़ी हुई है। इसलिए सरकार ने निश्चय पोषण योजना शुरू की है। इसके तहत टीबी मरीजों को पोषण संबंधित सहायता के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है, ताकि वो इलाज के दौरान बेहतर भोजन ले सकें, क्योंकि टीबी और कुपोषण का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा तो बीमारी से लड़ना और स्वस्थ होना दोनों मुश्किल हो जाएंगे।
0: और निक्षय मित्र क्या होता है भैया? इसका नाम भी लोग काफी सुन रखे हैं।
1: देखिए, निश्चय मित्र वास्तव में एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें समाज के लोग, संस्थाएं या स्वयंसेवी संगठन, स्कूल, कॉलेज, उद्योग या कोई भी इच्छुक व्यक्ति टीबी मरीज की सहायता कर सकता है। कोई पोषण किट दे सकता है, कोई राशन उपलब्ध करा सकता है, कोई भावनात्मक सहयोग दे सकता है। इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि टीबी मरीज अकेला नहीं है, पूरा समाज उसके साथ खड़ा है।
0: और निक्षय साथी ये क्या है?
1: निश्चय साथी आमतौर पर परिवार का कोई जिम्मेदार सदस्य या देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है। वो मरीज को समय पर दवा लेने की याद दिलाता है, डॉक्टर के पास जाने में मदद करता है, किसी परेशानी या दुष्प्रभाव पर स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क कराता है और इलाज पूरा करवाने में सहयोग कराता है। कई बार एक जिम्मेदार निश्चय साथी मरीज को दवा छोड़ने से बचा सकता है।
0: बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आज के सबसे गंभीर विषय पर आना चाहती हूँ, MRD टीबी। लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बम है जो दग जाएगा। आखिर ये होता क्या है?
1: MDR टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, सरल शब्द में कहें तो ऐसी टीबी जिसमें सामान्य दवाएं प्रभावी नहीं रह जाती हैं। ये अक्सर तब होता है जब मरीज दवाएं बीच में छोड़ देता है, या नियमित रूप से दवा नहीं लेता है, या इलाज सही तरीके से पूरा नहीं करता है। राम बाबू की कहानी इसी का उदाहरण थी। जब टीबी के कीटाणु बार बार अधूरा इलाज झेलते थे तो वो कुछ दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेते थे, फिर यह सामान्य इलाज काम नहीं करता था।
0: मतलब सुनकर ही डर लगता है। क्या MDR टीबी का इलाज संभव है भैया?
1: बिल्कुल संभव है, और यही संदेश है लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि पहले MDR टीबी का इलाज लंबा और कठिन माना जाता था, लेकिन अब भारत ने काफी प्रगति की है। आज कई पात्र मरीजों के लिए BP-LMP नामक आधुनिक उपचार पद्धति उपलब्ध है। इसमें बेडा क्यूलिन या प्रिटोमेनिड या लाइनोजोलिड, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। ये पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और कई मामलों में अपेक्षाकृत छोटा उपचार विकल्प साबित हो रहा है, लेकिन ये निर्णय डॉक्टर जांच रिपोर्ट और दवा प्रतिरोध की स्थिति देखकर लेते हैं।
0: मतलब मरीज खुद फैसला नहीं करेगा कि कौन सी दवा लेनी है?
1: बिल्कुल नहीं, क्योंकि MDR टीबी का इलाज जो है विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए। इसके लिए विशेष जांचें की जाती है, जैसे मॉलिक्यूलर टेस्ट और दवा प्रतिरोध जांच। इन रिपोर्ट के आधार पर सही दवाओं का चयन किया जाता है।
0: भैया, क्या कुछ दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी टीबी के इलाज को प्रभावित करती हैं?
1: बहुत ज्यादा, उदाहरण के लिए मधुमेह यानी डायबिटीज, या यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज और टीबी दोनों हैं तो दोनों का इलाज साथ करना जरूरी है। अनियंत्रित शुगर टीबी को भी गंभीर बना सकती है। इसी तरह HIV से प्रभावित लोगों को में टीबी का खतरा अधिक होता है, इसलिए दोनों सेवाओं को जोड़कर देखा जाता है कि तंबाकू और धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करते हैं और स्वस्थ होने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। और शराब
0: की तो बात ही मत करिए, राम बाबू की कहानी में ये सामने आई है।
1: बिल्कुल, अत्यधिक शराब न केवल शरीर को कमजोर करती है बल्कि दवा नियमित लेने की आदत को भी प्रभावित करती है। कई मरीज नशे की वजह से दवा भूल जाते हैं या इलाज छोड़ देते हैं। इसलिए टीबी के इलाज के दौरान शराब और तंबाकू से दूरी बहुत महत्वपूर्ण है।
0: और अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी हो जाए तो बाकी परिवार को क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि परिवार के सभी सदस्य की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों की, क्योंकि कई बार बीमारी की शुरुआती चरण में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। सरकार निकट संपर्क में रहने वाले लोगों के लिए टीबी प्रिकेटिव ट्रीटमेंट यानी रोकथाम संबंधित उपचार भी उपलब्ध कराती है, ताकि बीमारी सक्रिय होने से पहले ही रोकी जा सके।
0: और घर में संक्रमण रोकने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
1: बहुत आसान बातें हैं। कमरे में हवा आने जाने दें, खिड़कियां और दरवाजे खुले रखें, खांसते या छींकते समय रुमाल, कपड़ा या कोहनी का उपयोग करें, खुले में थूके से बचें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इन छोटे छोटे कदमों से परिवार की बाकी सदस्यों की सुरक्षा में मदद मिलती है।
0: सेहतिया भैया, आज की पूरी चर्चा को अगर कुछ महत्वपूर्ण संदेशों में समेटना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगा। पहली है कि टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। दूसरी है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जांच और इलाज मुक्त है, दवा कभी बीच में ना छोड़ें। चौथी है फॉलो अप जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। और पांचवी, पोषण, आराम और परिवार का सहयोग इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और छठवीं है MDR टीबी भी उपचार योग है, इसलिए निराश ना हो। सातवीं है कि परिवार के सदस्यों की स्कैनिंग करवाएं। और आठवीं है कि टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करें।
0: बहुत ही सुंदर संदेश। साथियों, याद रखिए, टीबी कोई अभिशाप नहीं, एक बीमारी है और बीमारी का इलाज होता है। समय पर जांच, नियमित दवा, अच्छा पोषण और परिवार का सहयोग, यही स्वस्थ होने का रास्ता है। आइए कार्यक्रम समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे हम अपने सेहत की शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है, तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है। जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है, तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं, तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं, तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज आरजे अंशिका, क्योंकि सैटरडे को अंशिका नहीं थी। तो हाँ, ये था कि मेरे मुंह से बार बार जैसे एक कोड लाइन हो जाती है ना कि मैं हूँ आपकी आज समता और साथ में आरजे अंशिका, तो ये लाइन बन गई है ना।
1: जी,
3: तो मैंने बार बार उस लाइन को दोहराया था, लेकिन कोई नहीं, आज आपकी आरजे अंशिका आ गई है। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि मैं हूँ आपकी आरजे समता
1: और मैं हूँ आरजे अंशिका,
3: तो हम दोनों लेकर के आ गए आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है
1: सुन सहेली।
3: जी हाँ, और जल्दी से आ जाइए क्योंकि आज है मंडे, यानी कि मंडे के दिन हम करते हैं बहुत सारी बातें खाने को लेकर के, खाने पीने को लेकर के, और बहुत सारी रेसिपीज का मजा लेने के लिए। तो सभी लोग चैट बॉक्स में तो आ ही गए, मतलब बहुत ज्यादा वाली भीड़ है, क्राउड है, लेकिन अभी टाइम टू टाइम अभी कोई नहीं आए। 1:28 तक तो सारी भीड़ थी, लेकिन अभी जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ है अभी किसी ने भी एंट्री नहीं दी है। तो जल्दी से आ जाए क्योंकि आज प्यारा सा मौसम है, बारिश सुबह से पड़ रही है, इनफैक्ट कल शाम से बारिश हो रही है, रुक रुक के हो रही थी, एंड रात को भी बारिश अच्छी वाली हुई है। तो आज सुबह से बारिश हो रही है, बारिश का मजा लीजिए और आ जाइए सुनने के लिए सुन सहेली। तो आइए, दोपहर का समय है, एक साथ एक ही फ्रेम में विश करते हैं
1: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और मूड है मस्त जबरदस्त, क्योंकि इसका राज है ये प्यारा सा मौसम। और इस प्यारे से मौसम में जब सहेलियां मिलती हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, थोड़ी सी नोकझोंक नहीं कहेंगे हम, नोकझोंक नहीं होती है, थोड़ी सी वो होती है
3: मस्ती वाली नोकझोंक होती है।
1: और उसके साथ बहुत सारी बातें होती हैं जो आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है,
3: बेनिफिट होती है। तो और उसके साथ में जब हम खाने का तड़का लगा देते हैं ना, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है।
1: बिल्कुल, तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे सबसे पहले वाले सेगमेंट की तरफ, जो की है कि एक प्यारी सी पोएट्री,
3: और जो कि आज है खाने पे डिपेंड। मतलब आज खाना भी होगा, पता है हम लोग खाना कह करके ना, मुझे तो भूख लग जाती है बहुत जोर से, और सोचो जब 1:30 बजे भूख लगी और खाना मिले,
1: लेकिन मिलता नहीं है मैम,
3: नहीं खाना मिले 3:30 बजे, तो सोचो क्या हाल होगी। मतलब पेट का तो ऐसा हो जाता है कि अंदर ना चूहे महाभारत कर रहे होते हैं कि कौन जीतेगा सबसे पहले देखते हैं। तो सोचो हम लोग कितना सैक्रिफाइस करते हैं आप सभी के लिए, और आप हैं कि चैट बॉक्स में आने के लिए आपने इतनी देर लगा देते हैं। खैर कोई नहीं, आप मत आइए, लेकिन आप अपनी फ्रिक्वेंसी से एंड रेडियो गार्डन से बस आपको क्या करना है, ऑन कर लेना है मोबाइल और सुनना है हमारे शो को। तो चले आज की बेहतरीन सी कविता की ओर। तो आज की कविता कुछ ऐसी है जो कि
1: चले।
3: हाँ अंशिका, मैंने तुम्हें उस दिन सैटरडे को बहुत मिस किया था, क्योंकि ना जिसे कहते हैं ना कि जब हम कहीं जाते हैं तो रास्ता मिलता है, हाँ। रास्ता खाली मिलता है, तो उस दिन वो रास्ता नहीं मिला मुझे, हाँ। मतलब बहुत क्राउड हुआ, मैंने खुद ही हाथ से मैं जितना हटाई और फिर मैं अपनी पोयम लेके गई, मुझे लग रहा था कि हटना चाहिए था रास्ता। खैर कोई नहीं,
1: तो चलिए आज कुछ बारिश को लेते हुए और कुछ लाइंस बताते हैं, और उन लाइन के साथ इस प्यारी सी पोयम को हम रास्ता देंगे। प्यार करने वाले आंखों से आंखों की, हाँ बिल्कुल, कभी डरते नहीं, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं क्योंकि उनके दिल में जज्बात होते हैं। तो चलिए बताते हैं, प्यार करने वाले आंखों से आंखों की बात समझ लेते हैं, सपनों में मिल जाएं तो मुलाकात समझ लेते हैं, रोता तो आसमां भी है धरती के लिए, पर लोग उसकी आंसुओं को बरसात समझ लेते हैं। तो चलिए हम भी होते हैं इस बेहद खुशनुमा।
3: इतनी दुखद वाली आज शायरी क्यों सुनाई तुमने?
1: दुखद नहीं है ये
3: भाई, आसमां रोता है, बारिश होती है, ये सब क्या था? मतलब आज मंडे है,
1: ये डीप फीलिंग थी। डीप फीलिंग ये थी कि
3: डीप फीलिंग थी,
1: हाँ बहुत अच्छी वाली थी। क्या नहीं, मैंने ये लाइंस पढ़ी थी तो रोनू धोनू नहीं है, थोड़ी सी अगर आप समझेंगे तो डीप है।
3: जी मैं समझ गई,
1: समझ गई।
3: चलिए
1: मैम बहुत समझ रहा।
3: जी तो मैं चलती हूँ आगे, ठीक है। चलिए तो आज है खाना खजाना, और खाना खजाना के दिन हम लेकर के आते हैं बहुत सारी रेसिपीज को, हमारी मास्टर शेफ की रेसिपीज को। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी थाली सजी है, और उस थाली में सोचो अंशिका की, अभी अगर आपको एक थाली मिल जाए, ठीक है, अभी मैं बताऊं कि एक अभी एक बात हुई थी, मतलब एक इंसिडेंस नहीं कहेंगे उसको
1: जी।
3: अभी मैं गई थी ना जहाँ घूमने के लिए, तो वहाँ पर ना ट्रेन में वो खाना लेकर के आए, जैसे वो ट्रेन में पेंट्री गार्ड होता है ना, वहाँ से वो लेकर के आए। तो उसमें ना खाने में एक पूरी थाली थी, मतलब उस पे ऊपर लिखा था वेज थाली। फिर मेरे मन में आया, क्योंकि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वेज क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नॉन वेज भी होगा। तो उन्होंने बताया कि वेज इसलिए है कि इस हमारी ट्रेन में नॉन वेज है ही नहीं, एंड प्योर टू प्योर उसके ऊपर वेज लिखा हुआ है। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, तुम सोच सकती हो। तो मैंने उसको फिर भी मतलब कंफर्मेशन करने के लिए मैं पेंट्री गार्ड भी गई थी। मैंने मतलब मुझे इतना ज्यादा फोबिया है इन सब चीजों का, मैं गई और मैंने वहां पता किया कि हाँ एग्जैक्टली यहाँ पर प्योर एंड प्योर वेजिटेरियन है। फिर मैंने वहां से थाली ली, और मैं बताऊं कि आज भी वो स्वाद, जैसे कभी कभी कहीं से कुछ खा के आओ तो वो स्वाद हमेशा हमारे जहन में बन जाता है। तो वहां पे पूरी थाली थी, और उस थाली में दाल चावल था, एंड आलू परवल की सब्जी थी, छोले की सब्जी थी, और अचार था, पापड़ था, रोटी थी, एंड अच्छी क्वांटिटी में था, मतलब एक थाली से आप दो लोग खा सकते हैं प्रॉपर। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उसमें जो दाल चावल जो मुझे लगा ना औसम, मतलब मैं आज तक उसका स्वाद नहीं भूल पाई हूँ। कि वैसा मैं कोशिश करती हूँ कि घर में बने, लेकिन वो स्वाद नहीं मुझे
1: हो नहीं पाता है,
3: वो नहीं मिल रहा है मुझे। तो बहुत ही बढ़िया सा स्वाद, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी जुबान पे वो स्वाद रह जाता है। एंड हमने एक जगह पर, वहां पे जहां मैं गई थी मैं भोले बाबा के दर्शन करने, तो मैंने वहां पर ना जिस नाइट को हम लोग पहुंचे थे, उस नाइट मैंने आपको बताया था अंशिका कि वहां मैंने आलू और गोभी की सब्जी खाई थी और रोटी खाई थी। ओ माय गॉड अंशिका, मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे लोग बनाते हैं, और इतनी अच्छी सब्जी थी, इतनी अच्छी सब्जी थी कि वो जहन में बैठी हुई है अभी भी। तो इसका मतलब ये है कि हम सब्जियां देखो वही हैं, गोभी भी वही है जो यहाँ मिल रही है, आलू भी मिल रहे हैं, रोटी भी आटा भी है, पर कहते हैं ना कि किसी किसी के हाथों में वो स्वाद होता है,
1: बिल्कुल
3: स्वाद होता है। तो वो स्वाद ही शायद हमारे जहन में आके बैठ गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप खाना बनाएं तो उस स्वाद और उस प्यार से बनाएं, ताकि वो लोग जो भी खाएं ना, वो स्वाद जो है उनके जहन में हमेशा से बस जाए।
1: बिल्कुल भाई, जुबान पे रह जाता है स्वाद, जुबान पे रह जाता है उनकी असर का स्वाद। तो चलिए करते हैं इरशाद। इरशाद
3: अच्छी थी, ये वाली अच्छी थी,
1: ये वाली अच्छी,
3: ठीक है। तो शुरू करें,
1: बिल्कुल।
3: थाली सजी है रंग बिरंगी खुशबू महके चारों ओर, गर्मा गर्म रोटी दाल चावल और चटपटे शोर।
1: मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे होता नहीं है कि यहाँ आप बैठे हो और आपसे थोड़ी सी दूर पे अच्छी सी रखी हुई है गरम गरम, लेकिन आप पास जाके खा नहीं सकते हो, वैसे कुछ महसूस हो रहा है मुझे।
3: हर निवाले में जैसे घुला हो प्यार का अनोखा स्वाद, खाते ही दिल में जाग उठे बचपन की मीठी याद। सुबह की चाय हो या शाम का मीठा मीठा पकवान, मीठे के आगे फीके पड़े दुनिया के सारे पकवान। जब भी होठों से टकराए रसगुल्ले की मिठास, तो लगता है जैसे मिल गई हो खुशियों की सौगात। मौसम के संग बदलते हैं यहाँ खाने के भी अंदाज, कभी आम की मिठास तो कभी गर्मा गर्म गाजर का साज। पानी पूरी की तीखी फुहार और समोसे का स्वाद, ये छोटे छोटे पल ही तो लाते हैं चेहरे पर मुस्कान और आहट। खाना पीना ही तो जिंदगी का असली सार, जब मिल बैठे सब यार तो हो जाता है त्योहार। हर कौर में छिपी है माँ के हाथों की वो खास दुआएं, जो रूठे हुए दिलों को भी आपस में झट से मिलाए।
1: वाह, बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त। मतलब पहली बार ऐसे है कि मुझे जब मैम पढ़ रही थी तो वो मुझे खाने के आइटम्स पे नहीं था मेरा दिमाग, मेरा दिमाग वहाँ चला गया जब मैम ने पढ़ा कि माँ के हाथ का स्वाद और जब सब मिलते हैं। बिल्कुल सही है, पता है एक समोसा आपको अकेले मिले ना उसमें उतनी खुशी नहीं होती है जितना कि एक समोसे के जब हम चार टुकड़े करते हैं और चार हमारे जो करीबी बैठे होते हैं उनके में बांटते हैं। और स्पेशली दोस्तों की, मतलब दोस्तों की जब बात निकल के आती है मैम तो वही दिन याद आ जाता है जब हम टिफ़िन में दो पराठे लेकर जाते थे और हमें उसमें से दो या तीन बाइट मिलती थी, लेकिन वो भी खुशी होती थी कि यार दो तीन बाइट मिली, बाकी दोस्तों में बट गई, चलो कोई बात नहीं। फिर हम मम्मी से कहते थे मम्मी एक्स्ट्रा पराठे दिया करो। मुझे आज भी याद है कि जब मैं मैगी ले जाती थी, जब मैं छोटी थी, छोटी नहीं थी मतलब सिक्स या हाँ ऐसे फिफ्थ क्लास में थी, और मैगी ले जाते थे जब हम लंच में, लंच करने के लिए, तो हम लोग क्या करते थे कि मतलब लंच टाइम से थोड़ा सा पहले ही शुरू हो जाता था,
3: वो हम लोग भी करते थे, वो उसको सीट के नीचे, हाँ, डेस्क के नीचे, वो चोरी चोरी हम लोग भी खाते थे,
1: वो शुरू हो जाता था, आज तुम क्या लाई हो, अच्छा आज तुम ये लाई हो, अच्छा आज तुम ये लाई हो, तो चलो खाते हैं। बहुत मजा आता था, मतलब हर किसी के घर से कुछ ना कुछ अलग ही आया होता था, और वो एक बाइट भी मिल जाती थी ना अगर सबकी टिफिन से तो लगता था यार पेट भर गया। मतलब ये नहीं होता था कि पूरा हम अपना जो लाए वो सेपरेट खाएंगे, ऐसा नहीं होता था, तो वो एक खुशी अलग सी होती थी। और मम्मी के हाथ का खाना, मतलब मम्मी के हाथ का खाना, मैं तो कहीं भी चली जाऊँ मुझे अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट का भी खाना ना, तो फिर लगता है यार मम्मी के हाथ का खाना चाहिए, नहीं मज़ा नहीं आया मुझे तो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इमोशंस इतने थे ना कि मन कर रहा है कि बस वही रहें,
3: हो गया, चलें अब आगे।
1: हाँ,
3: चलिए लौट आते हैं अंशिका की सपनों की दुनिया से और आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ सुनते हैं।
1: तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आपसे कहता है कि जो बीच में ही रुक जाते हैं उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती, और जो चलते रहते हैं उन्हें हमेशा मंजिल मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि कल मैंने कुछ ऐसे देखा, जब मैं आ रही थी, जहाँ मैं गई थी वहाँ से जब मैं आ रही थी तो मैंने कुछ देखा वहाँ पे, तो मुझे ये समझ में आया कि बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर आप चलते रहोगे तो आपको मंजिल मिलेगी, लेकिन अगर आप रुक जाओगे तो आपको आपकी मंजिल कभी नहीं मिलेगी, इसलिए बिना किसी प्रॉब्लम और रोक टोक के चलते रहिए।
3: बिल्कुल, और एक ना एक दिन फिर हमें मंजिल मिल ही जाती है।
1: बिल्कुल,
3: तो चलिए आज के इस प्यार भरे सफर को शुरू करते हैं। टाइम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, 1:43 लाइक आप पता ही आप
1: 1:43,
3: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं
1: और उसके बाद
3: आएंगे अंशिका अपनी एक रेसिपी लेकर के आएंगी, देन मैं बताऊंगी और मास्टर शेफ, यानी कि बहुत सारी रेसिपीज हैं आज के दिन में। लेकिन मैं बता दूं, एक अनाउंस कर दूं कि अगर लिसनर्स को भी, हमारी फीमेल लिसनर्स को भी आपको कॉल करके रेसिपी बतानी है, अपने किचन से कुछ अजीबोगरीब और अतरंगी आपको रेसिपीज लेकर के आनी है, तो आप कॉल कर सकते हैं 6393316429 पे, कॉल करिए और अपनी रेसिपी को, अपने किचन से निकली हुई एक रेसिपी हमारे साथ, हम सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बस हम यूं गए यूं आए, स्टे ट्यून्ड।
4: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न कडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की पहली रेसिपी जो कि लेके आई है अंशिका। एंड बता दूं अंशिका कि बहुत दिनों के बाद आज नागेश्वर जी आ गए हैं और धर्मेश त्रिपाठी
3: जी मैम
2: आई थिंक हैं और अनोखी शर्मा। एंड बता दूं कि नागेश्वर जी काफी दिनों के बाद आए हैं, लिख रहे हैं आज समता जी नमस्कार एंड अंशिका को भी लिख रहे होंगे, पर उन्होंने सबसे पहले लिखा है मेरे लिए, तो आपको भी नमस्कार और अंशिका की तरफ से भी नमस्कार।
3: ओ थैंक यू मैम कि आपने मेरी तरफ से भी नमस्कार कर दिया। तो चलिए आप चलते हैं कि आज हमें हमारे किचन में क्या बनाना है। तो आज मैं आपको कुछ अलग सा बनाना बताऊंगी।
2: ओके
3: अलग सा ये है कि अभी तक आपने मैदे के नमक पारे खाए होंगे, आज मैं आपको सूजी के नमक पारे बताऊंगी।
2: सूजी के नमक पारे,
3: यस
2: वेरी गुड, बहुत ही अतरंगी और एक नई चीज, तो चले सुनते हैं भाई कैसे।
3: तो सबसे पहले आपको सूजी ले लेनी है एक कप, लेकिन हाँ इसमें ये ध्यान रखना है कि सूजी महीन वाली लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम जाते हैं और सूजी आप पैकेट के अलावा खुले में कहते हैं ना कि आप मुझे खुले में दे दीजिए, तो वो मोटी वाली सूजी दे देते हैं। तो अगर आपको पतली सूजी चाहिए महीन वाली इट मीन्स, तो आप पैकेट लीजिएगा, तो सूजी का पैकेट ले लेना है ठीक है। उसके बाद में आपको ले लेना है आधे कप से भी कम मैदा ठीक है। फिर हमें ले लेना है रिफाइंड ऑयल, जो कि 2 चम्मच आप रिफाइंड ऑयल ले लीजिएगा। और उसके बाद आपको लेनी है अजवाइन, जीरा, नमक आपके स्वाद के अनुसार जैसे आप खाते हैं। अब बारी आती है कि उसको फ्राई करने के लिए, तो फ्राई करने के लिए सरसों का तेल छोड़ करके आप जो रिफाइंड ऑयल, देसी घी या जो भी यूज करते हैं आप उसमें फ्राई कर सकते हैं।
2: अच्छा, सरसों का तेल क्यों नहीं?
3: सरसों का तेल इसलिए नहीं क्योंकि जब सरसों के तेल में जैसे हम मैदे के नमक पारे भी बनाते हैं तो सरसों के तेल में उसे नहीं फ्राई किया जाता है, वो एक टेस्ट नहीं आता है। जो खस्तापन हमें चाहिए होता है वो तभी आएगा जब आप रिफाइंड ऑयल में उसे फ्राई करें।
2: ये बात।
3: तो चलिए अब बताते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले एक बड़ा सा आपको कंटेनर ले लेना है कोई भी, उसमें सूजी, मैदा, अजवाइन, जीरा, नमक और साथ ही साथ में 2 चम्मच गरम तेल, तेल को पहले हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा और इसे अच्छी तरीके से उसमें डाल दीजिएगा जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई तेल को, और उसके बाद आपको हाथों से उसे मिला करके पूरा एक सार कर लेना है ठीक है। हाथों से मिला के पूरा एक सार कर लिया आपने, अब क्या करना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए आपको इसे इसको गूंथ लेना है, लेकिन आटा गूंथते वक्त ये ध्यान रखना है कि आटा बिल्कुल टाइट होना चाहिए, जरा सा भी ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जरा सा भी ढीला हुआ या इसमें गुनगुने पानी की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो गई तो आपका नमक पारा ढीला बनेगा।
2: हाँ।
3: और नमक पारा कभी भी ढीला अच्छा नहीं लगता, वो क्रिस्पी अच्छा लगता है। अब आपको क्या करना है कि आटे को जब आपने गूंथ लिया है उसके बाद आपको इसे 15 मिनट के लिए रख देना है रेस्ट करने के लिए। 15 मिनट के लिए जब आपने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया, अब बात आती है कि हम रेस्ट पे क्यों रखते हैं। तो किसी भी जैसे आपने आटा गूंथा तो उसे रेस्ट पे इसलिए रखा जाता है ताकि अच्छे से उसमें हम कहते हैं ना खमीर उड़ जानी चाहिए, वो अच्छे से हो जाता है, फूल जाता है, तो फिर अच्छी मतलब तलने वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो अच्छी बनती हैं एक अच्छे टेस्ट के साथ। अब आपको क्या करना है कि आटे के छोटे छोटे आपको पेड़े बना लेने हैं। छोटे छोटे पेड़े बनाने के बाद आपको उसे थोड़ा सा मोटा बेलना है, जैसे जब हम कभी आपने देखा होगा बहुत लोगों के घर पे दाल टिक्की जब बनती है तो वो जैसे उसकी लोई हम बनाते हैं ना बिल्कुल छोटी छोटी, लेकिन हम क्या करते हैं नीचे से थोड़ा उसे मोटा रखते हैं, वैसे ही आपको इसे मोटा रखना है। अब इसे मोटा रखने के बाद में आपने इसको कर लिया, अब आपको क्या करना है कि आपको चाकू की मदद से इसको धीरे धीरे आपको कट करना है। जब आप कट करिएगा तो चाहे आप चाहे तो जैसे काजू कतली होती है ना,
2: हाँ हाँ।
3: हम चाहे तो काजू कतली का शेप दे सकते हैं या जैसा भी शेप आप
2: दें, वो तो अपने ऊपर है शेप देना। बहुत बहुत सारे लोग थोड़ा सा जैसे नहीं वो क्या कहते हैं स्क्वायर टाइप में भी कर लेते हैं, पतले पतले स्क्वायर टाइप में, और जैसे एक बार पूरा बड़ा सा बेल लिया और फिर उसको बर्फी पतली पतली बर्फी स्टाइल में, कुछ लोग मोटा रखते हैं जैसे वो तोशा नहीं होता है
3: जी
2: खुरमा जिसको बोलते हैं
3: जी,
2: कुछ लोग वैसा भी रखना पसंद करते हैं, मतलब अपने अपने मतलब शेप की बात है।
3: बिल्कुल, जैसा आप शेप देना चाहें वैसा आप शेप दे दीजिए। अब आपने कट कर लिया, अब आपको क्या करना है कि घी हमें 5 मिनट पहले जब हम कट कर रहे होंगे तभी आपको घी कढ़ाई में करके उसको गैस पे रख देना है ताकि आपकी घी गर्म हो जाए। अब हम टेस्ट कैसे करेंगे कि हमारी घी जो है वो गर्म हो गई है, तो आपको क्या करना है कि उसी जो आपने आटे को गूथा है उसमें से छोटी सी आपको एक पिंच आपको लेना है आटे को और तेल में डाल करके देखना है। अगर वो ऊपर आ जाती है तो इट मींस कि आपका तेल जो है वो तैयार है उसको फ्राई करने के लिए। अब आपको उसमें डाल करके उसे अच्छे से सुनहरे होने तक आपको फ्राई कर लेना है। जब वो अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि किसी बड़े से और खुले कंटेनर में आपको रख देना है सारा फ्राई करके अलग। ताकि ये क्यों रखते हैं हम, ताकि वो ठंडा हो जाए, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि सूजी हो या मैदा हो, जब भी उसकी कोई भी चीज़ आप बनाते हैं और जब आप फ्राई करने वाली चीज़ बनाते हैं तो उसे कभी तुरंत नहीं खाना चाहिए। जैसे कुछ लोगों में होता है ना, अरे गरम गरम बने लाओ हम गरम गरम खाएं, तो गरम गरम खाने से क्या होता है कि वो फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर देता है, इसलिए आप उसको खुले कंटेनर में रख दीजिए, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप आराम से खाइए। तो ये थे सूजी के नमक पारे, खाइए और इंजॉय करिए।
2: बहुत ही बढ़िया, मतलब पहली बार सुन रहे हैं कि सूजी के भी मतलब रखी हुई है सूजी घर पे, तो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अगर मैदा नहीं हो तो यार कैसे बने और नमक पारे कैसे बन सकते हैं, लेकिन अगर सूजी है तो हम उसके भी नमक पारे बना सकते हैं।
3: बिल्कुल।
2: तो एक बात और पूछनी थी कि अगर हम सूजी में जैसे महीन वाली सूजी अभी आपने बनाई थी, तो सूजी में क्या होता है कि हम लोग अगर चावल का आटा मिला दे तो थोड़ा और क्रिस्पी नहीं बन जाएंगे?
3: वाओ, ये तो बहुत अच्छा है।
2: ये एक टिप मैं आपको देना चाह रही थी, मैं सोच रही थी सब सुन रही थी
3: कि
2: अगर सूजी में आप 1-2 चम्मच आपने चावल का आटा मिला दीजिए और फिर आप उसके नमक पारे बनाएंगी, तो पता है क्या होगा उसका?
3: क्या होगा
2: उसका असर? ये होगा कि पहली बात तो जिस घी में आप तल रही हैं, आप रिफाइंड में इसको तल रहे हैं, तो वो घी कम सोखेगा।
3: ओके,
2: ठीक है, घी कम सोखेगा और प्लस वो क्रिस्पी होंगे। और अभी आपने एक मिस्टेक करी बताते हुए कि उसको एक कंटेनर में रखना है, पर मेरा क्या कहते हैं टिप ऑफ द डे ये होगा आपकी रेसिपी के ऊपर कि कभी भी नमक पारा है, मठरी है, उसको कभी भी किसी बंद कंटेनर में मत रखिए। आपने कोशिश करिए कि एक बड़ी सी प्लेट हो और उसके नीचे आपने जो एक पेपर होता है टिश्यू पेपर उसको बिछा दे, और उसके बाद में आपने तुरंत उसको छान छान के उस पे आप डालते जाएं ताकि वो मुलायम नहीं पड़े, क्योंकि जब आप बंद कंटेनर में रखेंगे तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक आप नहीं उसको स्टोर कर पाएंगे
3: जी।
2: लेकिन जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद में आप इसको स्टोर करेंगे तो ये आपका कम से कम 15 दिन तक ये नमक पारा चल सकता है, क्योंकि वो तब तक टाइट हो जाएंगे।
3: समझ में आया?
2: हाँ, तो बंद कंटेनर में नहीं रखना है,
3: खुले
2: वाली एक प्लेट में या फिर एक आप पेपर बिछा लें कहीं पे, उस पे आप क्या कहते हैं उतारते जाएं ताकि उसका जो मॉइस्चर होता है वो अंदर ही अंदर लॉक हो जाए, और जिससे हमारा नमक पारा जो है वो उसका जो मॉइस्चर होता है वो अंदर ही अंदर लॉक हो जाए और जिससे हमारा नमक पारा जो है वो मुलायम नहीं होने पाए, टाइट रहे।
3: तो इसे कहते हैं कि एक लाइन
2: से नहीं कहते, इसे नहीं कहते जो गलती को छिपाओ नहीं,
3: नहीं मैं छिपाऊंगी नहीं।
2: हां,
3: मैं तो कुछ
2: बोलो,
3: कुछ नहीं,
2: नहीं नहीं बोल दो, अब बोल दो,
3: नहीं नहीं
2: नहीं अब तुम बोल दो, इसे कहते हैं। हाँ जी प्रीति जी, और अगर आपको रेसिपी अपनी कोई रेसिपी अगर आज क्या कहते हैं बतानी है तो आप प्लीज कॉल करिएगा, तो कॉल करने के बाद में आप अपनी रेसिपी हम लोगों तक पहुंचा सकती हैं, ठीक है? तो चले अंशिका ब्रेक की ओर।
3: जी मैम, तो चलिए लिसनर्स चलते हैं और बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, बस यू गए और यू आए। स्टूडियो
4: मैं एनी।
5: मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते, मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या,

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा शो सुन सहेली, और हम वापस आ गए हैं बहुत ही प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और हमारे साथ हैं हमारी मास्टर शेफ यानी कि रंजना मैम। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं सीधे हमारी मास्टर शेफ से कि आज वो हमारे लिए क्या लाई हैं, हमें क्या खिलाने वाली हैं।
5: भाई देखो, बहुत दिनों बाद, पहले तो मेरा नमस्कार, आप सब स्वीकार करिए।
4: जी मैम।
5: तो अब
4: वेलकम मैम।
5: हाँ, अब सावन आ रहा है, बहुत से लोग व्रत रहते हैं, बहुत से लोग सिर्फ मीठा खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मीठा खुरमा बताते हैं।
4: जी।
5: क्योंकि वो रख दो, बच्चों को भी पसंद है और खुद भी कुछ भी खा के पानी पी लो। तो चलिए सामान लिखना शुरू करें।
4: जी मैम।
5: सबसे पहले आप मैदा ले लेंगे 2 कटोरी। अब आपकी इच्छा कटोरी बड़ी हो या छोटी हो, जो भी हो, लेकिन जो कटोरी आप सेलेक्ट कर रहे हैं पूरी तौल उसी पे रखिएगा, ये नहीं है कटोरियां बदल दे।
4: जी मैम।
5: एक ही कटोरी रखिएगा। तो मैदा आप 2 कटोरी ले लेंगे, देसी घी 3/4, मतलब 3 हिस्सा भरा रहे, 1 हिस्सा खाली रहे, वो ले लेंगे आप। और मीठा सोडा, अगर आप 2 कटोरी मैदा ले रहे हैं तो 2 चुटकी आप मीठा सोडा ले रहे हैं।
4: जी।
5: अगर आप 1 कटोरी मैदा ले रहे हैं तो 1 कटोरी आप मीठा सोडा ले रहे हैं, चुटकी, 1/4 चुटकी। और चीनी आप 1 कटोरी ले रहे हैं, तो 2 कटोरी मैदा हो गया, देसी घी 3/4 हो गया, मीठा सोडा 2 चुटकी हो गया, और चीनी 1 कटोरी।
4: जी।
5: और तलने के लिए तेल, अब चाहे आप रिफाइंड लीजिए, सरसों का तेल छोड़ के आप किसी में भी तल सकती हैं।
4: जी मैम।
5: तो चलिए सबसे पहले तैयारी कर ली अब आपने, अब विधि देखिए। पहला नंबर, मैदे को अच्छी तरह से छान ले, ठीक है
4: जी।
5: और जहाँ तक हो मैदे को आप 2 बार छानिए छन्नी से।
4: जी मैम।
5: उसके बाद उसमें देसी घी मिला दीजिए, बेकिंग पाउडर मिला दीजिए, और अपनी हाथ की उंगलियों से बराबर बराबर चलाते हुए खूब मैदा, घी और बेकिंग पाउडर को आप एक सार कर लीजिए।
4: जी।
5: जब सब मिल जाए तब आप उसमें पानी का छींटा दे दे सानिए, पानी एकदम से मत डालिएगा।
4: जी मैम।
5: थोड़ा सा चम्मच में ले लेके आप डालती रहिए, क्योंकि हमें खूब अच्छा कड़ा कड़ा सा डो बनाना है।
4: जी।
5: मुलायम नहीं बनाना है, जैसे हम लोग मठरी अठरी बनाते हैं वैसा नहीं बनाना, कड़ा बनाना।
4: जी मैम।
5: फिर इसको, जो डो हमने तैयार किया है, इसको 10 मिनट के लिए हम कपड़े से ढककर अलग रख देंगे, ठीक है
4: जी।
5: उसके बाद अब तैयारी क्या करेंगे कि कढ़ाई में जो है वो डालेंगे तेल, और धीमी आंच पे चढ़ा देंगे गरम होने के लिए।
4: जी मैम।
5: क्योंकि अगर जब हमारा आटा तैयार हो जाएगा तो बेलने में हमें समय नहीं लगेगा, तो हम इधर अपनी धीमी आंच पे गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई, और उसके बाद मीडियम आंच कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे कि जो हमने 10 मिनट पहले डो सान के रखा है उसको हाथ से खूब अच्छे से मल लेंगे।
4: जी।
5: और मलने के बाद 2 ही लोई बनेगी 2 कटोरी में, तो हम आधा कर लेंगे और उसको खूब अच्छे से मल करके, और 1 अंगुल बराबर, मतलब मोटा 1 सेंटीमीटर बराबर मोटा बेल लेंगे।
4: जी मैम।
5: और बेलने के बाद चौकोर टुकड़ों में या तिकोनों में, आपकी इच्छा,
4: जैसे आप चाहें,
5: हाँ, उस इसमें काट लेंगे, पर मोटा रहेगा।
4: जी।
5: अब आप क्या करेंगे कि कढ़ाई में आपने तेल डाल रखा है, आप एक एक उठा, मतलब एक घान जो आपने बेला है वो उठा के डाल दीजिए और तुरंत नहीं चलाइएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। जब थोड़े खुरमे जो है जब ऊपर आने लगे, जब आप तेल में डालेंगी तो पहले नीचे रहेंगे, जब ये थोड़ा घी अब्सॉर्ब कर लेंगे तो ये ऊपर आने लगेंगे।
4: जी मैम।
5: जब ये ऊपर आने लगे आप तभी इसको चलाएंगी
4: जी,
5: और गुलाबी गुलाबी सेक करके अलग निकाल के पूरे को रख लेंगी।
4: जी मैम।
5: ठीक है, अब आप क्या करेंगी, आपका पूरा खुरमा बन गया, सेक लिया, अलग रख लिया। अब एक और कढ़ाई लेंगे, उसमें हम चीनी डालेंगे, जो हमने जो है चीनी ली है ना एक कटोरी, और उसको छोड़ जो है आधी कटोरी हम पानी डालेंगे।
4: जी।
5: नाप करके ही डालिएगा और तेज आंच रखेंगे, और जब गाढ़ा बुलबुला सा बनने लगेगा, तुमने देखा होगा चीनी जब पकाओ तो बुलबुल मतलब पहले खौलती है फिर बुलबुले छोड़ने लगती है।
4: जी।
5: जब बुलबुले छोड़ने लग जाए, अब आप इसमें हमको चाशनी नहीं देखनी कि एक तार की है कि दो तार की है, जब बुलबुले आ रहे हैं उसी समय हम जो ये खुरमा बनाए हैं ये सब खुरमे उसमें डाल देंगे।
4: जी।
5: भले वो पिघली पिघली रहेगी, उसके बाद आँच हम बंद कर देंगे, थोड़ी देर एक दो मिनट चलाएंगे आँच पे ही, फिर हम आँच बंद कर देंगे और कढ़ाई को उतार लेंगे या उसी पे रखा रहने देंगे, थोड़ी थोड़ी देर पे हम उसको चलाते रहेंगे। अब आँच तो है नहीं पर वो चाशनी गर्म है, पिघली हुई भी है, तो हम इसको चलाते जाएंगे और एक समय आएगा कि खुरमा जो है वो पूरा का पूरा चाशनी, क्योंकि हमने तार की तो बनाई नहीं है,
4: जी जी,
5: पर वो पूरा खुरमा एब्जॉर्ब कर लेगा चाशनी को।
4: जी मैम।
5: और बस आपका तैयार है, और जूसी जब आप खुद खाएंगे, बच्चों को खाएंगे, तब इसके अंदर हल्की हल्की सी चाशनी आपको मिलेगी खाने के लिए, ऊपर से जो है आप बच्चों को दीजिए सर्व करने को गरम गरम, खुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, शीशी में भर के रख लीजिए, एक महीने तक ये बहुत अच्छा चलेगा।
4: वाह, मतलब इतने अच्छे खुरमे सुन के तो मन यही कर रहा है मैम।
5: हाँ।
4: कि घर जाऊं अभी बनाऊं और बस फटाफट से खा,
5: फटाफट खा लिया जाए, बहुत अच्छा बनता है।
4: जी।
5: और जैसे हम लोग चाशनी में बनाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि ढाई तार की चाशनी हो जाए या तीन तार की हो गई,
4: जी,
5: तब हम लोग डालते हैं, तेजी में चीनी सूख जाती है ऊपर।
4: हाँ।
5: ऊपर फिर हम लोग निकाल लेते हैं, पर ये उससे थोड़ा भिन्न है।
4: जी,
5: थोड़ा
4: जी।
5: क्योंकि जूसी मीठा खुरमा है।
4: जी,
5: इसमें हल्का हल्का सा जो हमने चाशनी में उतार के बनाया है वो धीरे धीरे अब्सॉर्ब करा है, एक दो घंटा लगेगा आपको, तो हम चलाते जाएंगे थोड़ी देर बाद, फिर उलट पुलट दिया फूल, तो इससे वो पूरी चाशनी पी लेगा।
4: जी मैम। तो चलिए लिसनर्स चलते हैं और इस मीठे मीठे खुरमे के साथ सुनते हैं एक मीठा मीठा सा सॉन्ग, बस यू गए यू आए, स्टे ट्यून।
6: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
7: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
6: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
7: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: तो बच्चों, आजकल जो है बन बहुत खाते हैं। कभी कहेंगे ना कि हम पाव भाजी खाएंगे
5: जी,
4: कभी कहेंगे कि इसी में मोयनीज लगा दो, हम मोयनीज खाएंगे। तो आज हम आपको बहुत सरल ढंग से बन सिखा रहे हैं।
5: अरे वाह।
4: और इसमें कोई ना ज्यादा सामान लगना है, ना ज्यादा ही मेहनत लगनी है
5: जी मैम।
4: और आपको ये बहुत ताजा बहुत, बाजारों में देखते नहीं है कोई पैर से सान रहा, कोई हाथ से डबल रोटी सान रहा। एक तो आप अपने घर में तैयार करेंगी तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगी। तो चलिए सामान लिखिए। सबसे पहले तो हम ईस्ट पाउडर बाजार में मिलता है, आप उसको मंगा के अपने घर रख लीजिए
5: जी।
4: तो अब विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक प्याला गुनगुना दूध लेंगे। गुनगुना मतलब ना बहुत तेज गर्म हो ना बहुत ठंडा हो, उंगली में डालिए। आप डालिए जब दूध में उंगली तो आपका मतलब आराम से महसूस करें कि गुनगुना है
5: जी मैम।
4: अब आप उसमें जो है 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल देंगे।
5: पिसी हुई चीनी,
4: हाँ, जो हमारा दूध है उसमें हम 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी डाल देंगे
5: जी मैम।
4: उसके बाद हम उसमें 2 चाय का चम्मच ईस्ट पाउडर डाल देंगे
5: जी।
4: और 10 मिनट तक ढक करके इसको अलग करके रख देंगे, ठीक है
5: जी मैम।
4: अब जो है हम मैदा लेंगे 3 कप अलग से, उसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, ठीक है
5: जी मैम।
4: और खूब अच्छे से इसको भी हम मिला लेंगे। अब ये जानती हो मैदा छानेंगे ही हम 2 बार, उसमें तब नमक मिलाएंगे। अब ये बार बार बताने वाली बात नहीं है, जब हम लोग कोई चीज यूज करते हैं तो 2 बार छान ही लेते हैं, खास तौर पे बरसात के समय। और उसमें हम जो है नमक डाल देंगे, फिर हाथों से जो है खूब अच्छे से। अब जो है इसमें हम 3 टेबल स्पून बटर डालेंगे। बटर जो बाजार में आता है ना, जिसको हम लोग लेते हैं, तो इसमें हम 3 टेबल स्पून बटर डालेंगे
5: जी मैम।
4: अब उसके बाद इसको भी खूब हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो हमने ईस्ट का घोल तैयार करा है, जो हमने ईस्ट एक्टिवेट किया है, जो दूध में डाला था, उसको हम इसी मैदे में डालेंगे
5: जी।
4: तो आप जब ये ईस्ट एक्टिवेट हुआ, ये आप कैसे जानेंगी, जानेगी जो दूध है आपका वो जैसे फटा फटा ऊपर नहीं जमने लगता है
5: जी मैम,
4: वैसा जम जाएगा। तब आप जानिए कि ईस्ट हमारा एक्टिवेट हो गया है।
5: ओके मैम।
4: अब आप उसको ले करके और उससे आप मैदे को सान लेंगे,
5: उस ईस्ट से जो हमने पहले ही घोल के रखा हुआ है उसी से मैदा सान,
4: बिल्कुल सान लेंगे
5: जी जी।
4: आप अपने चाहे हाथों से मिलाइए, अगर आपके पास हैंड मिक्सर है ग्राइंडर आप उससे चला लीजिए, तो खूब अच्छे से मैं चलाना है
5: जी मैम।
4: अगर हाथ से है तो आप हाथ से खूब अच्छे से। अब आप इसको भी क्या करेंगी कि 10 मिनट तक ढक करके फिर रख देंगी इस मैदे को जो आपने बहुत अच्छे से मिलाया है
5: जी,
4: जो हमने हैंड ग्राइंडर से मिलाया है सब है, उसको 10-15 मिनट आप ढक देंगी
5: जी।
4: उसके बाद फिर उठाएंगी। अब हाथ में आप हल्का हल्का बटर या घी लगा लेंगी
5: जी मैम।
4: और हाथ से हथेली से आप लोग जैसे भटूरे लंबे लंबे नहीं मिलाते
5: जी,
4: वैसे खूब अच्छे अच्छे करके मिला लेंगे। मिला लेंगे उसके बाद एक लंबी लोई बनाएंगे इसकी, और बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। काटने के बाद हम एक ट्रे लेंगे, ट्रे में जो है हम घी लगा लेंगे पहले नीचे, चाहे बटर लगा देंगे। उस उसके बाद छोटे छोटे गोले जैसे पाव मिलते हैं ना गोल
5: जी,
4: गोल
5: जी,
4: हथेलियों से चला चला करके उसमें आप जब भी यूज करेंगी तो आप जो है बटर लेंगी, ठीक है
5: जी,
4: और फैट वाला लीजिएगा, बिना फैट वाला मत लीजिएगा
5: जी,
4: और वो मक्खन से गोल गोल मिला करके आप ट्रे में रख दीजिएगा। ट्रे में रखने के बाद आप जो है इसको 180 डिग्री ओवन पे डाल देंगे
5: जी,
4: और वो हल्का हल्का। अब जिसके घर ओवन नहीं है, है ना, तो वो क्या करेगा, अब छोटे बर्तन में जैसे आपके पास जो है वो क्या कहते हैं कुकर है या लंबी जो भी है, उसमें आप नीचे बालू डाल दीजिए या उसको गर्म कर लीजिए छोटे जो है डब्बे में, यही घी लगा के ऊपर से ढक दीजिए बिना पानी आने के, बिना स्टीम के, थोड़ी थोड़ी देर में खोल के आप देखिए तो जैसे कुकर धीमे धीमे गर्म होगा, धीमी आंच पर, धीमी आंच पे रखिए तो ये जो बन है वो भी लाल हो जाएगा
5: जी।
4: और बहुत अच्छे जैसे बिस्किट कुकर में तैयार होते हैं, केक
5: जी
4: होते हैं, वैसे ये भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है बना के देखिए, जब आप इसको निकाल लेंगी, अब आप चाहती हैं कि भरा रहे तो आजकल तो बच्चे भरा बहुत पसंद करते हैं
5: जी,
4: तो जब आपने गोल गोल लोई तोड़ ली उसके बाद आप इसमें एक एक टुकड़ा चीज का काट काट के धर दीजिए और गोला बना लीजिए और ऊपर से मक्खन लगा करके आप इसको सेक लीजिए, और अगर आप कुकर में कर रही हैं तो भी ये कर सकती हैं। और अब आप क्या करेंगी, चीनी फिर एक टेबल स्पून आप पीस लीजिए खूब अच्छे से महीन
5: जी मैम,
4: और जब आपके ये बन जो है तैयार हो जाए तब इसको हल्का हल्का चीनी में लपेट दीजिए, ठीक है। तो जब बच्चे खाएंगे तो ऊपर से खूब अच्छी चीनी लगी हुई है और अंदर चीज लगा हुआ है, चीज आपके ऊपर है, अगर आप चाहती हैं डालना तो भर लीजिए और नहीं चाहती हैं तो सादा ही बन रखिए। और ये डोनट्स देखिएगा इतने अच्छे लगते हैं और इतने हल्के बनते हैं, हमने तो देखा बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको डीप फ्राई भी करते हैं
5: जी मैम,
4: तुम करके देखना, अगर फूट रहा है तो थोड़ा सा मैदा बढ़ा लेना, और नहीं तो ऐसे ही डीप फ्राई तेज आंच में आप कर करके अलग निकाल लेंगे
5: जी।
4: और तब आप इस पे चाहे तो छन्नी से चीनी आप इसको जो पीसी है उसको छिड़क दीजिए, इसको निकाल के थाली में रखा और ऊपर से छन्नी डाल से छान लिया तो सब पे चीनी लग जाएगी और बहुत सुंदर लगते हैं। देखिएगा आज की डिश आपके बच्चों के लायक है और बहुत ही अच्छी है और बहुत सरल है। बस इसमें है जब आटा आपका सन जाता है 10 मिनट रख देती हैं, उसके बाद हथेलियों से खूब लंबे लंबे जैसे हम भटूरे बनाते हैं हथेलियों से
5: जी।
4: वैसे ही मलिएगा, मलने के बाद आप जैसा हमने बताया है वैसा रखिए, देखिए कितने सुंदर बन डोनट्स तैयार होते हैं। कभी भी आप इससे पाव भाजी बना सकती हैं, ऊपर चीनी मत छिड़किए, कभी भी ब्रेड बटर में दे सकती हैं, कभी को मोइनीज लगा के दे सकती हैं, चाहे जैसे भी दीजिए। और देखिए आज की डिश आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी,
5: बहुत पसंद आएगी, और मुझे तो बहुत पसंद आई,
4: सरल भी बहुत है,
5: बहुत सरल है मैम, मतलब इतनी जल्दी आप घर के डोनट्स खा सकते हैं।
4: बिल्कुल,
5: सोचिए वैसे होता है ना कि जब बच्चे कहते हैं मम्मी डोनट्स खाने तो मन में आता है आप बाहर से लेकर,
4: बाहर से ले।
5: लेकिन अब तो ऐसा नहीं करना है, मैम ने जैसे कि अभी बताया घर में तैयार होने वाले हैं ये डोनट्स, तो फटाफट से अपने किचन में जाइए और अपने बच्चों के लिए इसे जरूर बनाइए। थैंक यू सो मच मैम,
4: नमस्कार श्रोताओं।
5: तो चलिए लिसनर्स चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, बस यू गए और यू आए स्टेडियम।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला शो सुन सहेली।
5: जी हाँ, तो मैंने अभी कहा था ना कि हम कॉल करेंगे और कॉल में देखते हैं कि आज किसकी कॉल आई है। तो कॉल में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आई थिंक प्रीति जी। हेलो प्रीति जी।
6: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
5: गुड आफ्टरनून। कैसी हैं आप?

0: अगर ना मिले तो इसको छीला हुआ दाना भी ले आए सेठ खान का, ले आए। फिर एक जैसे फैमिली मेंबर हूँ, एक कटोरी ले मेंबर के अनुसार, फैमिली मेंबर के अनुसार बनाए। एक कटोरी जैसे स्वीट कॉर्न का दाना लिया
1: जी।
0: उसको धो लिया, फिर कुकर में इसको बनाना है
1: जी।
0: कुकर लिया, कुकर गैस के ऊपर कुकर रखा, तेल डाला, तेल में जीरा फ्राई, जीरा डालेंगे तड़के में, प्याज डालेंगे और हरी मिर्च
1: जी।
0: जैसे तीखा खाना है उस हिसाब से डालना है, दो मिर्चे काफी है
1: जी।
0: फिर उसको फ्राई कर लिया उसको तड़के को, फिर जो रखा था धुला हुआ स्वीट कॉर्न दाना उसको उसमें डाल दिया, उसको भी डाल के चलाया। फिर उसमें चाट मसाला थोड़ा डाल लिया स्वाद अनुसार अपने, इतना हम लोग गृहिणी जानते हैं कितना डालना है। आधा चम्मच डाला चाट मसाला, नमक डाला स्वाद अनुसार, और फिर आधा कटोरी पानी लेके इसमें डाल देंगे कुकर में, इसको बंद कर देंगे, सीटी लगा देंगे। अब जब ये सीटी तेज आए फिर उसको गैस को हम नॉब को स्लो कर देंगे, स्लो करके हम 10 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि ये कॉर्न पकने में टाइम लगता है।
1: हाँ, वही मैं पूछने वाली थी कि जो अगर मान लीजिए भुट्टा है हमारे पास में है तो उसके दाने निकाल करके भी हम लोग बना सकते हैं।
0: हाँ जी मैम, उसको पहले उसको भिगो लेंगे।
1: हाँ।
0: 10 मिनट तक भिगो लेंगे, फिर पानी छान के फिर उसको कुकर में पकाएंगे हम
1: जी, जी,
0: और ताजा अगर भुट रहेगा तो उसमें कोई बात ही नहीं, तो जल्दी पक जाएगा।
1: हाँ, वो तो जल्दी पक जाता है।
0: हाँ, फिर जब 10 मिनट तक धीरे आग पे पक गया तो उसको जब सीटी खुलने तक देखेंगे, सीटी खुलेगा फिर उसको हम ऊपर से धनिया पत्ती उसमें डाल देंगे और नींबू, नींबू डाल देंगे, और पकाते समय मैम उसमें टमाटर भी अगर डाल दे तो और अच्छा रहेगा।
1: हाँ,
0: टमाटर
1: हाँ,
0: देखने में अच्छा लगेगा उसका स्वीट कॉर्न रेसिपी। और फिर उसको जब नींबू और धनिया पत्ती सर्व करते समय डाल देंगे, सबको सर्व कर देंगे चाय नाश्ते के साथ, बहुत टेस्टी लगेगा।
1: पता है प्रीति जी, इस समय हम लोगों को, आपको पता ही है ना कि हम लोगों को जब श्वेता थी तब भी हम लोग आपसे ये बात कहते थे ना कि इस समय हम लोगों को दो चीजें बहुत होती हैं, एक तो बहुत तेज से भूख लगी रही होती है और एक नींद आती है। क्योंकि दोपहर का ये समय होता है मेन मिड टाइम में, तो आज तो भूख लग रही है, नींद तो अब खैर नहीं आती है, बट अब भूख लगी रहती है। और उसमें जब आप जैसी लजीज कोई रेसिपी बताता रहे तो मन करता है कि जो बता रहे ना वो कभी खिला भी दे हम लोगों को। क्यों?
2: बिल्कुल मैम,
0: तो जरूर खिलाते।
1: आपने तो आना ही छोड़ दिया मुझे, मतलब मैं आपको मतलब काफी 1-1.5 साल तो हो गया आप नहीं आई है। आप बहुत पहले आई थी एक बार ही,
0: रक्षाबंधन में आए थे,
1: रक्षाबंधन
0: आप मिली नहीं है, मैम सर मनु सर मिले थे।
1: मैं नहीं मिली थी आपसे तो।
0: हाँ।
1: इस रक्षाबंधन में अगर आपका प्लान है तो आप आइए जरूर से, और स्टूडियो आइएगा, हम लोग से जरूर से मिलिएगा।
0: जी मैम जी,
1: ठीक है। और आपकी रेसिपी बहुत ही बढ़िया थी, मजा आ गया सुन करके, और आई थिंक सभी जितने भी हमारे लिसनर्स हैं ये जरूर से ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बारिश का मौसम है और भुट्टे की रेसिपी एंड चाय तो मजा ही आ जाए, मतलब क्या ही कहने। अंशिका कुछ कहना चाह रही है, बड़ी देर से उसके मुंह में पानी आ रहा है तो वो कुछ कहना चाह रही है। हाँ अंशिका।
2: प्रीति जी बहुत ही अच्छे आपने भुट्टे की अभी जो रेसिपी बताई वो बताई, और सुन करके मुँह में यहीं पे पानी आ गया कि अगर भुट्टे होते तो हमें भी यही बना लेते। So, बहुत टेस्टी है।
1: नागेश्वर जी एक बदमाशी वाला प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि भुट्टे में से रेशे कैसे अलग करें।
0: मैं भी नागेश्वर, जहाँ भुट्टा बहुत होता है उनके यहाँ, इनके खुद ही खेती करते हैं भुट्टे की।
1: ये हाल है कि आज तक एक भुट्टा हम लोग को नसीब नहीं हुआ, ये जान लीजिए।
0: हम लोग भी, हमें भी कहते हैं एक बोरी भिजवाएंगे लेकिन आज तक नहीं भिजवाए।
1: वो ना वो मुझे लग रहा है कि वो बोरी आएगी आपके पास, लेकिन अभी नहीं आएगी, अभी 10-15 साल रुक जाइए तब आएगी आपके पास। तो नागेश्वर जी आपके ऊपर बहुत आरोप है कि आपके की खेती भी होती है भुट्टों की लेकिन आज तक आपने खिलाया नहीं। तो भाई आप अगर आपको अपना आरोप धुलना है तो एक बोरी हमारे लिए और अंशिका के लिए, और एक बोरी आप प्रीति जी के लिए जरूर से भिजवा दें, है ना प्रीति जी? तब जा करके कहीं आपका आरोप धुल पाएगा,
2: आरोप मुक्त होंगे।
1: हाँ, तो नहीं नागेश्वर जी सोच रहे हैं इसलिए कोई मैसेज नहीं कर रहे, वो सोच रहे हैं कि कैसे भिजवाएं। आप एक ही बोरी भिजवा दो, हम लोग आधी आधी
2: मैनेज कर लेंगे।
1: हाँ, हम लोग मैनेज कर लेंगे, तीन लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच प्रीति जी, अच्छा लगा आपने रेसिपी।
2: थैंक यू प्रीति जी,
1: ऐसे जुड़े हमेशा से ऐसे जुड़ा करिए हमारे सुन सहेली प्रोग्राम में मंडे को।
0: जी कोशिश रहेगा
1: जी। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ में प्रीति जी, और बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी उन्होंने बताई। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे एक गाने की, और उसके बाद आएंगे आपसे टाटा बाय करने।

0: थक आ गए हैं इस प्यारे से गाने के साथ, जो कि होता है चलते चलते मेरी आवाज मेरे ये गीत याद रखना, और बिल्कुल याद रखेंगे। लेकिन आज की रेसिपीज का फीडबैक जरूर दीजिएगा, एंड आज के प्रोग्राम का भी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। और जाते जाते कहना चाहूंगी कि योगशाला को हम लोगों ने एक नए सीरीज हम रोज लगाते हैं और आपके लिए, तो आप भाई जरूर से उस पर भी फीडबैक दिया करिए, सुना करिए, एंड हर बार की तरीके से कुछ न कुछ अच्छा वाला फीडबैक हमें जरूर दिया करिए, चाहे वो हमारे प्रोग्राम को हो और चाहे आपके योगशाला को हो।
1: बिल्कुल, और बिल्कुल याद रखिए इस बात को कि करें योग और रहें निरोग, इसलिए योग करना बहुत जरूरी है।
0: तो कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
1: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

हाँ जी गोंडावासियों, देशवासियों और सभी को सादर नमस्कार, स्वागतम और आप सभी का आभार व्यक्त करती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। भाई आप लोग की दुआओं से हम टाइमली पहुंच गए फाइनली। और आते आते भाई मेरे जहन में एक बहुत ही प्यारा सा गीत उमड़ा जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। आज दिन है सोमवार और सोमवार यानी कि वीकेंड का स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब कि मूड को आपको इन्हेंस करना। मूडी वाला मंडे होता है। इस मंडे वाले दिन में आप चाहते हैं कुछ बेहतर कुछ बेहतर कुछ बेहतरीन करें। लेकिन ये जो मौसम है ऑसम वाला जो कि गोंडा में पूरी तरह से व्याप्त हो चला है पिछले दो दिन से और आज भी उसका वही हाल है। और हमारी प्यारी अनुष्का जी ने हमसे कहा था भैया थम के बरस, थम थम के बरस। उन्होंने ऐसा कहा था हमसे शनिवार को, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि रुक रुक के बरसिए लेकिन जाइए नहीं, रिमझिम रिमझिम रिमझिम रिमझिम झमझमाते रहिए लेकिन कहीं जाइए नहीं। तो भाई मौसम ने उनकी सुन ली और ऑसम वाला वेदर है। और ऐसे वक्त में तो भाई मंडे वाला मूड और भी ज्यादा मूडी हो जाता है, यानी कि जब दोपहर हो और वक्त खास करके शुभ दोपहरिया वाला वक्त हो तो भाई बस आराम करने का मन होता है और प्यारे प्यारे गीतों को नगमों को सुनने का, अपनी पसंद को सुनते जाने का और कहीं सुकून के पल बिताने का ऐसा मन होता है। तो भाई वक्त हो गया है आपके अपने शो का जिसका नाम है फोनी फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा। आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो कनेक्टली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा और वो गाना पहुंचाने का भी वक्त हो गया है जो मैं रास्ते में आते आते भाई मेरे जहन में आ रहा था और आप लोग के आशीर्वाद से मैं फिसलते फिसलती हूँ ऐसे पांव रखा स्लीप करते करते बच गई फाइनली। तो मैं पूरी तरह से सकुशल पहुंच गई स्टूडियो और आप तक पहुंचाने जा रही हूँ वो गाना जो मेरे जहन में उमड़ा। तो वो गाना क्या था आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं और फिर आते हैं आज की पहली वाली डिमांड लेके। लेकिन ये गाना खास आप सभी के लिए, जी हमारे सभी प्यारे लिसनर्स के लिए, क्योंकि मैंने मौसम से कहा क्या वो आप इस गाने के हर एक अल्फाज के साथ में सुनेंगे, महसूस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। वैसे जानना क्या है वो इस गाने के माध्यम से जानिए। 3 से 4 के सफर में आपके अपने फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा के साथ। वैसे नंबर वही है 6393316429, आप भी कॉल कर सकते हैं 6693316429 पर। एंजॉय द ट्रैक।

क्या दोस्तों, तो इस मौसम से मैंने बस यही कहा कि जाने दो, मुझे जाना है भैया, बस बचा के मुझे यहाँ से वहां तक कैसे भी पहुंचा। तो रफ्तार मेल से रफ्तार तय करके आई है आपकी अपनी आर्य आकांक्षा, और भाई जिसने हमें ड्रॉप किया है वो तो ना जाने किस स्पीड में थे, और अगर बीच में बाय गॉड मैंने कहा मुझे 5 मिनट में पहुंचना है स्टूडियो, ये रफ्तार भी किसी की हो सकती है। हाँ, लौटते से मैंने कहा थोड़ा आराम से जाना वरना कुछ भी हो सकता है। पीछे तो मैं बैठी थी, बैलेंस हो गया था, इस बार अगर रफ्तार मेल से जाओगे तो हवाओं से बात करते हुए जाओगे और घर की बजाय कहीं और पहुंच जाओगे। फिलहाल आप एंजॉय करिए इस सॉन्ग को जो स्पेशली आप लोग के लिए डेडिकेशन में है आरजे आकांक्षा की ओर से।

हाँ, तो वादा निभाने आ गए हैं भाई। हम शनिवार को गए थे आपसे वादा करके गए थे कि मिलते हैं मंडे को, और अभी बारी है आज की पहली डिमांड की। और पहली डिमांड हमारे पास में आई हुई है हथियागढ़ से। हथियागढ़ से आई हुई डिमांड आप सभी तक पहुंचाते हैं और इस सफर को तय करते हैं, मतलब के थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। और ये हमारे प्यारे दीपक जी की डिमांड, बड़ी सूदी सी डिमांड, गैंगस्टर मूवी से के साहब की आवाज। ओहो हो, क्या बात है, के साहब की आवाज हो फिर कुछ और चाहिए ही नहीं। एक सफर हो और साथ में एक हम सफर।

पता नहीं क्यों अंजाम जानते हुए भी मैं हर बार आकाश से मिलने पहुंच जाती हूँ, शायद दिल के हाथों मजबूर होके। एक महीने पहले इसी रेस्टोरेंट में मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी। यकीन नहीं होता इतने से वक्त में वो मेरे इतने करीब आ गया है।

क्या बात है भाई, कहते नहीं कि कुछ नगीने होते हैं, कुछ शानदार तोहफे होते हैं जो खुदा की ओर से बख्शे जाते हैं, और लेकिन कुछ चंद वक्त के लिए उन्हीं में से एक थे हमारे केके साहब। बहुत ही प्यारी आवाज, और कहीं ना कहीं अरिजीत साहब आज भी इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, और सुनिधि जी हों या श्रेया जी हों, सभी कहते हैं कि हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। बस कुछ ही सालों में ये यूं हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री पे छाए जिसका कोई जवाब ही नहीं, और जो पगचिन इन्होंने बनाया उस तक पहुंचना भी इम्पॉसिबल है। कुछ ऐसे नगमे, कुछ ऐसी आवाज हमारे पास आके और हमसे दूर चल जाते हैं जो हमारी यादों में हमेशा बसे रहते हैं, उनमें से एक के साहब। और अब बढ़ते हैं उस डिमांड की ओर जो हमारे पास में है मुस्तफा जी की ओर से सऊदी अरेबिया से। तो चलिए सुन लेते हैं किस बात की देरी है भाई, इतिहास के पन्नों से निकाला हुआ ये गाना, यानी कि इतिहास मूवी से ये शानदार नगमा आप सभी तक पहुंचाती है आपके अपने आरजे आकांक्षा, आपके अपने फेवरेट कार्यक्रम यानी के कॉलर ट्यून गोंडा के साथ।

क्या बात है भाई, बचपन में जो देखी मूवी वो आज हम उस गाने का लुत्फ उठा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा जी की बदौलत। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी सी डिमांड के लिए। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है हमारी प्यारी, हाँ जी, गुलफशा सिद्दीकी जी की ओर से। और गुलफशा सिद्दीकी जी हमसे सुनना चाहती हैं, उम्मीद है आपका गाना यही हो क्योंकि आपने खाली उसका मुखड़ा मुखड़ा बताया है, और अगर कोई और गाना होगा तो आप कल प्लीज़ डिमांड करिएगा और मूवी के नेम के साथ में। फिलहाल उम्मीद तो यही है कि आपका गाना यही होगा। आप तक पहुँचाते हैं, उसके बाद आते हैं सुनील कुशवाहा जी की डिमांड के साथ, फिर होंगे अमित कुमार जी, फिर हमारे प्यारे कमल नयन जी, उसके बाद सुरेंद्र यादव जी, फिर हमारे प्रबल मिश्रा जी, पंडित जी, और देन आते हैं और बता दें किन की डिमांड हमारे पास में है। फिलहाल रीना शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं रुड़की उत्तराखंड से, और इनका कहना है कि आज का पहला गाना काफी अच्छा था। वैसे मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन मैंने कहा कोई मौका बने, कोई दस्तूर हो, तब आप लोग को डेडिकेशन में ये गाना भेजते हैं। गाना तो वाकई बहुत प्यारा था। थैंक यू सो मच।

प्रमुख जी, बारिश का बहुत बड़ा सैलाब आया, आपका गाना बह गया, अब उसको हमको जाके तैर के निकाल के लाना पड़ेगा। हमको लग रहा है कल तक का वक्त तो लगेगा ही, तब तक आप इंतजार करिए और मत रोइए कि और तेज से तूफान में जो बचा कुचा मतलब उसके निशान हो, उसके पदचिन्ह हो, वो भी गायब हो जाए और हम ढूंढ भी ना पाए आपके गाने को। तो रोइए नहीं, सुनते रहिए, फिलहाल एंजॉय करते रहिए।

अच्छा दोस्तों, इस गाने से मुझे एक बात याद आई और मेरे जहन में एक सवाल भी उठा, तो मैं वो सवाल आप सभी से रखना चाहूंगी, हमारे प्यारे चैट बॉक्स वासियों से खास करके, कि अगर आपको पूछा जाए कि आपकी पूरी जिंदगी में सबसे सबसे ज्यादा अच्छा वाला दिन आपने कब बिताया, तो वो आपका कौन सा दिन होगा, प्लीज मेंशन करिए, फिर मैं बताऊंगी अपना वाला। जी हाँ, और तब तक के लिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा जो कि हमारे पास में आया हुआ है बतौर रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट है हमारे प्यारे सुनील कुशवाहा जी की। गाना बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि गाना ही कुछ ऐसा है। हाँ, और इसमें थोड़े से शब्द है अरेबिक, तो भाई जिसको इसका अर्थ मालूम हो बता सकता है। वैसे मे बी आई एम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम ही है इसके। फिलहाल एंजॉय करिए।

हाँ, और सबकी बातों बातों में पता नहीं चला कि किसका गाना चल गया भाई। सभी ने अपना जहन दौड़ाया और उसके बाद में कुछ यादों की पिटारे से कोई कहीं से कोई कहीं से, और कुछ लोग तो भाई इतने बेहतरीन हैं कि भाई बस यही कहेंगे कि मोटिवेशन की पूरी दुकान अपने साथ लेके चलते हैं हमारे कुमार साहब। भाई इनका कहना है हर सेकेंड हर पल अच्छा ही होता है, इस पल जिंदा है, इस बात से भी कुछ बेहतर हो सकता है। क्या बात है भाई, सल्यूट है आपको। और आपके जैसे अगर टीचर हुए तो जाहिर सी बात है मोटिवेशन की कमी नहीं होगी स्टूडेंट्स में। इसके अलावा हमारे पास में कुछ और प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं जवाब में कि भाई सबसे बेहतर दिन पूरी जिंदगी में किसका क्या बीता। प्रमुख जी कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे, मेरा गाना ही नहीं बजा। कोई बात नहीं, आपका गाना नहीं, आपका तो हम सब कुछ बजवा देंगे, परेशान ना होइए, आपके बारे में हमें सब पता है। क्या हम बताएं, आप जरा जवाब दीजिए, बताएं या ना बताएं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये मजाक था, आगे बढ़ते हैं। डरवाने का मेरी आदत होती है और मैं अपने दोस्तों से मजाक कर लेती हूँ। और हमारे पास सबसे पहला जवाब आया था नागेश्वर ढाकर जी का, ये बच्चे ही रहेंगे, ये तो कभी बड़े होना ही नहीं चाहते हैं। कह रहे 2 अक्टूबर को क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती है। भाई संडे को भी छुट्टी होती है, हाँ हफ्ते में एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी होती है, मतलब क्या बोले, एक दिन एक्स्ट्रा नहीं होती, एक ही दिन होती है। खैर सभी की संडे छुट्टी होती है, मेरी फ्राइडे होती है। खैर, और ताबिश खान जी कहते हैं जब मेरी सगाई थी तब, ओहो क्या बात है भाई, कोई परी आई थी आपकी लाइफ में, क्या बात है, बहुत खूब। और बाहुबली जी का कहना है हमारे यानी पंडित जी का कि जब हम किसी को नहीं पहचानते थे तब वो मेरे दिन सबसे अच्छे थे। अच्छा, जब से आप किसी को पहचानने लगे तो उससे आपके दिन अच्छे नहीं बीत रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अनोखी शर्मा जी कह रही हैं कि भाई मुझे मेरा प्यार मिला तब। ओहो, आपको आपका प्यार वैसे मिला कब, ये तो आपने बताया ही नहीं। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज की अगर बात करें तो नेहा जी का कहना है मेरे बेस्ट पल तो 23 मार्च था, वैसे उस दिन था क्या, बताइए ज़रा। आगे अगर नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो ओके ये सारी बातें आप लोगों की गपशप थी। आप समय दो, कोई भी समय हो बेस्ट हम बना देंगे, बेहतर से बेहतर समय कभी खराब ना होता, जिंदगी का हर पल मेरा ताबड़तोड़ होता। बिल्कुल कुमार भाई, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और आप मोटिवेट करने में बहुत ही अच्छे, क्योंकि आपकी बातों से क्लियर पता चलता है, आपने जो अभी लिखे जो जितने भी शब्द उसे आपका का पता चलता है कि आप कितने एनर्जेटिक प्राणी हैं। फिलहाल बढ़ते हैं उस डिमांड की ओर जो हमारे पास में नेक्स्ट है, और ये नेक्स्ट डिमांड हमारे अमित जी की है, और ये अमित जी का सॉन्ग हम डेडिकेट करते हैं अपने कुमार साहब को और अपने सभी चैटबॉक्स वासियों को जिन्होंने हमें जवाब दिया, जैसे कि हमारे नागेश्वर ठाकर जी, नेहा जी, और हमारी अनोखी जी, बाहुबली जी, ताबिश खान जी, और बाकी सभी लिसनर्स भाई। क्योंकि बारिश हो और आप लोगों को बारिश ना पसंद हो और हमें आप लोग का जवाब ना पसंद हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम अभी बताते हैं इस गाने के बाद कि हमारा जवाब क्या है, कि हमारा सबसे सबसे सबसे ज्यादा शानदार दिन आज तक का कौन सा था। एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

हाँ जी, और अमित जी की डिमांड के बाद अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि है हमारे कमल नैन जी की। लेकिन उससे पहले हम बताएंगे अपनी उस दिन का राज जब हम बेहद खुश होते हैं। वैसे तो मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ऊपर वाले की दया से मुझे ज़्यादा की कभी इच्छा होती ही नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सबसे प्रायोरिटी पे रखती हूँ रिश्तों को, और रिश्तों मतलब मेरे लिए पैसे की अगर बात करें, मैं दुनिया देखती हूँ, लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ मिलता है, लेकिन एक बात आती है, हम बहुत बड़े बड़े लोगों की भी बात करें तो वो भी एक टाइम पे कमाने के बाद में सुकून ढूंढते हैं और रिश्ता ढूंढते हैं जिस पर वो विश्वास कर पाए। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास में जितने भी रिश्ते हैं बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय हैं। और एक बात और, मैं कभी किसी पे टोटली विश्वास करती नहीं, 20-30% हमेशा छोड़ने के लिए रखती हूँ। मैं, मेरा मानना है कि लाइफ में गैप मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सामने वाले को भी सुकून रहे और आपको भी। जब आप किसी को भी छोड़ें किसी भी कारण से, ये नहीं कि वो उसने धोखा दिया एक ऐसा कोई कारण है, किसी भी कारण से मतलब बिछड़ना ही पड़े, तो ना आपको तकलीफ हो ना सामने वाले को तकलीफ हो। क्योंकि अगर आप चद्दर से रेशे निकालते हैं तो आप देखेंगे उसके जो एक एक महीन महीन डोर होते हैं वो इस तरह से टूटते कि उसके एक एक छोटे छोटे कण भी टूट जाते हैं। तो ऐसे नहीं टूटना चाहिए। अगर एक चद्दर फट भी रहा है तो उसको हम रीयूज में ले सकें। तो ऐसा रिश्ता भी होना चाहिए कि अगर हम किसी के से भी होना है कभी, तो अगर हम कभी भी मिलें तो मुस्कुरा के मिलें और हंस खेल के मिलें। तो मेरे लिए भाई प्रायोरिटी पे मेरे रिश्ते होते हैं, और जिस दिन मैं अपने रिश्तों के साथ में हंस खेल के बहुत ही प्यार से जो भी दिन बिता लेती हूँ वही मेरे लिए सबसे अच्छा दिन हो जाता है। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपने पापा के साथ में रात में 2-3 घंटे लगातार हंसी थी, वो मेरी जिंदगी का सबसे शानदार दिन था। उसके बाद ना वो दिन आया और ना वो पल आया, लेकिन वो मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कम नहीं था। और आप सभी का प्यार और आप सभी के साथ भी जो पल बीतता है वो भी मेरे लिए शानदार होता है। और शायद इसीलिए मैं बेकरार भी होती हूँ कि कैसा भी हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, मैं दौड़ते कुत्ते आ ही जाती हूँ। फिलहाल ये गाना कमल नैन जी की डिमांड पे आप सभी के लिए आया है।

क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारा सा डिमांड है। और कहिए कि हमने इनकी लिंक को खोल के चेक कर लिया था और उसके बाद में मिला लिया था जो इन्होंने कॉल करके सॉन्ग बताया था, वरना दोनों गाने तो एकदम से अलग अलग थे, लेकिन ये गाना काफी ज्यादा बेहतरीन है। कमल जी, आपकी चॉइस, उम्दा, मजा आया। हाँ हाँ,

हम नहीं मानेंगे प्रमुख जी, आप डरा गए, सीधी सी बात है। और ओके थैंक यू सो मच इरशाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाना बहुत बढ़िया, वैसे मैं चाहती कि मुझसे भी कोई ये सवाल करता काश, लेकिन हमारे पिताजी को उनका दामाद नहीं मिल रहा है, हमको हमारा दूल्हा नहीं मिल रहा है, घर वालों को उनका रिश्तेदार और दामाद नहीं मिल रहा है। ओ माय गॉड, इतनी सारी टेंशन है, और हमारे भाइयों को क्या ही बोले। एंजॉय करिए।

सोच के थक जाएंगे लोग, लेकिन मैं हाँ नहीं करूंगी, मैंने भी सोच लिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हम तक आई हुई है सुरेंद्र यादव जी की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया कमल नयन जी, बहुत प्यारा सा गाना था। और इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेकर के अपने प्यारे पंडित जी की।

बहुत ही शानदार नगमा, और इसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं एक और गाना मेरे जहन में चल रहा था, लेकिन ये सुन के भाई मन को शांति मिली। ऐसा मौसम हो, ऐसे नगमे हो, तो फिर क्या ही कहना। इसके बाद चलेंगे पंडित जी यानी हमारे बाहुबली जी की डिमांड की ओर, और फिर आएंगे प्रमोद कुमार जी की डिमांड के साथ में नेक्स्ट डिमांड। उसके बाद होगी हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की देवी प्रसाद जी। मैंने आपको कितनी दफा कहा, आप सैड सॉन्ग की डिमांड नहीं कर सकते हैं, नो मीन्स नो। हाँ जी, और जिस दिन आप अच्छे गाने की डिमांड करेंगे मैं जरूर बजाऊंगी। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए।

0: लेकिन भाई हमारे प्यारे लिसनर हैं जो सवाल बहुत करते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा सवाली आदमी है हमारे नागेश्वर ढाकर जी। आते कभी कभार है, लेकिन पूरे महीने का राशन जैसे होता है ना लाइन में खड़े होकर इंसान लेता है, वैसे ये राशन की वजह सवाल पे सवाल ठोकते हैं। और इन्होंने कहा है कि पूछा है कभी ऐसा हो कि जिस दिन शादी हो उसी दिन अगर एग्जाम पड़ जाए तो बंदा क्या करेगा, क्या करेगा भाई साहब। बहुत ही सीरियस बात है, अगर आप हिंदू हैं तो जाहिर सी बात है रात में फेरे होते हैं तो रात के टाइम पे तो कोई एग्जाम होता नहीं है। और अगर आप मतलब इस्लामिक धर्म से ताल्लुकात रखते हैं तो बीच में भाई हॉल्ट होता है तो उस टाइम पे जाके आप निकाह कबूल करवा सकते हैं, बस 3 बार कबूली तो करना होता है, उसके बाद में शादी तय हो जाती है, मतलब पक्की हो जाती है। बाकी आप समझदार हैं, आप अपना दिमाग थोड़ा सा और दौड़ा लीजिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं पंडित जी की डिमांड की ओर। और क्या बात है भाई, आज थोड़ी सी रौबदारी वाला मोटिवेशनल एटीट्यूड रैप आया हुआ है, वो भी यो यो हनी सिंह वाला। चलिए सुनते हैं, देखते हैं आज ये क्या मोटिवेशन भरना चाहते हैं हम सभी के रगों में, और एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।
1: आज उन्हीं की आंखों में मेरा नाम जलता है, मैं किसी का डुप्लीकेट नहीं, मैं अपनी कहानी का असली चैप्टर हूं।

0: मैं रुकने वाला नहीं, मैं झुकने वाला नहीं। आंधियां चाहे जितनी तेज चल जाए, मैं बुझने वाला नहीं।
1: क्या बात है भाई, बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग था। और बिल्कुल सही बात है, खुद का रफ्तार, खुद का हथियार और खुद के लिए ईमानदार जो है ना भाई, वो जाहिर सी बात है आगे बढ़ ही जाएगा। और जो आपको पैर पकड़ के आपके खींचने वाला, वो कभी आपके है ही नहीं, ये बेशक सच है। कभी भी इमोशनल होके फैसले ना लीजिएगा लाइफ में। हो सकता है कि उसने आपके लिए बहुत कुछ किया हो, लेकिन उसके पीछे वो क्या चाहता था वो आप नहीं समझ पाए हो। और जब वक्त आपको समझा रहा हो, तो तुरंत उस इंसान को, उस चीज़ को, या उस ऐसी चीज को जरूर छोड़िए जो आपके आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करती हो। फिलहाल बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग था, थैंक यू सो मच पंडित जी। और बाहुबली जी की इस डिमांड के बाद में अब हम बढ़ते हैं आज के चैट बॉक्स की ओर, यानी मतलब आप सभी के पैगामात की ओर। मुस्तफा जी सऊदी अरेबिया से, बाहुबली यानी कि हमारे पंडित साहब हैं, और धर्मेंद्र मोहन जी हैं आवास विकास कॉलोनी गोंडा से। इसके अलावा अनोखी शर्मा जी हमारे बीच में है, नागेश्वर ढाकर जी रतलाम की गलियों से, ताबिश खान जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और कमल नयन जी भी हैं, थैंक यू सो मच आप सभी का। सुरेंद्र यादव जी हैं गौरा चौकी से, सोनिया तिवारी जी कहां से हमें नहीं पता है, लेकिन है फिलहाल हमें दिख रही चैट बॉक्स में, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सोनिया तिवारी जी। और इसके बाद में सविता दुबे जी हैं हरकापुर से, और एड्स कुमार साहब हैं एमपी रीवा से। इसके अलावा दर्शन अंसारी जी हैं सीतापुर से, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वाला मैसेज। और इसके बाद में दीपक जी हैं हथियागढ़ से, काफी दिनों बाद नजर आए, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रमुख कुमार जी हैं लुधियाना से, और इस सॉन्ग के बाद यानी पंडित जी के सॉन्ग के बाद प्रमुख जी आप ही के सॉन्ग की बारी है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की ओर। नेक्स्ट मैसेज पे हमारे बीच में जो है वो है कौन, देख लेते हैं। तो नेक्स्ट मैसेज में हमारे बीच में आप सभी के हार्ट इमोजीज हैं, और उसके बाद में चलिए हम ढूंढ के बताते रहेंगे बीच बीच में कि कौन कौन, किस किस ने और हाजिरी लगाई, क्योंकि वक्त की कमी के कारण अब हम बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट सॉन्ग की ओर। और सारे मैसेज तो हम पढ़ नहीं सकते, वो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो फिलहाल ये गाने एंजॉय करिए हमारे प्रमुख कुमार जी की डिमांड पे। गाना बहुत ही खूबसूरत है, 90s हिट्स में से एक, मूवी भी उतनी ही प्यारी है, आओ प्यार करें, 1994 से गाना। ओहो हो क्या बात है, किसी को भी आप डेडिकेट कर सकते हैं, मुस्कुराहट आपके सामने होगी उसके फेस की।

है राजू टेलर जी, इरशाद जी हैं हमारे बीच में और फरहीन खान जी हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और जो ये नेक्स्ट डिमांड हमारे तक आया हुआ है वो है किसका, ये आपको बता देते हैं। तो नेक्स्ट डिमांड हमारे पास में जो आई हुई है वो है हमारे प्यारे धर्मेंद्र मोहन भारती जी की ओर से। आइए सुनते हैं कि इन्हें क्या सुनना है।

हैं और इन सभी के बीच में हमारे कुछ और प्यारे लिसनर्स हमारे साथ में मौजूद हैं, जैसे कि हमारे प्यारे प्यारे हैं, प्यारी हैं, मैं सचने में नहीं जानती, आई एम सो सॉरी, आप जो भी हैं महोदया महोदया ही हैं, फरीन खान जी हैं, और इसके बाद में आसिफ खान जी मुंबई से बहुत ही डिसेंटली एक ही मैसेज ये हमको ड्रॉप करते हैं और खाली एक प्यारा सा मैसेज, गुड आफ्टरनून, आपको भी गुड आफ्टरनून आसिफ खान जी। और इसके बाद में हमारे बीच में हैं जिनका नाम है धर्मेश त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ।

चलिए और इसके बाद अब हम बढ़ते हैं धर्मेंद्र जी के सॉन्ग के बाद में रमेश जी की डिमांड की ओर, जो हमें सुनते हैं महाराष्ट्र से। बड़े दिनों बाद चमत्कार मूवी याद आ रही भाई, बचपन में ये मूवी हमको लगता है सभी को पसंद रही होगी, क्योंकि जब चमत्कार की बात आती है तो हम लोग को मतलब एक इमेजिनरी सा वर्ल्ड फील होता है, और साथ में सच में हम भी इमेजिन करते लगते हैं हमारे पास में कोई ऐसा दोस्त होता है जिससे हम सब कुछ मांग पाते। फिलहाल ये गाना बहुत ही सुंदर है।

प्यार होगा तो बातें होंगी, बातें होंगी तो फिर भाई बहुत कुछ होगा। और अभी चलते हैं उस गाने की ओर जो कि बेकरार है बजने के लिए, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है रीना शर्मा जी की ओर से रुड़की उत्तराखंड से। बड़े दिनों बाद बारिश के मौसम का ये गाना, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से क्या गाना चुना है आपने, थैंक यू सो मच। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के हम निशा जी की, चांद बाबू जी फिर आप होंगे और फिर हमारे सबलू जी होंगे। उसके बाद में आज की देखते हैं लास्ट डिमांड हो पाती है अगर, तो इरशाद जी हथियागढ़ से आपकी होगी।

वैसे बोलते हैं लड़कियों की आंखें बहुत कातिलाना होती है, कभी हिरनी जैसी होती है, कभी सागर जैसी होती है, और कभी अगर झुकी होती है ना तो भी इंसान लुट ही जाता। कुल मिला के आगे वाले की सामने वाले की लुटिया लुटनी ही होती है, फिर इतने सादे उपमा और उपाधियां क्यों ही दी जाती है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, ये डिमांड हमारी निशा जी की ओर से।

जी, और आज जिन जिन की डिमांड रह जाएगी, कोशिश तो मैं करूंगी कि दो डिमांड और ले लूं, और अगर जिन जिन की डिमांड छूटेगी उनसे मैं माफी चाहूंगी। कल मैं आप लोग को प्रायोरिटी दूंगी, और वो होंगे हमारे अल्फिया जी, राजू जी, राजू सलमानी जी आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से, शिवा पटेल जी, इसके बाद में राजू जी हथियागढ़ से, और सोनम मौर्य जी आप। और इसके अलावा अगर आज किसी की और डिमांड रह जाए, यानी कि हमारे सबलू जी या फिर हमारे इरशाद जी के साथ भी अगर ऐसा हो जाए, तो मुझे माफ करिए क्योंकि वक्त की वाकई कमी है, मैं क्या ही कर लूँ, मैं मजबूर हूँ। आई एम सो सॉरी।

भाई अब जाने का वक्त हो गया है, तो अब इजाजत दीजिए। लास्ट सॉन्ग मैं पहुंचाती हूँ हथियागढ़ से, और जिन जिनकी डिमांड है कल उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, बेशक आइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ खान जी, मैंने आपका मैसेज भी पढ़ लिया, आप सभी का बहुत बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया। फिलहाल बने रहिए रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन के साथ में। ख्याल रखिएगा, पानी बहुत ज्यादा है, कीचड़ बहुत ज्यादा है, तो संभल के चलेगा, स्पीड को थोड़ा सा धीमा रखिएगा ताकि आराम से घर पहुंचिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर।

You are listening. Bollywood Podcast. With Priyanshu Nayar.

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आज स्टूडियो में, लेकिन आज खास बात यह है कि हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हाँ जी, कौन है हम जरूर बताते हैं, थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज की जो बात होगी वो थोड़ा सा लंबी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी जो समस्याओं से, बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, उसके विषय पर भी हम बात करेंगे। हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है, डॉक्टर साहब है, कौन है, कहाँ से हैं, हम ये सारी जानकारी आपको देने वाला है। सो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव सर, डिवाइन हार्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोमतीनगर लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर और वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियक सर्जन है। वेलकम सर।
2: थैंक यू अदनान
1: सर। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि अभी हमारा FM को स्टार्ट हुए कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं, और गोंडा वालों के लिए आज जिस पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, बहुत कुछ उनको मिलने वाला है। तो एक बार फिर से सर आपका थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक आए, और हमारे गोंडा वासियों के लिए आज बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, साथ में आज आपके बारे में जो लोग जानना चाह रहे थे वो भी जानेंगे, और हम भी जानेंगे, हमको भी मन था ही आपके बारे में जानने का।
2: तो गोंडा वासियों को मेरा नमस्कार। वैसे तो मैं गोंडा का ही वासी हूँ, तो अदनान थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी हियर। और नारी ज्ञान स्थली से तो मेरा लगाव कई सालों का है, यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर आरती, उनके हस्बैंड डॉक्टर कर्नल विकास मेरे कोलीग हैं।
1: वाओ,
2: तो अच्छा लगा यहाँ पर आके, एंड इट इज़ गुड टू नो कि ये पहला FM स्टेशन है गोंडा का।
1: जी बिल्कुल सर, ये गोंडा का भी पहला है और अवध मंडल में भी पहला ही आया है, देवीपाटन मंडल का।
2: दैट्स ग्रेट।
1: और आप सभी लोगों की विशेष चाहिए, आप सभी लोगों का साथ चाहिए सर,
2: वो हमेशा रहेगा।
1: थैंक यू सो मच सर। ये चीज़ हम सर जानना चाह रहे थे कि आज जब हम आपको इनवाइट करने के लिए गए थे, तो आप ऑलरेडी गोंडा में थे और किसी काम में मुब्तला थे, तो सर वो क्या एक्टिविटी चल रही थी जिसमें आप इन्वॉल्व थे वहाँ पे?
2: आज गोंडा में हम लोगों ने एक हेल्थ चेकअप कैंप, स्पेशली हार्ट के लिए चेकअप कैंप रखा हुआ था, डॉक्टर आरिफ के यहाँ ये कैंप लगा हुआ था। निःशुल्क कैंप हम लोग गोंडा में करते रहते हैं, और ये उसका एक पार्ट था डिवाइन की तरफ से कि हम लोग मुफ्त में हृदय रोग के लिए, बहुत सारे रोगी हैं हृदय रोग के, और उनको फ्री में अगर चेकअप मिल जाता है तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है आगे का इलाज करना।
1: करेक्ट सर। तो क्या सर ये लोकल डॉक्टर्स आपको यहाँ से मतलब इनवाइट करते हैं, या आपकी कोई संस्था है जिसके थ्रू आप ये काम करते हैं?
2: नहीं, डिवाइन पिछले कई सालों से ये काम करता आ रहा है, और गोंडा में हम लोग ये काम करीब पिछले 9 साल से ये काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारी संस्थाएं हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो लोग जब भी हमको इनवाइट करते हैं और हमारे पास डेफिनेटली टाइम होता है तो हम लोग ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये भी एक काम है जो कि करना है। हम लोग ये सोचते हैं कि खाली हार्ट की सर्जरी या हार्ट में स्टेंट लगाना ही काम नहीं है, लोगों को अवेयर करना, उनकी फ्री में चेकअप करना, ये भी हम लोग का एक काम है। सोसाइटी को हेल्प करना, ये हम लोग का काम है।
1: सर बिल्कुल, सोसाइटी को हेल्प करना एक डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है, लेकिन बखूबी आप उसको निभा रहे हैं, और जहाँ से आपकी पैदाइश हुई, जो आपकी माटी है जिसे बोलते हैं, उसके लिए आप स्पेशली यहाँ सर्व कर रहे हैं। इसके साथ ही सर एक आपकी संस्था का नाम सुना है, जैनस इनिशिएटिव सर, उसके बारे में आप बताइए।
2: जैनस इनिशिएटिव मेरे ख्याल से गोंडा में काफ़ी लोग जानते हैं। जैनस इनिशिएटिव मैंने 2011 में जब मैं केरला में था तो उसकी शुरुआत की थी। मैं एक्चुअली लखनऊ 2013 में आने से पहले करीब 14 साल तमिलनाडु और केरला में रहा हूँ, तो वहीं पे शुरुआत हुई 2011 में जैनस इनिशिएटिव्स की, और इसका मेन मकसद था हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना। तो जब 2013 में मैं यहाँ पे लखनऊ में आया, और मैंने लोगों से बताया कि हम लोग यहाँ पे कुछ काम करना चाहते हैं, तो कई लोगों ने थोड़ा डिस्करेज किया कि यूपी में बहुत निगेटिविटी है, आप कुछ काम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन सब के लिए, हम लोग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनके लिए एक जवाब है कि इस समय हम लोग करीब 23 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं 12,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से 3 साल के लिए, और 7 बच्चे स्कॉलरशिप लेके निकल चुके हैं और 7-8 बच्चे वेटिंग में हैं जो 8 जनवरी को हम लोगों के साथ इंक्लूड होंगे। तो ये हमारी एक पहली एक्टिविटी है। दूसरा हम लोग करते हैं बच्चों के लिए स्कूल हेल्थ चेकअप कैंप्स हमारे चलते हैं। गोंडा में 30 स्कूलों में हम लोग के स्कूल हेल्थ कैंप चल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग के बच्चों का हेल्थ चेकअप करते हैं। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक ऐप है हम लोगों का, docsnear.me करके, उसमें डाली जाती है, जिससे पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे के हेल्थ के बारे में जान सकें। और ये हम लोगों का प्लान है कि हम इसको रेगुलरली करते रहेंगे, जिससे उनकी हेल्थ में क्या अपग्रेडेशन या डाउनग्रेड हो रहा है वो पता चलता रहेगा। और ये एक रिपोजिटरी, जिसको मेडिकल रिपोजिटरी जो बोलते हैं ना, डिजिटल एक फाइल बच्चे की तैयार हो जाएगी, हेल्थ फाइल, तो वो आप दुनिया के किसी कोने में वो ऐप के थ्रू ले जा सकते हैं। जैसे आपका ऐप है जो दुनिया के किसी कोने में हम सुन सकते हैं,
1: राइट सर,
2: उसी तरह से ये ऐप रहेगा कि दुनिया के किसी कोने में बच्चे की हेल्थ फाइल उनके पास मौजूद रहेगी। उसके साथ साथ बच्चों को हाइजीन किट बांटी जाती है, जिसमें साबुन होता है, टूथपेस्ट, टूथब्रश, जीबी, नेल कटर, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिससे बच्चे अपने हाइजीन के बारे में थोड़ा अवेयर हों। ये भी कहा जाता है कि अगर बच्चे साबुन से हाथ धोएं टॉयलेट जाने के बाद और खाना खाने से पहले, तो 50% बीमारियों से बच सकते हैं। इंडिया में अभी भी डायरिया से 3 लाख डेथ्स होती हैं पर ईयर, और अगर 50% बचा लेते हैं तो 1.5 लाख बच्चों को हम बचा सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास है। पिछले 4 सालों में करीब हम लोगों ने 30,000 हाइजीन किट बांटी है पूरे देवीपाटन मंडल में बजा, और यूपी में भी कई लोगों ने बांटी। यहाँ तक कि हमारे पास रिक्वेस्ट अब तमिलनाडु से आती है, कर्नाटका से आती है कि ये हाइजीन किट हमारे पास भिजवा दीजिए। तो हमने आंध्रा भिजवाई है, कर्नाटका, तमिलनाडु, इवन देहरादून, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने, स्टेट्स में हम लोगों ने हाइजीन किट अपनी भिजवाई है। अब एक और काम है, आप कहेंगे कि आप बोलते ही जा रहे हैं, लेकिन
1: नहीं नहीं बिल्कुल बताइए सर, हम तो सुनने के लिए आज बैठे हैं, और हम क्या पूरा गुंडा आपको सुन रहा है, वर्ल्ड वाइड लोग जहाँ जा सकते हैं जी।
2: हम लोग एक और प्रोग्राम है जो अभी बच्चों को स्किल ट्रेनिंग के लिए, जिसको बोलते हैं एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने सृजन करके एक संस्था जो है, सृजन करके जैनस इनिशिएटिव का ही प्रोजेक्ट है
1: जी,
2: बहराइच में एक एरिया लिया था जिसको हमने बिल्डअप किया है। उसके लिए मुझे अपना बैंगलोर का फ्लैट बेचना पड़ा, बट डेफिनेटली इट इज़ वर्थ, कि इस समय करीब 100 के आसपास बच्चे वहाँ पे फ्री में कंप्यूटर्स हैं, इंग्लिश है, हिंदी, मैथ्स, थोड़ी कल्चरल एक्टिविटीज़, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें उनको वहाँ पे दी जा रही हैं, क्योंकि वी फील कि खाली पढ़ाई से काम नहीं होने वाला है।
1: करेक्ट,
2: जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको हर चीज़ के लिए तैयार होना होगा, तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। तो एक हम लोग ध्येय लेके चले हैं कि हाँ इसमें, और हेल्थ कैंप तो हम लोग रेगुलरली करते रहते हैं। हमारे साथ हमारे यहाँ पे सहयोगी पंकज सिन्हा और आशीष श्रीवास्तव हैं, ये लोग हमें बड़ा सहयोग करते हैं, डॉक्टर आलोक अग्रवाल यहाँ के जो डॉक्टर हैं, और बाकी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमेशा हम लोग के हेल्प करते हैं, अखिलेश गुप्ता, डॉक्टर आरिफ, सभी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा रहता है। गोंडा में एक हमारी बड़ी अच्छी टीम तैयार हो गई है
1: जी,
2: और बड़ा अच्छा सहयोग है सबसे, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग और अच्छा काम आगे करते हैं।
1: बिल्कुल करेंगे सर, मतलब जब नियत साफ होती है तो काम ज़रूर होता है। और अब तक की तो अब जो आपने बातें की उसमें बहुत सारे मेरे सवाल है, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सुनते रहे ज्ञान स्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
0: क्या आप आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: तो ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस्तकबाल करता है आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, और मौजूद हमारे सामने हमारे अपने डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव सर। तो सर, आपसे कुछ, आपने जो बातें बताई थी ऐप के बारे में और आपकी टीम के बारे में, उसके रिगार्डिंग मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन सर ये है कि ऐप जो आप बता रहे थे उसमें बच्चों का क्या हेल्थ स्टेटस अपडेट करते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, ये हम लोग का प्लान था। ये हेल्थ ऐप बना है दो चीज़ों के लिए, एक तो टेली कंसल्टेशंस, वीडियो कंसल्टेशंस के लिए, और दूसरा बच्चों की या जो भी पेशेंट्स हैं उनकी एक हेल्थ रिपोजिटरी जिसको बोलते हैं, एक हेल्थ फाइल जो तैयार हो जाए। जिससे क्या होता है कि आजकल बहुत सारे पेपर्स होते हैं और अगर आप देखें तो लोअर मिडिल क्लास या इन लोग के संभाल नहीं पाते हैं, कुछ पेपर्स कहीं मिस हो जाते हैं, किसी पे तेल लगा हुआ, कोई फट गया, तो इनके पास रिपोजिटरी नहीं तैयार होती। और जो जिन बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल के, उनके पेरेंट्स के पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं।
1: करेक्ट।
2: तो हम ये चाहते हैं कि उनकी एक हेल्थ फाइल जैसे तैयार होती रहे, हम उनके बारे में पहले तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करें। जैसे बहराइच में हम लोग कैंप कर रहे थे तो एक बच्चा था, उससे हम लोग कहते हैं एक आँख बंद करके देखने के लिए, तो पढ़ के बता दे रहा था, जब दूसरी आँख बंद करते थे वो हाथ हटा देता था। मेरे ख्याल से 5 साल का बच्चा था तो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन हर बार उसको हाथ को हटा देता था।
1: ओके।
2: तो बाद में समझ में आया कि वो एक आंख से तो पूरा देख पा रहा है, दूसरी आंख से नहीं देख पा रहा है।
1: नहीं देख पा रहा है।
2: लेकिन ये जब तक आप टेस्ट नहीं करते हैं तब तक आप किसी को बता नहीं सकते।
1: करेक्ट।
2: और ये जल्दी पकड़ में आ जाता है तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, नहीं पकड़ में आता है तो नहीं ठीक होती हैं। तो इसी तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे बता दें कि करीब 50% बच्चों के दांत खराब हैं।
1: जी जी बिल्कुल।
2: 15-20% बच्चों के कान बहते हैं।
1: जी।
2: 4-5% बच्चों की आंखें खराब हैं।
1: जी।
2: तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चों के, कई बच्चे अंडरवेट हैं।
1: जी, जी।
2: मैलनरिश्ड नहीं कहेंगे लेकिन अंडरवेट हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं, स्कूल में बता सकते हैं, पेरेंट्स को बता सकते हैं, जिससे वो चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। तो एक तो ऐप का ये काम है, दूसरा टेली कंसल्टेशन। कोविड टाइम में टेली कंसल्टेशंस बहुत बढ़ गए थे और हम लोगों ने सबको ये जैनस के थ्रू फ्री कंसल्टेशंस, करीब 3000 कंसल्टेशंस फ्री कराए थे।
1: ओके।
2: हाँ, और अभी फिर से कोविड बढ़ने वाला है तो हम लोगों का ये प्रयास है कि हम लोग जनरल भी कंसल्टेशन कराएं, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो सबको फ्री में भी कंसल्टेशंस हम लोगों की तरफ से कराए जाते हैं। तो ये एक docsdnr.me का एक वो प्रयास है कि किसी को अगर टेली कंसल्टेशन, गोंडा में आप बैठे हुए हैं, आप लखनऊ के डॉक्टर से बात करना चाहते हैं तो ये इस ऐप के थ्रू हम करा सकते हैं। जाने आने का टाइम बचता है, आपका पैसा बचता है, आपका वेटिंग टाइम बचता है, तो ये सारी चीज़ें इस ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, जो एक फिजिकल हम डॉक्टर के सामने जाके कर सकते हैं वो इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं, और बाकायदा डॉक्टर खुद वहाँ सामने प्रेजेंट होते हैं और सारी चीज़ों को वो देखते हैं, प्रोसेस में समझते हैं और फिर उनको कंसल्ट करके बताते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है। सर ये बहुत अच्छा ऐप है और आपने सही कहा कि जिस तरह केसेस वापस बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो कहीं ना कहीं ये ऐप वापस बहुत ज़्यादा हमारे काम आने वाला है।
2: श्योर। और होपफुली कि इंडिया में इतने केस ना बढ़े।
1: बिल्कुल, ये हम गोंडावासियों और जो भी लिसनर्स सुन रहे हैं उनको ये ध्यान देना है कि इससे पहले जिस तरह हमने कोरोना को हराया था सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, हाइजीन मेंटेन करके, उसी तरह आपको वापस करना है, क्योंकि ये मेहमान तो है लेकिन बुलाने वाला नहीं, अनचाहा मेहमान है।
2: बिल्कुल, हम लोगों ने जैनस की तरफ से एक बड़ा कैंपेन लॉन्च किया था पिछली बार, जिसको बोलते थे मास्क लगाओ कोरोना भगाओ।
1: ओके,
2: मास्क ऑन कोरोना गॉन। और हम लोगों ने करीब ऑल ओवर इंडिया करीब 5 लाख फ्री में मास्क बांटे थे।
1: वाओ।
2: तो इस बार भी मास्क हम लोगों के पास हैं, लोगों की उतनी इच्छा नहीं है मास्क पहनने की, बट मेरा रिक्वेस्ट सभी से ये रहेगा कि आप लोग प्लीज़ मास्क पहनें, भीड़ कम से कम लगाएं, कोशिश करें कि जो है क्राउडिंग ना करें, क्योंकि आप सब लोग, हम सब लोग झेल चुके हैं।
1: करेक्ट सर।
2: और ये बहुत ही खराब सिचुएशन थी, इवन डॉक्टर्स के लिए खराब था,
1: बहुत था,
2: कि कभी कभी हम लोग हेल्प नहीं कर पा रहे थे लोगों की।
1: करेक्ट।
2: तो वो सिचुएशन ना आने दी जाए, क्योंकि चाइना में इस समय आप लोग देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है वहाँ पे हॉस्पिटल्स टैकल नहीं कर पा
1: नहीं
2: रहे हैं,
1: मॉर्चुरीज
2: में शवों की लाइन लगी हुई है। तो प्लीज़ हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सावधान हो जाएं, और इस कोरोना को, जैसे अदनान ने कहा, इस कोरोना को हम लोगों को मिल के हराना है।
1: करेक्ट सर, क्योंकि सेकेंड वेव में इसने बहुत ही से फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, और किसी ना किसी तरह से हर फैमिली इम्पैक्ट हुई थी, चाहे वो डायरेक्ट वे में हो या किसी का कोई रिलेटिव या फ्रेंड में कोई ना कोई ऐसा गया था, वो बड़ा भयावह स्थिति थी। और पूरी तरह से मतलब ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि इस तरह से इस बार के हालात पैदा ना हो जिस तरह फिलहाल अभी चाइना फेस कर रहा है।
2: बिल्कुल, पिछली बार तो मतलब मैं कहेंगे कि सेकेंड वेव में डेफिनेटली इवन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की हालत बहुत अच्छी नहीं थी।
1: करेक्ट,
2: वी वर आल्सो फीलिंग हेल्पलेस, बट डेफिनेटली हम कहेंगे कि दिस इज़ अचीवमेंट फॉर इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह से इस चीज़ को टैकल किया, जिस तरह से हम सब लोगों ने मिल के इसको वैक्सीनेशन और अपनी जो भी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करके हम लोगों ने डेफिनेटली कोरोना को हराया, एंड वी फील दैट वी कैन डिफीट इट अगेन।
1: करेक्ट सर, तो इस बार भी हम वैसे ही हराने वाले हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हम कोशिश करने वाले हैं कि इस तरह के हालात पैदा ना हो। सर अभी आपने बताया था कि जैनस इनिशिएटिव जो आपकी संस्था है उसमें आप पूरी टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, तो सर टीम में अभी आपने लिया था पंकज सर का नाम और आशीष सर का नाम, सर आप लोग का साथ कब से रहा और क्या आप लोग मिलकर करते हैं, किस तरह की और भी कोई एक्टिविटीज़ होती है या सिर्फ इसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या रोल है?
2: पंकज सिन्हा से मेरा जो साथ है वो करीब 7-8 साल का साथ है
1: जी,
2: जब मैं यहाँ पे लौट के आया था, और ये था कि हाँ हम लोग को कुछ करना है, तो गुड़ा में पहला प्रोग्राम था और पंकज सिन्हा से हमारी मुलाकात हुई थी, एंड ये कि एक बड़े हम्बल से इंसान है, सारा काम कुछ भी काम, और ये इस तरह से हैं कि आप कुछ भी बोल दीजिए तो वो ये करा लेंगे वो काम।
1: बहुत अच्छी बात है,
2: और इसीलिए इनको डिवाइन में भी रखा गया है और हम लोग के साथ भी एसोसिएटेड हैं, कि गुना में, बहराइच में, बलरामपुर में, कुछ भी देवीपाटन मंडल में या इवन फैजाबाद वगैरह में कुछ भी काम होता है तो ये पंकज सिन्हा इस चीज़ को अंजाम देते हैं, मतलब हमारे थ्रू, इनके थ्रू, किसी के भी थ्रू। ही हैज़ ए वेरी गुड सोशल नेटवर्क।
1: ओके,
2: एक्चुअली ये स्वतंत्र भारत के रिपोर्टर भी हैं।
1: अच्छा, डॉक्टर साहब इसमें भी है।
2: तो ही इज़ नॉट ए डॉक्टर।
1: ओके,
2: ही इज़ नॉट ए डॉक्टर, और बट हम लोग के यहाँ के हॉस्पिटल के पीआरओ भी हैं, और हमारी तरफ से एक हमने कहा ना कि गोंडा में हर आदमी जैसे हमारा दोस्त है, हमारा रिलेटिव है, समझिए इसी तरह का है कि गोंडा में जो भी है वो हमारे साथ है, और पंकज सिन्हा ने तो डेफिनेटली एक टीम बिल्डिंग में बड़ी मदद की है, हर तरह से मदद की है, तो जो भी हमारा प्रोग्राम होता है इस एरिया में वो पंकज सिन्हा के थ्रू ही होता है,
1: उनके थ्रू होता है। ओके,
2: और आशीष से जो है ये पंकज सिन्हा ही लेके आए थे इनको मेरे पास।
1: अच्छा,
2: ये भी गोंडा को बिलोंग करते हैं।
1: अरे
2: नवाबगंज पैदाइश है इनकी,
1: क्या बात है,
2: घर अभी इनका वहीं पर है, तो एक गोंडा की टीम हमारी तैयार है, और ये टेक्निकल उसके जो है मास्टर हैं, ये लेनोवो में करीब 10 साल काम कर चुके हैं, तो वह हार्डवेयर उसके रिपेयर करने के, तो हमारा जो ऐप का काम होता है, जो फीडिंग का काम होता है, ये सारा काम इनके थ्रू होता है, आशीष के थ्रू होता है,
1: आशीष सर के।
2: तो हम ये कहते हैं कि हमारे दो हाथ हैं, दाएं हाथ बाएं हाथ, आशीष और पंकज।
1: बाकी सर आपने जिस तरह बताया कि दोनों लोगों का आपका साथ रहता है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। गोंडा से ही आप तीन लोग हैं और जिस तरह उनके आपने बिहेवियर की बात की कि इतने हम्बल है, तो जाहिर सी बात है आपको भी काम करने में बहुत मजा आता होगा।
2: डेफिनेटली।
1: और कहीं ना कहीं एक साथ तो चाहिए होता है। मुझे लगता है कोई भी अगर बड़ा काम हम करते हैं तो हमको एक टीम बिल्डिंग की जरूरत होती ही होती है।
2: sure.
1: तो उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है पंकज सर और आशीष सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। तो अभी भी बहुत सारी जानकारियां लेना है डॉक्टर साहब से, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: सो वेलकम बैक इन योर शो, आपका अपने चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव सर, और अभी हमें जानना है उनके बारे में, उनकी कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं। लेकिन सर उससे पहले एक सवाल ये है कि आपने बताया था जब आप केरला से यहाँ आए थे जेनेस इनिशिएटिव को लेकर, तो आपको थोड़ा सा डिस्करेज किया गया था कि यहाँ यूपी है, ऐसा सिनेरियो नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं चल पाएंगी, तो उसके बाद भी सर आपने लिया इनिशिएटिव। तो आपने जो इनिशिएटिव सर लिया, आज आप काम कर रहे हैं, तो अभी क्या आपको लगता है कि आपने सही किया या आपको शायद वहीं कंटिन्यू करना चाहिए था, यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्या व्यू आपका, मैं आपसे जानना चाहूँगा।
2: मेरे ख्याल से मैं जो भी काम करता हूँ उस पर कभी रिपेंट नहीं करता हूँ, पश्चाताप नहीं करता हूँ।
1: ओके।
2: और मैंने जो निर्णय लिया वो सोच समझ के लिया और यहाँ पर आया, और मैं कहूँगा मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने किसी की बात नहीं सुनी और आगे बढ़ते गए। जब आप, जैसे अभी आपने कहा था कि नियत अगर अच्छी होती है तो जुड़ते जाते हैं।
1: करेक्ट सर, करेक्ट।
2: कारवां आपका बनता जाता है और यही नियत लोग देखना चाहते हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर रंजन शर्मा जी हैं, प्रोफेसर साहब, उन्होंने भी ये कहा था, डॉक्टर साहब हमने कई लोगों को देखा है लेकिन लोग आते हैं काम करके, दो चार दिन किया उसके बाद गायब हो जाते हैं। आपका काम कॉन्टिन्यूस है। प्रॉबेबली ट्रेनिंग जिसके साथ मैं रहा केरला में, चेन्नई में, डॉक्टर के एम चेरियन एक लीजेंड हैं कार्डियक सर्जरी के
1: जी,
2: जिन्होंने कार्डियक सर्जरी में हर चीज़ की ऑलमोस्ट शुरुआत की।
1: ओके।
2: हार्ट लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, एक दिन में दो दो हार्ट ट्रांसप्लांट, री ट्रांसप्लांट, मतलब एक का ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद दोबारा उसका हार्ट ट्रांसप्लांट, और वो लड़की अभी भी जिंदा है और पैराग्लाइडिंग करती है हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद। तो उस तरह की पर्सनालिटी के साथ मेरी ग्रूमिंग हुई, वो मेरे मेंटर रहे। तो उनके साथ जब आप रहते हैं तो डिफीट या निगेटिव एटीट्यूड नहीं आता है,
1: नहीं आता है।
2: 60 ईयर्स की एज में उन्होंने जो हॉस्पिटल बनाया था उसी के मैनेजमेंट ने, उनके अपने पैसे का हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने उनको निकाल दिया।
1: ओके।
2: एंड नोबडी वाज रेडी टू गिव हिम लोन कि दूसरा हॉस्पिटल शुरू करें।
1: Okay.
2: उन्होंने ना कि सिर्फ दूसरा हॉस्पिटल शुरू किया, 12 कार्डियक सर्जन के साथ वो हॉस्पिटल शुरू हुआ, सक्सेसफुली रन हुआ। 3 साल के अंदर बैंक वाले लोन देने के लिए खड़े रहते थे दरवाजे पे, सर लोन ले लीजिए।
1: करेक्ट।
2: एट 60 इयर्स ऑफ एज उन्होंने उससे बड़ा सेटअप बनाया, उन्होंने केरला में सेटअप स्टार्ट किया। उन्होंने मेरे ख्याल से 350 एकड़ जमीन ली थी, उसमें सेटअप की तैयारी, बायोसाइंस पार्क। तो दैट वाज हिज विजन, मतलब उस तरह के वो सोच के चलते हैं। और अभी भी ही इज 80 ईयर्स ओल्ड, लेकिन अभी भी पॉजिटिविटी में कोई कमी नहीं है। तो मैं उन्हीं के साथ रहा, उन्हीं के साथ ट्रेन हुआ, एंड ही इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर।
1: ओके।
2: तो प्रोबेबली वो चीज़ें भी आई कि हाँ, चीज़ों को जब आप करते हैं तो कैसे करना है और कैसे अच्छे से करना है।
1: करेक्ट।
2: और जब यहाँ पे आए तो मुझे कोई एक्चुअली नेगेटिव पर्सन नहीं मिला, टू बी वेरी फ्रैंक।
1: ओके।
2: आज तक मुझे कोई नेगेटिव पर्सन नहीं मिला कि हाँ जो हमसे ये कहे कि डॉक्टर पंकज, उस एक इंसिडेंट के बाद किसी ने हमको नहीं कहा कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। लोग जरूर, मेरा छोटा भाई जरूर कहता है, पंकज भैया आप इतना सारा वो करते हो तो आप अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के नहीं रखे हुए हो।
1: ओके
2: तो हमने कहा यही मेरा एक इन्वेस्टमेंट है।
1: वाओ क्या बात,
2: दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन द सोसाइटी।
1: करेक्ट,
2: जो कि हम लोग भूल गए हैं। एक्चुअली हम लोग रिलेशंस में और सोसाइटी में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने आप पे इन्वेस्ट करने का ज़्यादा सोचते हैं।
1: करेक्ट,
2: पैसा बचा के रखो। पहले कहाँ लोग जो है अपना बीमा कराते थे, कहाँ पे लोग अपना वो पैसा इकट्ठा करते थे, पूरी फैमिली एक रहती थी, किसी को प्रॉब्लम पड़ी तो बाकी फैमिली हेल्प करती थी।
1: ऑब्वियसली
2: सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली, इसी पे किस्सा याद आया कि
1: जी
2: केरला में एक मछुआरों की एक कम्युनिटी है।
1: ओके,
2: तो वहाँ पे भी उनका बड़ा अच्छा सा वो एक कहना चाहिए कि एक कस्टम है कि आपके यहाँ कोई गृह प्रवेश जैसे हुआ या कुछ भी प्रोग्राम हुआ तो लोग जाके, जैसे हम लोग क्या भी होता है ना, कुछ देते हैं, आप पैसा देते हैं, नेक देते
1: जी,
2: हैं
1: जी, जी, जी।
2: तो वो लोग उसको नोट करते हैं।
1: ओके,
2: तो जैसे आपके यहाँ आया तो उसने नोट किया आपने 10 रुपये दिए।
1: ओके,
2: तो नेक्स्ट टाइम आपके यहाँ जो प्रोग्राम होगा उसमें वो 11 ही देगा, 9 नहीं देगा,
1: बढ़ा के देगा। ओके,
2: तो सबको मालूम है कि हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ, मान लीजिए मकान बनाना है, गृह प्रवेश करना है, तो उसने अगर सबको दे रखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 10 साल में, 15 साल में, तो वो लोग उसको रिटर्न कर देते हैं।
1: क्या बात है,
2: तो एक साथ जब कम्युनिटी इतना पैसा देती है तो उनको किसी और से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो छोटा छोटा पैसा ही अपने आप एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। दिस इज़ वॉट इज़ कम्युनिटी अबाउट।
1: क्या बात है,
2: और यही कम्युनिटी रेडियो का भी काम होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: एक कम्युनिटी क्रिएट करना है, एक लोगों के बीच में हारमोनी क्रिएट करना है कि लोग एक कम्युनिटी की तरह काम करें।
1: करेक्ट,
2: गोंडा में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, बट लोगों की नज़र में नहीं आते हैं। उनको लेके आना, साथ में लेके आना, हमारे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारा अच्छा काम करते हैं। कुछ लोग बैकग्राउंड में रहते हैं, कुछ लोग सामने आ जाते हैं। तो आई फील कि आई एम लकी, आई एम फॉर्चुनेट कि हमारे साथ इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं कि हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। बस यही कहूँगा
1: सर, लकी तो हम भी कम नहीं हैं कि आप इसी सरजमी से हैं और इसी सरजमी के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं और आपको जिस तरह लोगों का साथ मिला वो आपके लिए तो इंस्पिरेशन थे ही थे। आज आप जो बोल रहे हैं ना उससे ना जाने कितने लोग इंस्पायर होंगे, इवन मैं खुद हो रहा हूँ। और जो कल्चर आपने बताया, ये केरला का एक जो किस्सा अभी आपने शेयर किया है, ये सच में मुझे नहीं पता था। और ये सिर्फ सोच के एक अनुभव मैं कर रहा हूँ कि किस तरह से लोगों की अगर कम्युनिटी मिल जाती है तो देखिए कितनी बड़ी चीज़ कितनी इजी वे में हो जाती है।
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही।
1: और शायद ये हर जगह इम्प्लीमेंट हो सकता है अगर हम चाहेंगे तो।
2: ये तो कम्युनिटी का इंश्योरेंस है कि पहले फैमिली में होता था, आपकी ज्वाइंट फैमिली होती थी, किसी भाई को, किसी बहन को, किसी को भी प्रॉब्लम आती थी तो पूरा बाकी लोग सपोर्ट करते थे।
1: करेक्ट,
2: तो किसी को इंश्योरेंस लेने की जरूरत
1: नहीं
2: पड़ती
1: थी। और क्या,
2: आज हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं और इंश्योरेंस वाले हम लोग को डराते रहते हैं। अब बुढ़ापा आ जाएगा, अरे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी।
1: करेक्ट,
2: तो ये डरा के हमसे काम करा लेते हैं।
1: करेक्ट,
2: अगर हम लोग सब लोग एक साथ, अगर ज्वाइंट फैमिली होती है, सब लोग साथ में रहते हैं, कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आज आपके पास कम है तो कल दूसरे के पास कम होगा, आज आपने दिया कल वो दूसरा देगा, तो ऐसे ही लाइफ चलेगी।
1: मतलब बैलेंस ऐसे ही करना है।
2: ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, आप तो सोशल एनिमल हैं। अगर एनिमल्स में भी देख लें तो वो एक सोशल उसकी गैदरिंग की है। हाथियों को देख लीजिए,
1: बिल्कुल,
2: अगर एक भी बच्चा उनका छूट जाता है तो झुंड वहीं पर रुक जाता है, बच्चे को लेके फिर साथ में वापस जाते हैं चाहे जितना टाइम लग जाए।
1: बिल्कुल,
2: अगर एक हाथी की डेथ हो जाती है जिस जगह पे तो वहाँ पे वो अगर दफना दिया जाता है तो साल में एक बार जरूर हाथी उस जगह पे आता है।
1: सच में,
2: तो आई थिंक हम लोगों को उस चीज़ पे जाना चाहिए कि एक सोसाइटी का, एक कम्युनिटी का एक फीलिंग होना चाहिए, एंड आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी हम लोगों के लिए।
1: बिल्कुल, मुझे भी लगता है सर कि अगर इस तरह इस माइंडसेट से हम ड्राइव होते हैं और हमने छोटी छोटी चीज़ें भी इनिशिएटिव अपने घर से स्टार्ट किया, मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज आने वाला। आपने सही कहा कि आज एक इंसान के पास 3 से 4 खाते हैं, इंश्योरेंस है, उसकी कुछ FDs हैं, RDs लोग सबमिट करते हैं, लेकिन अगर ये हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि एक दूसरे को हेल्प करें, तो एक जो जीने का होता ना मजा सा रहता है
2: exactly.
1: कि जीवन में क्या है, खाली कमाने का मतलब नहीं होता, कमाता इसीलिए इंसान है कि लोगों से शेयर कर पाए
2: exactly.
1: कुछ फील कर पाए. तो वो फील कब आएगा, वो फील जब आएगा जब इस पैटर्न में हम आएंगे. सो सर ये मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने तो सोचा आज सिर्फ बीमारियों में बात होगी, आपने तो इंसानी बीमारियों में बात कर दी. मतलब रियली आपसे बात करके और इस तरह जो आपने शेयर किया ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है. और ये मुझे लगता है कि आज जितने भी हमारे लिसनर्स इस टाइम सुन रहे होंगे वो भी बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे और बहुत प्राउड कर रहे होंगे आप पे कि ऐसी शख्सियत हमारे यहाँ से. रियली कर रहा हूँ,
2: मुझे भी प्राउड है कि आई बिलोंग टू गोंडा, आई बिलोंग टू यूपी.
1: तो सर एक बार बोलिए ना, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 गोंडा शहर की धड़कन.
2: रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन.
1: बिल्कुल सर, तो ये
2: मैं तो दिल का डॉक्टर ही हूँ, मैं तो धड़कन से ही मैनेज करता हूँ. और मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि मैं तो दिल पे छुरियाँ चलाता हूँ रियली में. आप लोग तो इमोशनल उसमें करते हैं, मैं तो लिटरली चलाता हूँ.
1: लिटरली चलाते हैं, लेकिन आप जो चलाते हैं असल वो काट के बनाने के लिए चलाते हैं.
2: यस,
1: और ना जाने कितने लोग तो बस बातों से ही काट के चले जाते हैं. तो सच में बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके. और इसके साथ ही हमारे लिसनर्स और मैं खुद भी जानना चाहता हूँ आपकी थोड़ा सा निजी लाइफ के बारे में. मतलब आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, थोड़ा सा आप इस पे बताइए.
2: पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी लाइफ तो गोंडा से ही शुरुआत हुई. और आजकल जब सुनता हूँ लोगों को कि लोग अपने रिसोर्स की कमी के बारे में रोते हैं या कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं उस फैमिली को बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पे मेरी पैदाइश या मेरा बचपन एक कच्चे घर में गुजरा.
1: okay.
2: यहाँ पे पानी पे बरसता था तो छत टपकती थी और माता जी इधर उधर लेके जो है बैठी रहती थी रात भर कि हाँ पानी ना गिरे. और हम छह भाई हैं.
1: okay.
2: और छहों भाई बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं. मेरे सबसे बड़े ब्रदर अभी नाबार्ड के CGM होकर रिटायर हुए, तो मतलब वी आर ऑल एट वेरी गुड पोस्ट. तो फादर की इनकम शुरुआत में बहुत ज़्यादा नहीं थी, बाद में भी छह लोगों को पालना पोसना इतना आसान नहीं था. रिजर्व बैंक में उनकी जॉब थी, लेकिन कभी पढ़ाई पे वो नहीं आया. मैं कहूँ कि अगर आप लगातार अच्छे से परफॉर्म करते रहते हैं तो आपको रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है.
1: नहीं होती कर.
2: मेरी MBBS की फीस साल भर की सिर्फ 256 रुपए थी.
1: ओके.
2: तो क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे, अब तो गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़ गई है, बट स्टिल आई फील कि अगर आप अच्छे से करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो रिसोर्सेज आपके रास्ते में नहीं आते. आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, और यू शुड बी वेरी फोकस्ड. आजकल सबसे ज़्यादा मैं जो फील करता हूँ यंगस्टर्स में जो लैक करता है वो फोकस. इफ़ दे आर फोकस्ड, बाकी एनर्जी लेवल तो उनका और एक्सपोजर हम लोग से बहुत ज़्यादा है.
1: जी जी जी.
2: प्रॉबेबली नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है. दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस.
1: करेक्ट.
2: हम लोगों की जनरेशन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है.
1: करेक्ट.
2: बट इफ़ दे आर फोकस्ड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अचीव वॉट एवर दे वॉन्ट. बी फोकस्ड, परसिस्टेंस, पैशन और परसिवरेंस, ये 3 P हैं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं.
1: क्या बात है, ये यानी PPP आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने वाली है. तो सर आप ये भी बता दें कि फोकस्ड, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है, फोकस नहीं हो पा रहा है, तो कुछ क्या तरीके हैं जिससे वो फोकस कर सकता है अपने करियर को लेके?
2: मेरे ख्याल से आजकल का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है सोशल मीडिया.
1: ओके.
2: जो मेरे को महसूस होता है, जो हम लोग देखते हैं, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी और साइकियाट्री में बहुत इंटरेस्ट रहा कार्डियक सर्जरी के अलावा.
1: wow.
2: तो मुझे ये समझ में आता है कि ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. और दूसरा डिस्ट्रैक्शन होता है पेरेंट्स का प्रेशर.
1: Correct.
2: बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को इंजीनियर बनाना है, बच्चे को जो बनना है उसको वो बनने दीजिए.
1: करेक्ट.
2: बच्चे को अपने पैर फैलाने दीजिए, अपने पंख फैलाने दीजिए. डोंट प्रेशराइज देम.
1: बिल्कुल.
2: तो अगर वो उनको प्रेशराइज नहीं करते हैं और एक फ्रीडम देते हैं उसको चूज करने के लिए, तो प्रोबेबली वो और सोशल मीडिया से जितना आप दूरी बना सकते हैं यूज़ करें, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में. वो कहा जाता है ना, टेक्नोलॉजी इज़ ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर.
1: बिल्कुल.
2: तो आप अगर मास्टर बना लेते हैं तो आपकी लाइफ खराब हो जाती है, आप उसको सर्वेंट बना के रखेंगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी.
1: सर इससे मुझे एक बात याद आ गई और बहुत रिलेवेंट एग्जाम्पल है. मेरा भांजा है, अमान नाम है, अमान हुसैन। और अभी इस बार जो नीट की परिणाम आए हैं इसमें इन्होंने क्वालिफाई किया, वो भी घर से क्वालिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए।
2: बिल्कुल, आई से कि जो कोविड टाइम में है वो टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को बड़ी हेल्प की। जैसे अभी हम ऐप की बात कर रहे हैं, आपका ऐप है, क्योंकि दुनिया के किसी कोने में लोग नारी ज्ञान स्थली FM सुन सकते हैं
1: आराम से।
2: 89.6 ना मुझे याद हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इसीलिए मैंने कहा इट इज़ अ गुड सर्वेंट, इफ यू यूज इट जुडिशियली आप जो है बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करो पढ़ाई लिखाई के लिए। इतना एक्सपोजर हम लोगों को तो होता नहीं था, हम लोगों को तो लाइब्रेरी में जाके वो किताब पलटनी पड़ती थी, तब कहीं जाके वो मिलता था कि हमको क्या पढ़ना है। एक किताब पढ़ने में टाइम निकल जाता था, हमको दूसरी किताब नहीं मिलती थी। हमको अगर स्लाइड्स प्रिपेयर करनी होती थी तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं था उस समय,
1: नहीं था।
2: और हम पता नहीं किसी को ध्यान है तो हम लोग को फोटो खींचनी पड़ती थी, उसका नेगेटिव बना के जो है उसको कराना पड़ता था।
1: ओके,
2: उसको करना पड़ता था। इट यूज टू टेक लाइक मंथ्स टू प्रिपेयर ए स्लाइड।
1: ओके, महीनों लग जाते थे,
2: महीनों लग जाते थे। और बहुत लगती थी
1: मेहनत लगती।
2: हाँ, प्रोफेशनल्स होते थे जो कि हम लोग को हेल्प करते थे। आप घर पे बैठे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना देते हो।
1: करेक्ट,
2: आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है गूगल में जाकर देख लेते हो। प्रॉबेबली एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, नॉलेज कम हो गई है, क्योंकि हम इमिडिएटली एक क्वेश्चन का आंसर हमने ढूंढ लिया, चार पैराग्राफ पढ़ लिए और हमारा हो गया। बट वी आर नॉट गोइंग थ्रू द बुक।
1: हम बिल्कुल
2: थोड़ा सा पढ़ के अपने आप को सोचते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया।
1: हाँ,
2: तो स्टिल आई विल से रीड बुक्स, कंप्लीट बुक्स और बी फोकस। सोशल मीडिया का बिल्कुल इस्तेमाल करो लेने प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए।
1: करेक्ट करेक्ट सर।
2: और ये फ़ोन आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है।
1: बिल्कुल,
2: जब आपको पढ़ना है फ़ोन बंद, जब आपको नहीं पढ़ना है अलाउ इट, आप स्विच ऑफ करके रख दो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप घर पे सब लोग जानते हैं, बस दैट इज़ मोर देन इनफ। तो सोशल मीडिया या फेसबुक के फ्रेंड्स आपके कभी काम नहीं आने वाले, बहुत कम। जो भी काम आने वाले हैं वो आपके घर के माँ बाप, भाई बहन, आपके रियल दोस्त, वर्चुअल दोस्त कम काम आएंगे।
1: बिल्कुल सही बात कहा सर आपने। मुझे भी खुद लगता है कि अगर जो भी चीज़ हम करते हैं उसको एक बार खुद से एनालाइज करना चाहिए। मतलब हर बच्चे को ही सोचना चाहिए कि अगर उसका टाइम जा रहा है तो कितने घंटे आज चला गया, उसमें वो क्या क्या कर सकता था। और आपने सही कहा कि अगर फोकस्ड होना है तो कहीं ना कहीं अपने करियर को प्रायोरिटी देनी ही होगी। और जो थोड़ा सा स्ट्रगल आपने होता है ना, आप लोग का तो बहुत स्ट्रगल था, आज बहुत कम स्ट्रगल में होता है, लेकिन मुझे लगता है जो स्ट्रगल होता है वही असल में सीखने का लर्निंग प्रोसेस होता है, वो मैंडेटरी होता है।
2: बिल्कुल अदनान, अभी छोटे शहर के, जैसे हम कहें ना गोंडा बैरक, हम कहते हैं यहाँ के बच्चों में ज़्यादा दम है, जुझारूपन है, और ये लोग ही ज़्यादा सक्सीड कर सकते हैं। जब आप शुरुआत से बचपन से एसी में रहते हैं, एसी बस में जाते हैं, एसी कार में जाते हैं, एसी स्कूल में जाते हैं, आप में वो लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती।
1: करेक्ट,
2: वी शुड लर्न टू डील विथ फेलियर्स। और माँ बाप से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जूजू हम कहते हैं ना बनाएं, उनको लड़ने दें, उनको फाइट करने दें। एक बार फेल होते हैं, दो बार फेल होते हैं, हर चीज़ पे फेलियर इज नॉट बैड, यू शुड सेलिब्रेट फेलियर्स।
1: करेक्ट,
2: क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फेल नहीं होंगे, आप कुछ कर रहे हैं तभी फेल हो रहे हैं।
1: तभी फेल हो रहे हैं, राइट, करेक्ट।
2: तो यू आर डूइंग समथिंग, दैट इज व्हाई यू आर फेलिंग।
1: करेक्ट,
2: तो बच्चों को करने दें, बच्चों को फेल होने दें, बच्चों को सीखने दें। हर समय जाके टीचर से लड़ना कि मेरे बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं, दैट इज नॉट करेक्ट।
1: करेक्ट,
2: आपके बच्चे के मार्क्स कम भी आ सकते हैं।
1: बिल्कुल,
2: लेट हिम फाइट इट आउट। बच्चों को वो इंडिपेंडेंस दीजिए कि बच्चे अपनी चीज़ खुद कर सकें। मेरे पिताजी कभी स्कूल में फाइट करने नहीं आए कि मेरे बच्चों को, अगर स्कूल में मार पड़ती थी तो घर पे भी पड़ती थी।
1: करेक्ट,
2: कि आपने ही कुछ गलत किया होगा
1: जी।
2: अगेन, इंडिया में ये ट्रेंड बढ़ रहा है, और मेरा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि बच्चों की लाइफ में उस तरह से इंटरफेयर है, बहुत ज़्यादा होता है, यस डेफिनेटली, बट लेट देम लर्न टू फेल। कोशिश करेंगे तभी फेल होंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे तो फेलियर का चांस ही नहीं है।
1: नहीं है
2: तो हमेशा सक्सेस नहीं मिलती है लाइफ में। जो आजकल सुसाइड के रेट बढ़ रहे हैं बच्चों में, वो इसीलिए बढ़ रहे हैं, किसी ने डांट दिया सुसाइड कर लिया, किसी ने मार दिया सुसाइड कर लिया, फेल हो गया एग्जाम में सुसाइड कर लिया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आपके चैनल की, आपका चैनल इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों में ये जाना चाहिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए,
2: कि फेलियर कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। आज मुझे ट्वेल्थ के एग्जाम के मार्क्स कोई नहीं पूछता है, ये नहीं पूछता है कि आप ट्वेल्थ में फेल हुए थे कि पास हुए थे।
1: करेक्ट।
2: कोई नहीं पूछता है आपने बीए किया कि बीएससी किया कि इंटर किया, नहीं पूछ रहा है।
1: पूछेंगे
2: कोई बिलगेट से पूछने नहीं जा रहा है, इलॉन मस्क से पूछने नहीं जा रहा है तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
1: करेक्ट।
2: सो डोंट बी सो रिजिड अबाउट एजुकेशन कि पास हो गए फेल हो गए कि हमको सब में टॉप में मार्क्स चाहिए। नो, लेट देम लिव। अगर आप उनको फ्री छोड़ेंगे फेलियर से लड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, डेफिनेटली दे विल सक्सीड, आपका बच्चा सक्सीड करेगा।
1: करेगा। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप अपने बच्चों को एक फाइटर बनाना चाहते हैं, उनको सोचने दें, उनको टाइम दें, उनको स्पेस दें, हाँ कोऑपरेट करते रहें, काउंसलिंग करते रहें, लेकिन फैसला जो लेने की बारी है वो बच्चे पे, ज़्यादातर उस पे डिपेंडेंसी होना चाहिए, उसको सोचने दें, ताकि बच्चा कलकदार अगर फेल होता है या पास होता है या जो भी होता है, उस पे उसको रिग्रेट नहीं होगा, वो उसका खुद का फैसला, और वो कहीं ना कहीं उस वहाँ से कुछ लर्निंग करके हो सकता है एक नई लाइन ले ले, हो सकता है उसके समझ में आ जाए कि ये शायद मेरे लिए था ही नहीं, कुछ और मेरे लिए बेस्ट है। जैसा कि सर बहुत से लोगों के साथ कॉमन देखा है कि पहले चूज एक लाइन करते हैं, फिर उसमें एफर्ट्स करते हैं, जब उनको लगता है कि आई एम नॉट कैपेबल, देन वो कुछ अदर चूज करते हैं और फिर उसमें सक्सेस हो जाते हैं।
2: श्योर, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। आप ट्रायल, बच्चे को तो ये एज है उनकी ट्रायल, हिट एंड रन का, मतलब आपने ट्रायल किया, आप फेल हो गए, अभी यंग एज है, क्या प्रॉब्लम है
1: और क्या,
2: एक साल दो साल तीन साल बाद सक्सीड करेगा,
1: करेगा,
2: नहीं करेगा तो कुछ और करेगा। आपने अगर उसको फाइट करने के लिए बना दिया है तो ही विल फाइट इट आउट, वो उसकी लाइफ है, वो बना लेगा। वो मुझे बच्चों की कैपेबिलिटी में कोई संदेह नहीं है,
1: कोई शक नहीं है, क्योंकि हर बच्चे में अपना एक एनर्जी होती है।
2: श्योर श्योर, वो डेफिनेटली एवरीबडी विल सक्सीड इन देयर लाइफ, प्रोवाइडेड यू गिव देम ए गुड एनवायरमेंट।
1: गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही सर, कि एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करना है, पेरेंट्स को, गार्जियन को इस चीज़ का ख्याल रखना है, और साथ ही साथ इस एनर्जी वाले के ब्रेक के साथ भी हम जाते हैं, और ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है, वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है, और तो और वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: तो ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं और आपका फिर से वेलकम करते हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जाने से पहले हम गोंडे वासियों के लिए भी बहुत सारी, हमने कहा था ना, बातें हैं, तो उन बातों में चूंकि हार्ट सर्जरी से आप रिलेटेड है और आप हार्ट के विशेषज्ञ हैं, तो सर आपसे कुछ कॉमन क्वेश्चन है हार्ट के बारे में, जो कि आजकल लोगों में आमतौर पर वो समस्याएँ देखी जाती है। तो सर ये हार्ट अटैक क्या होता है?
2: आजकल जैसे आपने कहा कि हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई हैं रिसेंटली, बहुत सारे लोगों को, राजू श्रीवास्तव या के हो गए, लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हुई
1: जी,
2: और लोगों में, और ये लोग काफ़ी यंग थे, तो कई लोगों के मन में होता है कि हाँ क्या है और कैसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट अटैक बेसिकली होता है कि सडनली हार्ट में किसी भी नस में ब्लड सप्लाई एकदम से बंद हो जाना,
1: okay.
2: तो उसकी वजह से हार्ट में हिस्से में डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से कभी कभी डेथ हो जाती है, या कभी उसी समय सीवियर पेन होता है, पसीना आता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के।
1: ओके।
2: अगर किसी को सीने में दर्द सडनली हो रहा है, पसीना आ रहा है, चक्कर आने लगता है उसी समय वॉमिटिंग होती है, तो डेफिनेटली लोगों को तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि हाँ ये हार्ट से रिलेटेड है और हार्ट के डॉक्टर के पास तुरंत भागना चाहिए।
1: सर ये इसका कोई हिस्सा हो तो आपने बताया जो पेन होता है, तो क्या वो राइट या लेफ्ट का कुछ ऐसा हिस्सा स्पेसिफिक होता है?
2: हार्ट का पेन यूजली राइट और लेफ्ट नहीं होता, हार्ट का पेन यूजली सेंटर में होता है,
1: सेंटर में होता है,
2: या स्क्वीजिंग पेन होता है, मतलब पूरी छाती में जैसे लग रहा है कि कोई स्क्वीज कर दे रहा है, कोई घसीट रहा है, या कोई बड़ा सा पत्थर सीने पे जिसने रख दिया, भारीपन महसूस होता है।
1: ओके।
2: और उसके साथ साथ स्वेटिंग।
1: ओके।
2: यूजली ये बहुत कॉमन सिम्टम है, तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम होता है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए।
1: करना चाहिए। सर इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं कॉमन तौर पर देखा जाए तो?
2: हार्ट अटैक के या जैसे हार्ट में ब्लॉक के कई कारण होते हैं और कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिसको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कहा जाए कि एज, पहले तो एज हुआ करती थी कि भाई 40-45 के बाद आपको हार्ट अटैक की संभावनाएं हैं, बट ग्रेजुअली इंडिया में हम लोग देख रहे हैं कि 20 साल 22 साल 23 साल 25 साल में भी हार्ट अटैक हो रहा है।
1: बिल्कुल।
2: पहले एक ये भी था कि फीमेल्स में कम होते थे, मेल्स में ज़्यादा हार्ट अटैक होते थे, अब वो भी धीमे धीमे डिफरेंस खत्म होता जा रहा है
1: जी।
2: तीसरा एक होता है रेस, ये सब नॉन मॉडिफाइबल है कि हम चेंज नहीं कर सकते, अपनी एज नहीं चेंज कर सकते, सेक्स नहीं चेंज कर सकते। रेस मतलब इंडियन रेस, और इंडियंस आर मोर प्रोन फॉर हार्ट डिजीज, मतलब हार्ट ब्लॉक होने की संभावना ज़्यादा होती है इंडियंस में एज कम्पेयर टू यूरोपियंस, अमेरिकन्स के कंपैरिजन में कहें तो 4 गुना हम लोग को हार्ट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, और जापनीज के कंपैरिजन में कहें तो 20 गुना प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं।
1: ओके।
2: तो ये इंडियन रेस भी आपके लिए एक रिस्क फैक्टर है। तो ये तो नॉन मॉडिफाइबल हो गए। फैमिली हिस्ट्री, जैसे पेरेंट्स को है, ब्रदर को या सिस्टर को, आपके किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा
1: बढ़ जाती है।
2: लेकिन जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो जैसे होता है कि आपको डायबिटीज़ है
1: जी,
2: तो अगर उसको हमेशा कंट्रोल करके रखें तो हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना कम है। स्मोकिंग या तम्बाकू का सेवन, ये बिल्कुल अवॉइड होना चाहिए। स्मोकिंग में करीब 4000 तरह के केमिकल्स होते हैं, उसमें 200 केमिकल आपके हार्ट के लिए नुकसानदायक है।
1: ओके।
2: तो लोग कहते हैं कि सिगरेट आप नहीं पीते हैं, सिगरेट आपको पीती है।
1: ओके।
2: तो बी केयरफुल अबाउट इट कि हाँ स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग जो है आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। उसी तरह से ओबेसिटी
1: जी,
2: वेट ज़्यादा होना वो भी हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है। ब्लड प्रेशर बड़ा होना वो भी हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है। कोलेस्ट्रॉल बड़ा होना वो भी हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है। तो ये सारी चीज़ें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो लेट अस वर्क ऑन इट। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी,
1: हाँ आजकल बहुत कम देखने को मिल रही है। जी जी जी।
2: तो एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बढ़ाएं। आजकल लोग हमसे बहुत, सब लोग आते हैं कि सर हम घर में बहुत काम करते हैं या हम ऑफिस में बहुत ऊपर नीचे करते रहते हैं तो हमारी तो एक्टिविटी हो जाती है। उसको एक्टिविटी नहीं, वो आपका डेली रूटीन है
1: जी।
2: एक्टिविटी का मतलब है 45 मिनट्स के लिए आप एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज या वॉक या जो भी है, आप 40 मिनट्स के लिए कंटिन्यूअस करते हैं,
1: डेडिकेट होके,
2: हाँ
1: जी,
2: तब वो उसको माना जाएगा कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं
1: जी।
2: तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि हाँ आप एक रेगुलर फिजिकल एक्ट

0: ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हार्ट अटैक से मिलती जुलती होती हैं
1: जी।
0: तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जनरल चीज़ बता दें और आपने वो किया और आपको नुकसान हो जाए।
1: नुकसान हो जाएगा बिल्कुल।
0: तो इसलिए जब भी आपको ये सिम्टम लगता है प्लीज़ डॉक्टर के पास भागें, नियरेस्ट हॉस्पिटल के पास जाएं।
1: जी, तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आप खुद से तो क्योर फौरन नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर के पास ही जाएं। अगर पॉसिबल है तो हार्ट के डॉक्टर हैं तो पहले उनके पास जाएं, और अगर नहीं अवेलेबल है तो फिजिशियन के पास जाएं, वो डायग्नोस करके आपकी बीमारी का कहीं ना कहीं अपने स्तर से वो हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आपकी टैगलाइन भी है कि बीमार पड़ने से पहले समझो दिल के इशारे, इसका क्या मतलब है?
0: दिल हमेशा इशारे करता है कि हाँ हमको तकलीफ हो रही है
1: जी,
0: आप इसको समझ लें, उसका इलाज करा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे होता है कि हार्ट अटैक सडनली नहीं आता है कि हाँ एकदम से, बहुत कम लोगों में ऐसा होता है कि वो एकदम ठीक थे और हार्ट अटैक हो गया
1: जी।
0: लोगों में कुछ ना कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे हार्ट अटैक से पहले होते सिम्टम होते हैं कि आप चलते हैं आपकी या सांस फूलती है या सीने में दर्द होता है, आप रुक जाते हैं तो आपको आराम आ जाता है, फिर चलते हैं फिर दर्द होता है। तो ये एक दिल कह रहा है कि आप समझ लो कि मेरे को प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर के पास चले जाओ। सांस फूलना एक दिक्कत होती है, कभी कभी होता है कि दिल की धड़कन ही बढ़ जाती है
1: जी,
0: वो भी एक सिम्टम होता है कि हाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, बेटर कॉन्टैक्ट द डॉक्टर। तो ये सारे आपको सिग्नल दे रहा है हार्ट कि भाई हाँ मेरे को प्रॉब्लम है और आप कंसल्ट करो एक स्पेशलिस्ट को,
1: समझ
0: मेरे को दिखा लो
1: जी।
0: हाँ, नहीं तो दिक्कत बढ़ने वाली।
1: करेक्ट। तो इस तरह से मतलब आपको लक्षण अगर दिखाई पड़ते हैं तो आपको वहाँ संभलने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं वो इशारा होता है दिल का कि बाबूजी
0: ना
1: ज़रा संभल के चलना, नहीं तो फिर बड़े धोखे हैं इन राहों में।
0: नहीं नहीं, आजकल बड़े धोखे हो रहे हैं, इसलिए जो है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें
1: जी,
0: क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे लोगों को खो रहे हैं।
1: करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने।
0: चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे रूटीन लाइफ में हो, हम लोग सुनते हैं कि कुर्सी पे बैठे बैठे चले गए या हॉस्पिटल आने से पहले चले गए, रात में सोए सवेरे नहीं उठे, ये सारी चीज़ें हो रही
1: हैं। सही बात है।
0: तो हार्ट को नेगलेक्ट नहीं करना, ये एक ऐसा ऑर्गन है, इसको नेगलेक्ट किया तो फिर अगर इसमें डैमेज हो जाता है
1: जी।
0: इसमें एक बात और भी कहेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
1: जी जी,
0: कि किसी को भी हार्ट अटैक होता है तो 6 घंटे के अंदर अगर वो स्पेशलिस्ट हार्ट के डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाता है
1: जी,
0: तो वहाँ पे ग्राफी होती है और एंजियोप्लास्टी की जा सकती है अगर जिस नस में ब्लॉक है, तो हार्ट बचाया जा सकता है जो परमानेंट डैमेज होने वाला है।
1: ओके।
0: अगर उस दौरान वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो हार्ट में परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो जैसे लखनऊ से गोंडा की डिस्टेंस 2 घंटे की है
1: जी,
0: वी हैव डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल, डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल आप यहां से 2 घंटे में पहुंच सकते हैं
1: जी।
0: तो अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप वहां भी पहुंच सकते हैं, डे एंड नाइट का प्रॉब्लम नहीं है, 2 बजे 3 बजे भी डॉक्टर आके इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं वो आके आपकी कर सकते हैं। तो वहां पे वो फैसिलिटीज़ आपके लिए मौजूद हैं कि आप अगर 2 घंटे में पहुंचेंगे तो वहां पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो जाएगी इन केस ऑफ हार्ट अटैक। तो वो गोल्डन आवर्स होते हैं, तो वो गोल्डन आवर्स को हमको डेफिनेटली ध्यान में रखना है,
1: उसको यूटिलाइज करना है। और कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि आपकी जो सर्विसेज है डिवाइन हॉस्पिटल की वो 24/7 है,
0: डेफिनेटली
1: कभी भी पहुंचे, क्योंकि इमरजेंसी केस होता है।
0: श्योर।
1: तो ज़रूर आप लिसनर्स को ये समझ में आया होगा कि अगर कोई ऐसी बड़ी मेजर प्रॉब्लम है तो 6 घंटे हमारे पास होते हैं जो गोल्डन आवर्स सर ने बताया, तो उसी बीच जाके हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलना, और अपने अगर गोंडा की ऐसी कोई बात है तो हमारे रास्ते में ही लखनऊ में जाने से पहले ही गोमती नगर पड़ जाता है जब हम लखनऊ में एंटर कर रहे होते हैं, तो डिवाइन हॉस्पिटल भी वहीं मौजूद है, आप वहाँ जा सकते हैं अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जो भी आपने बताया ये महज गोंडे वाले नहीं बल्कि जो भी लोग सुन रहे हैं कहीं से भी सुन रहा है ये प्रॉब्लम लोग फेस करते ही करते हैं, बड़ी आम होती जा रही है, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। लेकिन सर जाने से पहले एक बार फिर, क्योंकि हम गोंडे वाले हैं तो एक बार गोंडा के जो एस्पिरेंट्स हैं जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक आप कंक्लूड वे में कोई लर्निंग आपकी जो पूरी लाइफ की जर्नी रही हो उसको अगर एक बताना चाहें कुछ शब्दों में।
0: मैं तो ये कहूँगा कि मेरा फोकस जैसे था कि MBBS 3rd ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कार्डियक सर्जन बनना है, और उसके बाद की जर्नी काफ़ी लंबी होती है कि MBBS के बाद MS किया, फिर MCH किया, एंड देन यू बिकम कार्डियक सर्जन। तो मैंने पहले भी कहा था कि 3 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट यू डिसाइड अबाउट योर गोल,

0: आप अपना एक गोल डिसाइड करें जी, आपको क्या अचीव करना है, देन उसके लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम आपका होना चाहिए कि मुझे ये 2 साल में करना है, 3 साल में करना है, और ये जो गोल होता है ये रियलिस्टिक होना चाहिए
1: जी जी।
0: ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा सोच लिया कि जो प्रोबेबली पॉसिबल नहीं है,
1: नहीं हो पा रहा, करेक्ट।
0: जो आपके रिसोर्सेस हैं, जो आपकी वो है, जो अवेलेबल है, उसमें क्या आप सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बॉस कभी कभी आउट ऑफ द वे जाके भी लोग करते हैं, बट जो प्रॉब्लम है कि गोल होना चाहिए, टाइम बाउंड और रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, और उसके लिए मेहनत करना है, पूरी दम लगा के मेहनत करना है,
1: करना है, करेक्ट। उसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
0: तो अगर ये तीनों चीज़ें करते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है
1: जी।
0: नाउ समटाइम्स इट हैपन्स कि आपने मेहनत भी की, आपने गोल भी बनाया, टाइम बाउंड भी बनाया, और आपको सक्सेस नहीं मिलती है
1: जी।
0: मे बी 90% ऑफ द टाइम आपको मिले, लेकिन 10% ऑफ द टाइम यू मे फेल,
1: करेक्ट जी।
0: तो डिस्करेज नहीं होना, लीव इट फॉर सम टाइम, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, फिर दुगनी ताकत से लग जाइए, उसको छोड़ना नहीं है।
1: हाँ,
0: मतलब ये नहीं, डिस्करेज नहीं होना है, आप छोड़ दीजिए, आप रिलैक्स कीजिए, आप ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने हम रिलैक्स कर रहे हैं, वील एंजॉय, फिर आके फिर पूरी ताकत से उसी गोल के लिए लगना है,
1: लग जाना है, करेक्ट।
0: तो फेलियर इज नॉट द ऑप्शन, हम फेल 1 बार 2 बार 3 बार हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमको सक्सेस मिलेगी अगर हम लगे रहे तो,
1: करेक्ट। यानी तो आपसे बड़ा
0: पैशन, पर्सिस्टेंस एंड परसिवरेंस,
1: ट्रिपल पी
0: बाय पंकज पी,
1: यानी 4 times P सर ने बताया। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई बात करते करते। तो इस ट्रिपल पी का ध्यान रखना है, और पी सर ने बताया है, यानी पंकज श्रीवास्तव सर ने बताया है आपको, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत काम आने वाला है। और आई होप कि आप लोगों को आज एक तो डॉक्टर साहब के बारे में जानने को मिला ही होगा, साथ ही साथ आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में जाना, मतलब जो इवन बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हार्ट की, जैसा कि बताया कि बॉलीवुड सेलेब्स से लेके जो कि बहुत ज़्यादा क्योर करते हैं, उसके बाद भी देखिए किस तरह से ये समस्या आम होती जा रही है, और हम लोग शायद बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, चाहे वो खाने पीने के मामले में देखा जाए, फिजिकल एक्टिविटी के मामले में। तो उन चीज़ों को हम लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे और इन डिजीज़ से दूर रहेंगे। तो सर लास्ट एकदम जाने से पहले बस ज्ञानस्थली के बारे में अभी आपका क्या अनुभव है और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे सर, और लेकिन सर जाने से पहले एक वादा भी लेंगे कि आप दोबारा आएंगे गोंडा वालों के लिए।
0: श्योर अदनान, हम नारी ज्ञानस्थली से तो मेरा बहुत पुराना नाता है जैसे मैंने आपको बताया
1: जी,
0: और यहाँ की जो फाउंडर रही हैं वो अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल रही हैं
1: जी।
0: जैसा कई लोगों को नारी ज्ञानस्थली की हिस्ट्री नहीं मालूम है, ये 3 बच्चों से शुरू हुआ था
1: जी,
0: उनके घर पे उन्होंने 3 लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया था, और उसके बाद उन्होंने इस, और इस समय करीब 2000 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं
1: जी।
0: तो दिस इज़ अपने आप में नारी ज्ञानस्थली एक मोटिवेशनल इंस्टीट्यूट है जिसको कहना चाहिए कि यहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर आप ठान लें तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो गोंडा में जब उन्होंने एक लेडी ने कर दिखाया कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा किया जहाँ लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता,
1: करेक्ट सर,
0: और उनकी तो मैं क्या बात करूँ कि हम लोग गए थे उनके गांव एक जब उनके यहाँ फेयर लगता था
1: जी जी जी
0: कृष्ण जी के यहाँ, तो हम लोग अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो देखा बीच में एक वो था बुलडोजर
1: जी,
0: वो बीच रास्ते में, और बुलडोजर के पास हम लोग रुक गए क्योंकि बुलडोजर रास्ते में था, हम लोग उतर के उस तरफ गए तो देखा सामने वो बीच सड़क पे डॉक्टर कृष्णा सिन्हा बैठी हुई थी
1: ओके
0: बुलडोजर के सामने।
1: अच्छा,
0: अब वो किस लिए कि बुलडोजर वाला कुछ गलत कर रहा था और उन्होंने उनको मना किया था, उसके बावजूद वो मानने के लिए नहीं तैयार था, तो शी सेड ओके मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम्हारी हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ।
1: क्या बात है।
0: तो ये थी यहाँ की जो
1: फाउंडर
0: थी, तो अगर उनमें इतनी दम थी तो आजकल की लड़कियों में उससे ज़्यादा दम होनी चाहिए।
1: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने सर।
0: तो इसलिए कि किसी भी टाइम में, किसी भी समय और किसी भी जगह पर रिसोर्स का रोना नहीं रोना है, आप अपने आप में बहुत रिसोर्सफुल हैं, ह्यूमन बीइंग अपने आप में बहुत रिसोर्सफुल है, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप ठान लें कुछ करने के लिए। गोंडावासियों के लिए बस यही एक संदेश है कि गोंडावासी बहुत कैपेबल हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
1: क्या बात है सर, आपने मतलब जाते जाते हौसला से, क्योंकि आप खुद एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं और आप जब खुद कह रहे हैं ये बात, तो कहीं ना कहीं आपने वो जर्नी आपने जी भी है, वो लाइफ आपने जी और वो स्ट्रगल भी देखा, और आज वो फेज भी देख रहे हैं जब आपने जो सोचा था वो पूरा मुकम्मल होता हुआ जा रहा, और लगातार आपके विजन्स में बढ़ोतरी हो रही है, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, और जैसा कि हमने आपसे वादा लिया आप जरूर वापस आएंगे गोंडा वालों के लिए, एक बार खुद से बोल दिए सर।
0: हाँ, मैं जरूर वापस आऊँगा, अदनान से मिलने आऊँगा, इस कम्युनिटी रेडियो में वापस जरूर आऊँगा।
1: श्योर सर, तो आपका मोस्ट वेलकम आज तो था ही, और हमेशा आपके लिए है, आप आइए, क्योंकि गोंडा वाले आपसे बहुत प्यार होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत भी है। थैंक यू सो मच सर।
0: थैंक यू अदनान, थैंक यू नरेगा स्थली,
1: थैंक यू सर।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिले आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

हवाओं की आवाज तो सबने सुनी होगी, चिड़ियों की आवाज भी सबने सुनी होगी, पर देश में जो प्रोटेस्ट खेला जा रहा है इसकी आवाज कौन सुनेगा? जी हाँ, जिसको इसकी आवाज सुनने बस वही नहीं सुन पा रहा है। और प्रेजेंट टाइम देश भर में हजारों जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन एक चीज जो अच्छी है वो है भाई, आसपास चीजें अपने टाइम से हो रही हैं। जैसे कि अभी फीफा वर्ल्ड कप में भाई आपकी और फेवरेट, मेरी फेवरेट जो कहते हैं ना कि टीम है, उसने अपनी पहचान यानी कि अपना गोल्ड फिक्स कर लिया है। एंड यस, मैं अगर बात करूं तो फीफा वर्ल्ड कप की, जिसने हम सभी को शॉक में डाल दिया, अर्जेंटीना के साथ स्पेन का फाइनल मैच था और स्पेन ने एकदम ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तो भाई सेलिब्रेशन का टाइम है ये, और मुझे लगता है कि आज सेलिब्रेशन वाली गेम होनी चाहिए। जिन जिन लोगों को फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो इस जीत के, मतलब कह सकते हैं कि सेलिब्रेट करने के हकदार हैं, और जिन्होंने कभी नहीं खेला है वो भी हैं। क्योंकि देखिए, नई चीज़ों को तो हमें अपने कहते हैं ना कि एक्सप्लोर करना चाहिए, जानना चाहिए। तो आसपास कुछ भी हो लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उनका सेलिब्रेशन तो बनना चाहिए। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम स्पेन, जिन्होंने ये खिताब जीता है। और ये जो न्यू जर्सी में खेला गया फाइनल मैच था, वो 106वें मिनट में फेरान टोरेंस ने मैच का जो एकमात्र विजय गोल बनाया और स्पेन को 16 साल बाद दूसरी बार विश्व चैम्पियन बनाया। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जीत है स्पेन के लिए। भाई कोई 16 साल बाद वापस से जीत रहा है तो उसकी आंखों में आंसू भी होंगे और कहीं ना कहीं 16 साल का दर्द भी। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर मैं बात करूँ फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, तो ये जो आयोजक देश है, आपको बता दूँ कि इसमें टूर्नामेंट पहली बार 3 देशों के बीच हुआ, और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको, और इन तीनों देशों ने संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया। और इस बार जो नया फॉर्मेट था वो ये था कि विश्व कप इतिहास में पहली बार 32 के बजाय 48 टीमों ने इस बार हिस्सा लिया, जिसके तहत कुल 104 मैच खेले गए। मतलब इससे पहले मात्र 32 टीमें खेलती थी, लेकिन इस बार बढ़ा दिया गया नंबर, जिससे औरों को भी मौका मिल सके। और फाइनल अगर बात करूं तो फाइनल में अतिरिक्त समय जो है वो बढ़ाया गया, और स्पेन के फॉरेन टॉरेंस ने 106वें मिनट में गोल किया। तो ये मतलब टाइम बढ़ाने का जो फ़ायदा मिला वो दोनों के लिए खास था। और स्पेन पुरुष और महिला दोनों फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब एक साथ अपने नाम रखने वाला दूसरा देश बना है। मतलब महिला और पुरुष दोनों का जो इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप है अपने नाम फुटबॉल का किया है। तो मतलब मुझे लगता है कि टैलेंट की अगर भरमार आ गई है तो फिलहाल स्पेन में ही आई है। इन्होंने फुटबॉल को एकदम सीरियसली जान लगा के खेला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को। और अगर बात करूँ तो ये पूरा का पूरा फीफा वर्ल्ड कप 16 शहरों में आयोजित किया गया, और इसमें 3 देश ने जो है अपनी कहते हैं ना आयोजन की जिम्मेदारी उठाई। और अगर मैं बात करूँ तो 1994 के बाद पहली बार अमेरिका में ये आयोजित हो रहा था, और 2022 में अर्जेंटीना मौजूदा चैम्पियन था। तो इस बार की जीत तो है ही ऐतिहासिक जीत, और मुझे लगता है कि हम सभी को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो सेलिब्रेट करते हैं ये जीत। और मुझे लगता है कि अगर आपने भी, मैंने तो भाई बचपन में खेला है फुटबॉल और बहुत ज़्यादा दिल से खेला है। तो गुड इवनिंग रफ्तार, कैसे हैं आप? और आपकी रफ्तार तो हम सभी ने देखी है, लेकिन आज शाम की रफ्तार कैसे होने वाली है ये तो आपके एक किक से पता चलेगा, यानी कि आपने कभी फुटबॉल को किक किया है या नहीं। ये तो अब आपके क्या कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन बताएगी, ठीक है। क्योंकि आज है मंडे एंड मंडे इज़ कॉलिंग डे, और कॉलिंग डे में आप लोग खेलते हो और आरजे बीना आपको सुनती है। खेलना मतलब कि अपनी आवाज़ से खेलते हो, और अपनी आवाज़ की जो धुन है उसे हर दिल तक पहुंचाने की जो आपकी एकमात्र कोशिश है मंडे को होती है वीक में एक दिन, वो बड़ी ही खास होती है। सो नो डाउट, मुझे पता है आप लोग बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं आज। नॉट ओनली प्रदर्शन, यू ऑल गोइंग टू बी बैंग द इवनिंग बाय योर परफॉर्मेंसेज। कोई कविता सुनाएगा, कोई शायरी सुनाएगा, कोई अपने गानों की धुन पे पूरे
इंडिया को थिरकाएगा। फिलहाल कौन क्या करने वाला है ये तो मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं जो करने वाली हूँ वो एक छोटा सा धमाकेदार ब्रेक लेने वाली हूँ म्यूज़िक का, जिसको हम कहेंगे सेलिब्रेशन ब्रेक। तो चलिए सुनते हैं ये सेलिब्रेशन ब्रेक फॉर स्पेन। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम स्पेन, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया एंड हम सभी को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए।

अब ये सेलिब्रेशन स्पेन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे देश में हम लोग मना रहे हैं। और देखिए, जीत किसी की भी हो, अगर हम सबकी जीत में खुश हो रहे हो तो डेफिनेटली हमारी जीत में दुनिया मतलब सहभागी होगी। तो फिलहाल के लिए मैं सबको पहले इनवाइट कर लूँ, सब लोग उठ जाओ, जाग जाओ। और शाम हो चुकी है और इस शाम में आप लोग की प्रेजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपनी आवाज़ में सुर लगाने हैं। गुड इवनिंग अनिल शास्त्री जी, गोरखपुर से स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? और आज तो भाई मौसम काफ़ी अच्छा रहा दोपहर तक, लेकिन ये बारिश मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा सा है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर बहुत वैसा ही है जैसे पहले था। हाँ, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ही, क्यों मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि डिफरेंस नहीं आया, पर उतना नहीं आया जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना। क्या बोलते हैं, इंतज़ार था कुछ और लेकिन हो गया कुछ और। फिलहाल कोई बात नहीं, हम दोनों ही कुछ और में एडजस्ट करने वालों में से, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमें सिचुएशन के साथ खुद को बदलना आता है। तो फिलहाल के लिए चलिए उठ जाइए, सब लोग जाग जाइए, जागते हुए अपने हाथ में कप चाय ले लीजिए। अगर चाय पीते हैं तो, नहीं पीते हैं तो भाई कुछ हेल्दी वेल्दी ले लीजिए, ग्रीन टी विन टी पी लीजिए। और ज़िंदगी के जो सफ़र है उसमें एक और शाम बिताने की तैयारी कर लीजिए आरजे बीना के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि मानसून की शुरुआत हो चुकी है और आसपास काफ़ी अच्छा सा माहौल है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, हर इंसान मतलब मानसून की खुशबू इंजॉय कर रहा है। और मैं चाहूँगी कि आज की शाम स्पेशल मानसून स्पेशल हो, और उस मौसम के नाम जो सिर्फ धरती से नहीं बल्कि दिलों को भिगो रहा है, उस मानसून के नाम जो हर जीव की प्यास बुझाने के लिए तत्पर है, उस मानसून के नाम जिसने ना सिर्फ धरती को, ना सिर्फ इंसान को, बल्कि पूरी प्रकृति को एक नया रूप दिया है। ठीक है ना? तो मैं चाहूँगी कि आप सभी आज की शाम जो भी गाएं वो थोड़ा मानसून को मद्देनज़र रखते गाएं, क्योंकि आज मतलब मुझे लगता है कि यूपी के तो ज़्यादातर शहरों में अच्छी खासी बारिश हो रही है, और आसपास का तो फ़िलहाल मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ से मेरे लिसनर मुझे कॉल कर रहे हैं मुझे लगातार यही बता रहे हैं कि मैम बहुत अच्छा मौसम है, और क्या बताऊँ मतलब मज़ा आ रहा है मैम, बारिश अच्छी हो रही है, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा बारिश भी हो रही है। तो भाई ये तो नेचर है, नेचर नाप तौल के तो बारिश नहीं करेगा, पर हाँ जो करेगा वो बढ़िया ही करेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें तो चलती ही रहेंगी। और हाँ, किसी के लिए बारिश जो है वो गर्मा गर्म पकौड़ों और अदरक वाली चाय का स्वाद है, तो किसी के लिए छत पर भीगते हुए बचपन की शरारतें, किसी के लिए पहली मोहब्बत की यादें हैं इन्हीं बूंदों में छिपी, और किसी के लिए अधूरी कहानी भी बरसात के साथ दस्तक दे जाती है। हर किसी के लिए बरसात के अलग मायने हैं, मानसून के अलग मायने हैं, किसी किसी के लिए एक परेशानी का मतलब परेशानी का एक दस्तक बन के आती है बारिश। यार ये हो जाएगा, ये कैसे मैनेज करेंगे, छत को कवर करना पड़ेगा, मतलब बहुत मुश्किलात उन्हें सहने पड़ते हैं बारिश के दिनों में। कहते हैं कि बारिश की हर बूंद में एक पैगाम छुपा है, हंसने का मुस्कुराने का हर इंतज़ाम छुपा है, खुलकर जी लो इस मौसम को दोस्तों, क्योंकि हर सावन में ज़िंदगी का नया नाम छुपा है। फिलहाल सावन आने के लिए तो अभी 10-12 दिन बचे हुए हैं, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि 10 तक तो दे ही रहा है धीरे धीरे। तो मैं चाहूँगी कि आज आप लोग क्या कर सकते हैं मानसून स्पेशल में, बारिश से जुड़े कुछ किस्से अगर आपके हैं तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं, मतलब थोड़ा हटके कर सकते हैं, आप गाना ही नहीं गाएं, ज़रूरी नहीं है, आप बारिश से जुड़ी कोई अपनी मेमोरी शेयर कर सकते हैं, जिसको शेयर करने के बाद लगे कि शायद किसी और को भी सुनना चाहिए था इसके बारे में, शायद वो भी सुन रहा हो और गाने भी सुना सकते हैं, और कविताएं तो आप लिखते ही हैं। ठीक है, तो एक कविता मेरे जहन में भी है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब जब बादल धरती से मिलने आते हैं, सूखे मन में उम्मीदों के फूल खिल जाते हैं। गौर फरमाइएगा कि जब जब बादल धरती से मिलने आते हैं, सूखे मन में उम्मीदों के
फूल खिल जाते हैं। धीमे धीमे कुछ पुराने गीत मन में यूं ही बज जाते हैं। उस दौर की याद फिर से दिलाते हैं जब जब बादल धरती से मिलने आते हैं। मिट्टी की खुशबू यादों का संदूक खोल देती है। बचपन की कागज की नाव फिर से बोल देती है। कहीं चाय की भाप में हंसी मुस्कुराती है, कहीं खिड़की पर बैठी खामोशी गुनगुनाती है। ये मौसम सिखाता है रुकना नहीं कभी। बादलों में पीछे छिपी धूप भी है यहीं कहीं। कुछ प्रेम की बूंदें संदेश बन जाती हैं, कुछ बूंदें माँ की दुआ सी बरस जाती हैं। पेड़ पंछी नदियाँ खेत सब गुनगुनाते हैं। बारिश आते ही जीवन के रंग लौट आते हैं। तो ऐ जिंदगी तू भी बरस इन बादलों की तरह, हर सूखे दिल में उम्मीद की हरियाली भर दे जरा। तो चलिए सबसे पहला कॉल आप लोग के साथ साझा करती हूँ मैं, देखते हैं किसकी आवाज़ है। मेरा तो मन करता है आप लोगों से बात करने का, आपकी सुनने का, अपनी सुनाने का। और लेट्स हैव द कॉल। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन चलिए इंतज़ार फिर से करते हैं, क्योंकि बारिश कहती है ना कि बारिश की बूंदें इंतज़ार करना भी सिखाती हैं।

0: चलिए बहुत ही पहला कॉल सुनते हैं किसका है। हेलो हेलो
1: वार्निंग फोन इज नॉट कनेक्टेड।
0: हेलो
1: वार्निंग फोन इज नॉट कनेक्टेड।
0: हेलो हेलो, हमारी लिसनर की आवाज़ हम तक पहुंच नहीं रही है, क्या बात है। आवाज़ सुनने को तैयार। हेलो हेलो
2: हेलो,
0: गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
2: अयान है मेरा
0: नाम। अयान, अयान कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: गोंडा से।
0: गोंडा से, तो आप सुन रहे हैं 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आरजबीना के साथ गोंडा मैसेज मसाला में। तो ये बताइए, आज आप क्या सुनाना चाहते हैं? क्या सुनाना चाहते हैं? बिल्कुल सुनाइए। पक्का आप ऊपर थे? ऐसा तो नहीं छाता आपके नीचे था? क्या बात है यान, आपने बहुत अच्छा सुनाया और मुझे लगता है बारिश की इससे बेहतरीन शुरुआत हो नहीं सकती। वैसे आपको ये पोम किसने सिखाई, ये कविता आपको किसने सिखाई? ओहो, स्कूल में मैम ने। तो बिल्कुल सही कविता सिखाई, और बारिश का मौसम है और आप बिल्कुल भी बाहर मत निकलिएगा, नहीं तो आप भी फिसल जाएंगे और छाता आपके नीचे रो जाएगा और आप छाते के ऊपर हो जाएंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच अयान। तो इससे बेहतरीन तो शाम की शुरुआत कोई हो नहीं सकती। भाई मज़ा आ गया। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम, कुछ ऐसा ही। क्या बात है, मज़ा आ गया। और मतलब बारिश से जुड़ी कविताएं तो हमने बचपन में भी सीखी हैं, और इस कविता ने मेरे बचपन को तो याद दिला दिया। और आपका बचपन याद आया कि नहीं, ये मुझे ज़रूर चैट रूम में बताइएगा। और चलिए एक बढ़िया सा मानसून स्पेशल गाना सुनते हैं और इस शाम को और सुरीला बनाते हैं। और आप लोग कॉल करते रहिए और बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। अगर आप कुछ बेहतरीन सा सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आरजबीना के साथ शो गोंडा मैसेज मसाला आरजबीना वाला सुन रहे हैं। तो बजाते रहो, सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। लेकिन मैं नहीं अभी जाने वाली, क्योंकि एक कॉल है जो मुझे आपसे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो आवाज़ सुनते हैं किसकी है। हेलो,
3: सुरेश कुमार।
0: नमस्कार सुरेश जी, कैसे हैं? शुभ संध्या।
3: तो
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मानसून की हल्की फुल्की शुरुआत तो हो ही चुकी है, तो आज आपकी डायरी के पुराने पन्नों से कोई पुराना गीत निकलेगा मानसून पर।
3: अच्छा ठीक, यही सावन के ऊपर है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, स्वागत है स्वागत है।
3: सावन जाए रातों में, के गीत सावन गाए हाय की रातों में, ऊँटों पे बात दिल की आए हाय की रातों में।

0: और है मैं चुप ऐसे, मैं कह दूं कैसे, मेरा साजन नहीं तो कोई और है, कि तेरा नाम ओ तो के मेरे तेरे सपने मेरी आँखों में करूं झुके गीत सावन गाए हाय भीगी रातों में मेरा दिल भी है दीवाना तेरे नैना भी है नादान से कुछ ना सोचा कुछ ना पूछा कुछ भी पूछा ना एक अनजान से कि चल पड़े साथ हम ऐसे ऐसे बन के साथी रहूं मैं करूं झुमके गीत सावन गाए हाय
1: क्या बात है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन मानसून की शुरुआत कोई नहीं हो सकती। और क्या बेहतरीन आपने गाया और ऊपर से निभाया भी, मतलब जितना हम लोग चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आभार दिल से। तो शाम की इतनी बेहतरीन और सुरीली शुरुआत हो तो मुझे लगता है कि शाम मतलब हमारी हो चुकी है, ये तो मुझे पता है। तो आप लोग भी अपनी शाम के लिए कुछ करने वाले हैं, वैसे शाम लड़के का नाम नहीं है, आज वाली इवनिंग की बात कर रही हूँ मैं। आज की पार्टी मेरी तरफ से फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज की पार्टी आप लोग की तरफ से, क्योंकि आपको गाना सुनाना है और आपको ही मेरे लिए चाय और पकौड़े भेजने पड़ेंगे ना, शाम का समय है। वैसे कल तो मैंने पकौड़े खाए थे लेकिन वो केले के थे, आज थोड़ा मुझे लग रहा है किसी और चीज़ के खाने का मन कर रहा है। हाँ मतलब देखिए मौसम जैसा है के अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ों को डिमांड कर रही हूँ। आम वगैरह खाते समय थोड़ा ध्यान दें, ऐसा ना कि गाँव के चक्कर में कुछ और भी खा जाएं। हाँ बारिश हो रही है तो आम में कीड़े पड़ने के चांसेस बढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल आँखों से थोड़ा सा देख के ध्यान से, ये नहीं कि आम के शौकीन हैं मिलो आम चूस के बहा दिया और पता चला उसमें से नहीं तो 2-4 हज़ार कीड़े भी मतलब पेट में चले गए, वैसे डाइजेस्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पेट में, लेकिन फिर भी थोड़ी हाइजीन नाम की चीज़ होती है। आप लोग वेजिटेरियन वेजिटेरियन चिल्लाते हैं और आम के साथ इतनी चीज़ें खा जाएंगे तो क्या मतलब है। वैसे मैं ये तो जानती हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं, खाते पीते समय ध्यान देते हैं क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। और मैं तो चलिए आप लोग के लिए एक बढ़िया सा म्यूज़िकल ब्रेक लगाने, बारिश वाले सॉन्ग लगाने, जिनको सुन के मेरा दिल आपका दिल एक साथ कहता है वाह क्या गाना है, मज़ा आ गया यार। तो चलिए बैक टू बैक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जिसको सुन के हमारा और आपका जो इवनिंग ब्रेक है वो अच्छा हो जाता है। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल बारिश सॉन्ग फ्रॉम आरजेबीना। और अगर आपको भी लगता है आपकी वाली बारिश ऐसी होनी चाहिए तो बिल्कुल इस शाम को और सुहाना बनाएंगे लेकिन आपके साथ। तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून। और अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आरजेबीना के साथ शो गोंडा में से नसाला आरजेबीना वाला सुन रहे हैं, स्टे ट्यून।

0: तो भाई दिल के नगर में कोई आए या ना आए, लेकिन आज भी ना आपके नगर में आपके साथ बैठी है, करने आपसे लाखों बातें हजारों बातें, अनोखी गुड इवनिंग। एंड हमारे साथ तबिश खान है। गुड इवनिंग तबिश, कैसे हैं? और देखिए अभी तो कॉल आ चुके हैं, दो कॉल ऑलरेडी हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं, बाकी का इंतज़ार है। भाई मानसून की शुरुआत है और आरजे बीना की अगर आवाज़ में अगर आपको कोई गाना ना सुनने को मिले तो मेरा गाना गाने का फ़ायदा ही क्या हुआ, क्या बोलते हैं? आर यू एग्री विद दिस और नॉट? हाँ वैसे तो एग्री आप लोग मेरी बात से हो ही जाते हैं, पर मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी बात से आप एग्री हो, जो एग्री हो करने लायक हो उसी से हुआ करिए, जो आपको लगे कि हाँ भाई आरजे बीना आपकी ये बात तो बिल्कुल मुझे समझ को ना आई, तो बिल्कुल आप मुझे आंसर बता सकते हैं। तो चलिए कॉल आ गया, तो मैं चाहती हूँ कि एक कॉल ऑन एयर हो ही जाए, सुने आवाज़ किसकी है। हेलो,
1: शुभ संध्या मैम।
0: शुभ संध्या, और कैसे हैं आप, आपका शुभ नाम?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरा नाम तेज नारायण
0: है। ओ तेज नारायण जी, सबसे पहले तो स्वागत, मुझे बिल्कुल स्मरण है आपका और आप फैजाबाद से बात कर रहे हैं, तो स्वागत है आपकी आवाज़ का। सबसे पहले तो आपकी बेहतरीन कविताएं हमने कई बार कई मरतबा सुन रखी हैं और उम्मीद करते हैं कि आज भी कुछ बेहतरीन सा आपसे सुन पाएंगे।
1: आज कुछ छोटा सा बस ऐसे सुनाएंगे, इसके बाद कोशिश करेंगे कि कुछ दो चार लाइन गाना भी सुनाए।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, शुक्रिया, स्वागत है।
1: छोटा सा ये मतलब चार पांच लाइन का है, शेर है ये।
0: क्या बात है, स्वागत है।
1: कि सब तलबगार यहाँ कि कोई पतवार बने, सब तलबगार यहाँ कि कोई पतवार बने, वक्त भी इंतहाई चाहत में है कि वो मजधार बने।
0: क्या बात,
1: सब तलबगार यहाँ कि कोई पतवार बने, वक्त भी इंतहाई चाहत में है कि वो मजधार बने, और तुम मेरे कंधे पे सुकून से सो गए।
0: क्या बात,
1: तुम मेरे कंधे पे सुकून से सो गए, मैं भी इसी में गुम हूँ कि कोई फरमा बरदार बने। फरमा बरदार उसको कहते हैं जो मतलब आपके हर बात के लिए खड़ा हो, सब माने।
0: क्या बात,
1: तो तुम भी मैं भी अच्छा, तुम मेरे कंधे पे सुकून से सो गए, मैं भी इसी में गुम हूँ कि कोई फरमा बरदार बने। वैसे भी जनाब जंग जिंदगी की है, यहाँ कौन किसका मददगार बने।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया।
1: बस हमने सोचा आज मंडे है तो मैंने बैठे बैठे अभी,
0: क्या बात,
1: पुराना तो बहुत है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया।
0: हमारे लिए तो नया ही है हमारी शाम के लिए तो बिल्कुल नया है, स्वागत है।
1: तो कोशिश करता हूँ, तो जैसे गाना मेरा मतलब मेन तो लिखने का ही है।

0: कोशिश करता हूँ। ये सफर का गाना है, किशोर कुमार की आवाज में है।
1: क्या बात है, स्वागत।
0: जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं

रहेंगे हम रोते रोते जमाने में आए मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं ऐसे जीवन भी है जो जिए

0: परेशान जल थक गए चाह कर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं जिंदगी का सफर ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। धन्यवाद।
1: क्या बात है, क्या बात है। और ख़ास तौर पे इस गाने के स्टेंजे आपने इतने अच्छे से गाए हैं और शब्दों पे जो आपने जोर दे दे के, मतलब क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत, बेहतरीन पेशकश, क्या कहने, क्या कह रहे हैं। शुक्रिया।
0: अभ्यास नहीं रहता है हम लोगों का, लेकिन
1: फिर भी मतलब लिरिक्स याद रखना ये बहुत बड़ी बात है।
0: मैं असल में हर बार तो यही होता है, अभी कविताओं की तो श्रृंखला है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि इसके बाद कुछ, क्योंकि आपका जो पटल है ये हमको लगता है मुख्य रूप से सिंगिंग का है, तो थोड़ा ये जरूरी रहता है, तो मैंने कहा कि अब जब भी आऊंगा तो कविता भी थोड़ी रहेगी, थोड़ा ये भी रहेगा।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बेहतरीन सी शुरुआत की मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कविता भी उतनी ही अच्छी थी और उतना ही अच्छा मतलब गाना भी था, तो दोनों ही एक दूसरे को पूर्ण कर रहे थे, मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा था। तो अगले कॉल को चलिए कनेक्ट करते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। हेलो।
2: हाँ नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, शुभ संध्या, कैसे हैं अनिल जी, आपकी आवाज़ तो मैं पहचान गई।
2: चलिए थैंक यू।
1: हाँ ये बताइए, आपके गोरखपुर में अभी बारिश हो रही है या फिर अभी रुक गई है?
2: इधर का तो मौसम भी बड़ा सुहाना हो गया है, बताते कि जो आपने बोला ना कि अगर बारिश रुक रही है तो फिर वो गर्मी थोड़ी
1: महसूस हो रही है। हाँ घर में थोड़ा सा ह्यूमिडिटी भी हो जा रही है उस वजह से, फिलहाल जो भी है काफी राहत है, तो इसके लिए थैंक्स बोलेंगे, नहीं तो भगवान कहेंगे लोग की तो कंप्लेन ही नहीं खत्म होती है।
2: हाँ
1: बिल्कुल। तो चलिए आज आपकी आवाज में हमें क्या सुनने को मिलने वाला है?
2: मैं एक्चुअली उस दिन गाना था मनोज जी से, मैं प्रोग्राम में गाया था लेकिन पूरा मुझे याद नहीं था। जानवर पिक्चर का गाना है मेरी मोहब्बत जमा रहे।
1: क्या बात है।
2: तो आज मैं उसका, मैंने गूगल में सर्च करके उसका लिरिक्स नोट कर लिया हूँ।
1: क्या बात है, बेहतरीन, क्या है? मतलब ऐसी ही शुरुआत होनी चाहिए जिसको कहे ना दिल से गाया जाए, क्या कहने।
2: तो मैं कोशिश कर रहा हूँ गाने का।
1: स्वागत है, स्वागत है।
2: मेरे मोहब्बत जवान सदा रही तड़प तड़प कर यही कहेगी सदा रहेगी मेरी मोहब्बत जवां रहेगी सदा रहेगी तड़प तड़प कर यही कहेगी सदा रहेगी ना तुम सा कोई जमाने भर में हो ना तुम सा कोई जमाने भर में तुमको चाह मेरी नजर में तुम्हें चुनेगी रहेगी सदा रहेगी तड़

मेरी मोहब्बत जवान

0: क्या बात है। और हाँ, आपने मुझे लगता है कि जितना दिल से आज निभाया है ये गाना, क्या कहने।
1: थैंक यू।
0: मतलब इतना फील करके गाने को गाना और ऊपर से गाने को निभाने के लिए पूरा शिद्दत से प्रयास करना कि अंत तक गाना अच्छे से निभाया जाए, क्या बात है। दिल से गाए हुए गाने ऐसे ही होते हैं। क्या बात है। हाँ, थोड़ा सा आप स्टेंजा में लिरिक्स भूल गए थे, लेकिन वो कंटिन्यूटी रही, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पुराने गानों का जो दौर है वो दौर नहीं है, वो एक्चुअली में आपकी आवाज़ में बरसाया हुआ सुर है जिस मानसून को और ज़्यादा बेहतरीन दिलकश बना रहा है। सच्ची बता रही हूँ, मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड गुड इवनिंग धर्मेंद्र, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। अनोखी भी हमारे साथ है और तेज नारायण जी भी हमारे चैट रूम में आ गए हैं। सबका स्वागत है। आरजे बीना, ऑब्वियसली मैं ही हूँ, और कौन है। सभी का स्वागत है। और देखिए, एक और कॉल आ रहा है, मैं नहीं किसी का भी कॉल वेट कराना चाहती, अभी आवाज़ सुनते हैं इसकी। हेलो
2: हेलो, मैम पहचानी?
0: गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम। मैं तो पहचान जाऊंगी, लेकिन सुनने वाले लोग कैसे पहचानेंगे, तो उनको अपना नाम आपको बताएं। निशा हमारे साथ बात कर रही है, हमारी बहुत ही प्यारी श्रोता है, बहुत ही सुरीली इनकी भी आवाज़ है। तो निशा, आज बारिश पे कौन सा गाना आप सुनाना चाहोगे? हाँ चलो, कोई भी सुना दो जो तुम्हें पसंद हो, जैसे कविता भी सुना सकती हैं आप।
2: गाना सुनाने जा रहे हैं।
0: जी जी, स्वागत है।

0: चली खुशबू से महकी है फूलों की जली है बता दीवानी फूलों में छम छम गीत गाए फूलों में छम छम छम क्या तुम आलम
1: बस मैं मुट्ठी आता है।
2: क्या बात है, मौसम कैसा भी आए लेकिन अगर आप लोग को ये गाने याद आ रहे हैं तो मतलब आप लोग गानों से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच।
1: आप ठीक हैं?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग की आवाज़ सुन के तो और ज़्यादा ठीक नहीं सुपर ठीक हो गई हूँ। क्या बात है निशा, थैंक यू सो मच।
1: ओके मैम, थैंक यू।
2: तो भाई निशा की आवाज़ में हमने सुन लिया गाना क्या मौसम आया है, बहुत प्यारा गाना है। इनफैक्ट मौसम की अगर बात करूँ तो मंडे का मौसम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इस मौसम में कई सारे रंग देखने को मिलते हैं। तो चलिए अगला रंग देखते हैं किसका है, आवाज़ सुनने के बाद पता चलेगा। हेलो
3: नमस्कार, सुसंध्या आरजे वीना जी,
2: बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। शुभ संध्या, कैसे हैं सबलू सावंत जी? मुंबई का हाल बताइए क्या है?
3: मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ और मुंबई का भी जो सामने है बारिश का सीजन अभी है
2: बरकरार है
3: बरकरार है।
2: तो चलिए आज आप क्या सुनाएंगे, आपकी डायरी से कुछ या फिर कोई नगमा?
3: डायरी से ही है, बहुत ही अच्छा कुछ तैयारी करके लाया है, छोटा ही है पर अच्छा है, सुनने में अच्छा आएगा।
2: थैंक यू, स्वागत है।
3: और एक सॉन्ग जो सुने इससे पहले एक लिसनर आए थे, बहुत ही अच्छा उनका आवाज, जो एक वॉइस था,
2: क्या बात,
3: गाने का इंस्पिरेंस हमको काफी दिल को भा गई है।
2: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया
3: जी मैम।
2: स्वागत है आपकी कविता का
3: जी मैम, स्टार्ट करते हैं
2: जी। जी
3: आना नदिया की छोर पर बैठकर बातें दो चार करूंगा, अगर मर भी गया तो मैं तेरा इंतजार करूंगा। आना नदिया की छोर पर तेरे साथ बिताए उन लम्हों को कैसे मैं भूल सकता, तुझसे मिले बगैर कैसे मैं मर सकता हूँ। तू एक बार ही सनम आ जा, देख लूँ तुझको, कहीं ऐसा ना हो कि तू देखने को तरस जाए मुझको। आना नदिया की छोर पर तू बोली थी आएगी मेरी डोली तेरे घर,
2: क्या बात,
3: सुन ले कभी मैं सो न जाऊं, और कर कफन तेरे इंतजार में, सुन ले ये वादे किए थे तूने उसे निभाना बाकी है, इस जलते हुए दिल को थोड़ा सुकून दिलाना बाकी है। आना नदिया के छोर पर जमाने की रस्मों ने भले ही हमें दूर कर दिया, पर मेरी रूह का तुझसे नाता पुराना बाकी है, सांसों की डोर अब टूटने की कगार पर है, पर इस आखिरी दीदार की आस ठहरना बाकी है। आना नदिया की छोर पर बैठ कर दो चार बातें करूं। और वीना जी एक छोटा सा और भी है।
2: क्या बात है, स्वागत।
3: स्पेशल हमारे लेडीज लोग के लिए, बच्ची लोग जो पढ़ाई के सिलसिला में, उसके लिए हम कहना चाहता हूँ।
2: क्या बात है, स्वागत।
3: भाग कर शादी मत करना, क्योंकि शादी के बाद भी लड़का यही कहेगा, जो अपने माँ ना हुई वो मेरी क्या होगी, घर की इज्जत माँ बाप की दुआ होती है, उनके बिना हर खुशी अधूरी सी सजा होती है, जो अपनों को छोड़कर चले जाते हैं वो रिश्तों के मूल कभी नहीं समझ पाते। मायके की इज्जत करना सीख ले बहना, वरना दुनिया में तुझे कोई अपना ना अपनाएगा। भाग कर शादी समस्या का हल नहीं, अपने माँ बाप के दिल मत कभी दुखाना, परिवार की इज्जत सबसे बड़ी दौलत है, बेटा मुझसे विनती है भाग कर शादी कभी मत करना, सोचो समझो और फिर कदम बढ़ाओ, माँ बाप की इज्जत कभी मत भुलाओ। भाग कर कभी शादी मत करना, कभी भाग कर शादी मत करना।
2: क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत सा संदेश है। कई बार भावनाओं में आके या जल्दबाजी में या कह सकते हैं कि किसी दबाव में आके हम कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसके लिए हमें तामुर पछताना पड़ता है। एंड पछताना ना पड़े इससे पहले हम सोच समझ के कोई डिसीजन ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबलू जी, आपकी दोनों ही कविताएँ बहुत इंस्पिरेशनल थी, लोगों के लिए एक मैसेज देने वाली थी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, आभार दिल से।
3: नमस्कार।
2: तो भाई, सबलू सावंत जी की कविताएं हमेशा से हमें भाती हैं और उनकी कलम अच्छा लिखती है। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे कोई लिसनर अच्छा नहीं लिखते, सबकी कलम जब लिखती है तो बेहतरीन लिखती है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग लिखें, क्योंकि अपने भावनाओं को अपने तक रख के हम क्या ही पाएंगे। अगर हमारी किसी भी एक सोच से किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाए तो आई थिंक हमारा लिखना अच्छा है। तो फिलहाल मैं भी एक गाना सुनाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। चलिए एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक लेते हैं और आप लोग भी थोड़ा रिलैक्स करते हैं और तैयारी करने का थोड़ा मौका देते हैं, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ सुनाने का सोच ही रहे होंगे। लेकिन मेरी ये सोच कहाँ से पूरी होने वाली है और मैं अगला कॉल आप लोग के नाम करने वाली हूँ। चलिए सुनते हैं अगली आवाज़ किसकी है। हेलो।
4: हेलो, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? शुभ संध्या आशु जी, लखनऊ का क्या हाल है?
4: बहुत अच्छा मैम, बहुत, कल से ही बारिश हो रही है मैम। अच्छा,
2: हमारे गोंडा शहर में भी बारिश हो रही है और ये बता रही है कि हाँ मौसम बदल रहा है। और देखिए बदलते मौसम के साथ क्या पता आशु जी भी गोंडा की तरफ रुख करें। तो चलिए आज क्या सुनाने वाले हैं आप ये बताइए।
4: मैम, मेरी छोटी सिस्टर सुकीर्ति की लिखी हुई कविता है।
2: क्या बात है, आपकी एक छोटी सिस्टर भी है? आपकी छोटी सिस्टर भी है?
4: मैम, सुकीर्ति हो गई है, रेडियो एफएम पे भी गई है।
2: क्या बात है,
4: नारी ज्ञान से।
2: बिल्कुल, चलिए स्वागत है।
4: उसकी लिखी हुई तब तक नाना चाहती।
2: स्वागत है।
4: सुख का आंचल, सुख का आंचल।
2: क्या बात है,
4: कितना अच्छा माँ का आंचल, कितना अच्छा माँ का आंचल, लगता है खुशियों का बादल, लगता है खुशियों का बादल, मोती सा है प्यारा प्यार बरसाता, मोती सा है प्यार बरसाता, ममता का रस सदा टपकाता, कितना प्यारा माँ का आदर। जब माँ हमसे दूर रहे दुख की गर्मी का ताप बढ़े, जब माँ हमसे दूर रहे दुख की गर्मी का ताप बढ़े, माँ जब जब दुलारती है सुख ही सुख बरसाती है, माँ जब जब दुलारती है सुख ही सुख बरसाती है, सहती है दुख कष्ट मगर देख हमें मुस्काती है, इतना प्यारा माँ का आदर।
2: क्या बात है, क्या बात है, और इतना खूबसूरत अंदाज आपका कहने का भी, और लिखने वाले ने भी क्या लिखा है, आपकी बहन ने क्या शब्दों को पिरोया है। ये शब्द नहीं है, भावनाएं
4: भी, वो बुक की छपी हुई है मैम, बहुत ही प्यारा लिखती है वो।
2: क्या बात है, और मुझे लगता है ये शब्द नहीं, ये भावनाएं हैं जो शब्दों में पिरोई गई है। क्या बात है,
4: बिल्कुल मैम। और मैम एक लाइन में थोड़ा गुनगुनाऊंगी।
2: क्या बात है, स्वागत है।
4: ए माँ तू अपने गले से लगा ले, आंचल में छिपा ले, और मेरा कोई नहीं।
2: क्या बात है, आप और भी सुनाती इस गाने को तो मुझे और अच्छा लगता। फिलहाल कोई बात नहीं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई, आशु जी ने भी सुरों के साथ कविता का जो कहते हैं ना कि तान छेड़ी है, बहुत ही खूबसूरत थी। और कहते हैं ना कि जब माँ से जुड़ी चीज़ें सामने आती हैं तो भावनाएं अपने आप बह निकलती हैं। और ये जो गाना आशु जी ने शुरू किया, मेरा फेवरेट गाना है। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, सीने से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। बहुत खूबसूरत भावनाएं हैं। और चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस से आप लोग के कॉलों तक क्या मतलब अंग्रेजी हिंदी में आपकी कॉल्स तक आती हूँ और फिर वापस से बातें करूँगी आप लोगों से बहुत सारी। और बिना किसी देरी के होगी शुरुआत एक नई, कहते ना कि शाम की और बारिश वाली वाइब ऐसे ही बरकरार रहेगी, आगे भी हम गाने सुनते रहेंगे, एक दूसरे को सुनाते रहेंगे। चलिए एक प्यारा सा गाना आपके नाम करते हैं और आई होप ये खूबसूरत से शाम और खूबसूरत हो जाएगी अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 99.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: तो श्रोताओं, अगर हम बात करें गाने की और गाने सुनाने की, तो एक गाना ऐसा भी है जो सावन से जुड़ा तो है लेकिन सावन वाली फीलिंग नहीं देता। फिलहाल उस गाने को मैं आप लोग को सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉल जिसे कनेक्ट करने की बारी है। चलिए सुनते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो,
1: हेलो,
0: गुड इवनिंग, कैसी हैं सविता जी? आपकी आवाज़ सुनते ही पहचान गई, लेकिन कितने दिनों से गायब थी आप, ये बताइए।
1: हाँ, थोड़ा काम का ज्यादा जिम्मेदारी आ गई ना, कपड़ा सिलाई का ज्यादा,
0: जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा, तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियाँ, साहस के साथ अंतरिक्ष को भेद डाला, सुना वायु यान भी उड़ाने लगी बेटियाँ, और उन्हीं में से आप भी एक हैं। तो ये बताइए आज क्या सुनाने वाली है?
1: मैं एक गाना सुना रही हूँ जो याद है, इसीलिए सुना रही हूँ।
0: अच्छा, मतलब याद ना होता तो फिर आप ना सुनाती?
1: नहीं ना, तो भूल भाल गाती तो क्या हो सकता इंसान।
0: क्या बात है, कोई बात नहीं, भूलना भुलाना चलता रहेगा। आपके पास गाना है, आप सुनाती रहिए, स्वागत है।
1: पुराना गाना है।
0: वाह, क्या बात है।
1: मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुमको दिल का राज बताओ, तुम्ही से राज छुपाओ, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है।
0: क्या बात है।

0: हमने कलियां बहारे संसार की, तुम ही के दिल का राज बताओ, तुम ही से राज छुपाओ, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है।
1: क्या बात है, और आपको कुछ नहीं हुआ है, बस आप भूल जाती हैं थोड़ा थोड़ा, बस यही है बाकी।
0: वही भूल जाती हूँ, भूल गई थी तो बोलके आज बहुत दिन के बाद फोन किया हूँ आपको।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही गुनगुनाती रहिए और कॉल करके अपनी आवाज में कुछ ना कुछ सुनाते रहिए। थैंक यू सो मच।
0: और मुझे याद करना पड़ेगा।
1: हाँ बिल्कुल, और याद करने के साथ
0: याद करके भी सुनाऊंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी याद ऐसे ही हमें आती रहे और आप अपनी याद के साथ हमें कुछ ना कुछ सुनाती रहे। थैंक यू सो मच। तो भाई हमारी सविता जी ने तो बड़ा प्यारा सा गाना सुनाया, मिलो ना तुम तो हम घबराएं। वैसे ये मुझे डेडिकेट करना चाहिए था आप लोग को, लेकिन एक गाना सावन को मैं डेडिकेट करना चाह रही थी और अब मैं डेडिकेट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी कोई कॉल नहीं आ रहा है और जब कॉल आएगा तब मैं आप लोगों को कनेक्ट करूँगी। तब तक के लिए चलिए देखते हैं कि कौन सा मतलब गाना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, कोशिश करने जा रही हूँ, वैसे मैं सुनाने नहीं जा रही हूँ। बहुत दिनों से सोचा था सुनाऊंगी सुनाऊंगी, लेकिन आज मेरे मन में आ गया कोशिश। लेट्स एंजॉय।

बहुत डेफिनेट सी बात कही गई है कि अगर काम बनाने वाला ही काम बिगाड़ दे तो भाई कौन बनाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली भाई, जिससे उम्मीद हो वही उम्मीदें तोड़ दे, देन व्हाट विल हैपन टू योर लाइफ। ये गाना बहुत अच्छा सा मैसेज देता है।

0: मेरे लिए ये गाना इतना ही था, और अब आप लोग बताइए, आप लोग की बारी है। और भाई अभी तक कॉल किसी का क्यों नहीं आया, कौन कहाँ सो रहा है, फटाफट से कॉल करिए। तो मेरी तरफ से ये गाना इसी तरह निभाया गया, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, बट हाँ मैंने ट्राई किया कि चलो छोटी सी कोशिश कर ली जाए, और दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, और छोटी सी आशा को कहीं पीछे छोड़ना नहीं चाहिए। एंड हमारे साथ बहुत सारे लोग एक साथ आ गए हैं, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी मतलब मेरी हौसला अफजाई की है। और क्या बात है, शुक्रिया अनिल जी, शुक्रिया आशु जी, शुक्रिया सभी को, शुक्रिया शिल्पी जी, अरे आप भी आ गई, क्या बात है, स्वागत है आपका, एंड दिल से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। सविता शास्त्री जी आपका भी आभार दिल से, और बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सबलू सावत जी, फिलहाल मुझे आप लोग ताड़ की झाड़ पे चढ़ाइए, बाद में फिलहाल आप लोग की बारी है, आप लोग सुनाइए जरा दिल से। और चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस से आप लोगों से बात करते हैं, अभी काफ़ी टाइम है और बहुत सारे कॉल सभी भी आ सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सबको मौका मिले। और मौके के साथ देखिए कॉल आ चुका है, और ऑन एयर मैं कर रही हूँ कॉल, आवाज़ सुनते हैं किसकी। हेलो, हेलो,
1: नमस्कार रीना जी।
0: नमस्कार, शुभ संध्या, कैसे हैं रईस जी, आपकी आवाज़ में पहचान पा रही हूँ।
1: बहुत बहुत बहुत प्यारा गाना आपने सुनाया अभी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बस एक छोटी सी कोशिश थी, क्योंकि मॉनसून का टाइम था तो मुझे मॉनसून से ही गाना याद आया, तो मैंने सोचा आप लोग के नाम कर दूं।
1: मैंने गाना भी बहुत अच्छा था, सिचुएशन बहुत अच्छी थी, मैंने पंडित जी को बताया कि आज की गाना मैडम गा रही है, तो पंडित जी बोल रहे कौन है जो इतना सुंदर सुना रहा है गाना।
0: अरे कोई नहीं, छोटी सी कोशिश थी, आप लोगों से सीख सीख के मैंने भी कुछ ना कुछ सीख लिया। आज आप क्या सुनाने वाले हैं?
1: मैं साजरी लगा देता हूँ, दो लाइन मैं भी सुना दूंगा आपको।
0: स्वागत है, स्वागत है।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, सच जी दिखा दिखाता है, यही यही हंसाता है, यही रुलाता है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, बस इतना ही सुनाना साहब।
0: क्या बात है, और ऐसे ही दिल को दीवाना और पागल करके रखिए, क्योंकि ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे ना तो दिल सीरियस हो जाएगा। तो फिलहाल बहुत ही अच्छा सा आपने गाना सुनाया, मुझे लगता है कि इस गाने में वो एनर्जी है जो हर किसी को इस टाइम पे चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत परेशान है, लेकिन अगर ऐसे गाने सुन के दिल को तसल्ली मिले तो मुझे लगता है कि थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई रईस जी ने भी आके अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई, बल्कि अपनी आवाज़ में गाना सुना के ये बताया है कि वो हमारे साथ बराबर बैठे हुए हैं और गाने को सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए, शाम में हाजिरी लगाना मात्र आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आपकी आवाज़ दूर तक जाए, जहाँ जो जो इंसान सुन रहा है, भाई गाड़ी में किसी के बज रहा है और वो आपके बस सुन के इंस्पायर हो जाए, कुछ मैसेज आपकी आवाज़ से मिल जाए, तो क्या बात हो जाए। तो फिलहाल बात पे बात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सबलू जी, बहुत सारी आप लोगों ने तारीफ़ें कर दी, इतनी तो तारीफ़ों की मतलब मुझे ज़रूरत नहीं थी, मतलब इतना अच्छा तो मैं नहीं गाती हूँ, मैं ये कहना चाहूँगी, पर हाँ कहते हैं ना एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, तो मैं चाहूँगी इस एप्रिसिएशन के लिए दिल से आभार। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस से आप लोग के पास आते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट वाला
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर, हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा, अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: चलिए अगले कॉल की तरफ रुक करते हैं, देखते हैं आवाज़ किसकी है, और देखिए ऐड के बीच में कॉल आ गया और मैंने सोचा कि सबको ऑन एयर करने का मौका मिलना चाहिए, अभी आवाज़ सुनते हैं किसकी। हेलो, हेलो, कॉल हो गया डिसकनेक्ट, और भाई मेरे कॉल वापस से कनेक्ट करने का क्या फ़ायदा हुआ। एनीवे चलिए इंतज़ार करते रहेंगे, इंतज़ार का फल बहुत ही सक्सेसफुल होता है, ये मुझे पता है। चलिए आवाज़ सुनते हैं किसकी। हेलो, नमस्कार, शुभ संध्या।
6: हाँ मैडम जी नमस्ते,
0: कैसे हैं चंद्रभान जी? आपकी आवाज़ पहचान पा रही हूँ मैं आज।
6: आपका आशीर्वाद है, अभी आपकी सुनने से तबीयत खुश हो गया।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार दिल से।
6: आज हमारा मूड गाने का था नहीं, वैसे मन जब करता तभी कुछ अच्छा लगता है।
0: जी जी,
6: लेकिन आपने तबीयत बहुत प्रसन्न कर दिया, इसलिए एक छोटा सा गीत सुना रहा हूँ।
0: जी जी,
6: आपके आपने जितना बढ़िया सुनाया है वो उतना अच्छा तो हम सुना ही नहीं सकते।
0: स्वागत है, स्वागत है, दिल से स्वागत है।
6: जाने बहा तेरा बेनिजान है, जाने बहा तेरा

0: जाने बहा मुझे आई है मेरे पास से इशारों से आई है मेरे पास से इशारों से उतरे आसमान से मैं क्या कहूँ उसी से गजब मेरा हाल है जाने बाहर तेरा बेमिसाल है जाने बाहर तेरा आए तेरी बात आए तेरी बात
1: बस मैं तो इसके आगे नहीं गा पाएंगे। धन्यवाद।
2: क्या बात है, आपने जितना भी सुना है मुझे ऐसा लगता है कि हमारी यादों से इस गानों को वापस खींच के वापस ले आए हैं, क्योंकि जो
1: आपकी आवाज नहीं सुनते हम, मैं नहीं गाता।
2: अरे चलिए, मतलब मैं खुशनसीब महसूस कर रही हूँ कि मैंने गाना गा दिया, जिससे आपने भी मतलब एक छोटी सी कोशिश की जिसका मतलब इंतजार था। क्या बात है, बहुत बहुत।
1: अरे नहीं, आपने तबीयत, धन्यवाद आपको,
2: बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, चंद्रभान जी की आवाज़ में इतना प्यारा सा पुराना सा गाना सुन के दिल खुश हो गया। गुड इवनिंग मनी, गुड इवनिंग अनुष्का, और लगातार बाकियों के भी कॉल आ रहे हैं। लास्ट टाइम चल रहा, तो मैं चाहती हूँ सबको मौका मिले, तो एक भी गाना नहीं अभी बजेगा, अभी हम कॉल ही लेंगे। चलिए सुनते हैं आवाज़ किसके। हेलो,
3: हेलो, गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं?
2: गुड इवनिंग, कैसी हैं शिल्पी जी? आपकी आवाज़ सुनने को तो हमारे कान तरस जाते हैं। फाइनली, चलिए, तरसते कानों को बारिश की बूंद मिली, फाइनली आपकी आवाज सुनी, क्या बात है।
3: शुक्रिया शुक्रिया आवाज पहचानने के लिए।
2: आवाज तो
3: मेरे दिल में इतनी इतना अच्छा गाना सुनाने के लिए।
2: गाना तो मैंने
3: आप तो आते काबिले तारीफ था।
2: मैंने सब लोग को सुन सुन के मैंने सोचा लो यार बारिश हो रही है, मैं भी कुछ सुना दूं। तो मुझे गाना भी याद आया, वो भी बारिश के विपरीत।
3: हाँ तो वही, आज मौसम मौसम और बारिश की बात हो रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी गुस्ताखी हम भी कर लेते हैं, मोहम्मद रफी साहब का एक गाना सुनाना चाहते हैं।
2: क्या बात है, आपकी आवाज में गुस्ताखी तो कतई नहीं होती है, लेकिन हाँ जो भी होती है वो
3: पहली बार कोशिश करने जा रही हूँ एक्चुअली।
2: क्या बात है, स्वागत है।
3: मैं अभी तक ये गाना कभी गाई नहीं हूँ, आज फर्स्ट टाइम गा रही हूँ।
2: देखिए, हर चीज का एक बार फर्स्ट होगा तभी तो सेकंड बार होगा, तो आज फर्स्ट बार कर ही दीजिए। स्वागत है
3: जी, शुरू करते हैं मैम।
2: तो चलिए हम सुनते हैं हमारी सुरीली शिल्पी जी की आवाज, बेहतरीन आवाज, जिसे सुनने के लिए दिल हमेशा रहता है बेकरार। क्या बात है,
3: बहुत बहुत शुक्रिया मैम।

है बड़ा बेईमान है आज मौसम। क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है।

0: मौसम आज मौसम। थैंक यू मैम।
1: मौसम बेईमान है कि नहीं, लेकिन हाँ आपके सुरों ने मौसम को बेईमान जरूर कर दिया है। अब तो बादल बरस के ही जाएंगे। क्या बात है। और फिलहाल जो आपने स्टेंजा गाया कि खता, बिल्कुल आपने खता तो कर दी है। अब टाइम भी जाने वाला है, नहीं तो एक गाना तो मैं सुन के आपको और भेजती। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आज की शाम बेहद सुरीली रही, बेहद मोटिवेटेड रही। किसी ने थॉटफुल कविता सुनाई, किसी ने इतना सुरीला गाया, भाई दिल छू लिया आप लोगों ने आज। मतलब मन करता है ना मंडे को इवनिंग 3000 घंटे की होनी चाहिए मेरी। आपने गा दिया, मतलब मन कर रहा है कि सुरों में गोते लगाते रहें। क्या बात है। तो शिल्पी जी की आवाज में ये गाना सुन के यार, मतलब सच में मौसम अगर बेईमान ना होना तो हो जाए। कहे कि भाई इतना सुरों में कोई मुझे कह देगा कि बेईमान हो जाओ, बेईमान हो जाओ, तो मैं तो बेईमान ही हो जाऊंगा। तो फिलहाल मैं यही कहूंगी, कहना ही क्या कि आपकी आवाज़ सुनने के बाद किसी और को सुनने का वही नहीं, क्या कहने। फिलहाल चलिए, आप लोग की आवाज़ इतनी बेहतरीन है, मन तो कहेगा ही ऐसे सुनते जाएं। लेकिन टाइम मुझे ना दिला देता है याद कि आर जे बी ना मत भूल, अभी तुझे सुनाने हैं सबके पसंद के अल्फाज। तो गीत आपके नाम से सुनने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द बेस्टेस्ट, मतलब बेस्ट तो ऑलरेडी मतलब अपनी हाईएस्ट डिग्री पे है। मैं बेस्ट से भी अगर कोई अच्छा वर्ड है किसी को मतलब एड्रेस करने के लिए तो मैं उसको भी यूज़ कर लूँ दिल से। बहुत खूबसूरत आप सभी ने गाया, दिल से आभार। गुड इवनिंग अगेन, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अनिल जी वाकई में बहुत अच्छा गाया शिल्पी ने। और कार्तिक कश्यप गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। अनुष्का गुड इवनिंग, मनी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत करते हुए अब मैं आप लोगों से लेती हूँ विदाई। ऐसे ही गाते रहें, मुस्कुराते रहें। जो लोग सिर्फ गाने की फरमाइश करने आते हैं वो केवल फरमाइश ही ना करें, आएँ और कुछ बेहतरीन सा सुनाएं भी। गुड इवनिंग धर्मेंद्र अगेन, बाकी सबको मैं बाय-बाय करती हूँ और आप लोग आगे अपनी पसंद के गाने सुनिए इस खूबसूरत सी शाम के साथ। और आज भी को दें इजाज़त एक प्यारे से नगमे के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको सुरीला बेहतरीन सा सुन रहे थे तो डेफिनेटली आरजे बीना के साथ शो गुंडा महसूस मसाला आरजे बीना सुन रहे थे। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बरकरार रखिए क्योंकि आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: ठंड है।
1: हाथ धोए।
0: मींस बहुत अच्छी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड जैसी फ्रेंड है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड।
1: इट्स सिंपल। लव।
0: लव? आपने भी किया था लव?
1: था, किया है, हमेशा करता रहूंगा।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर, हर सर्विस पर

0: 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

के अपने सुपर माइशी में आपके अपने आज सिंपल नॉट से सफर के साथ में और आप सुन रहे हैं डेफिनेटली रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धुन। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए और बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन सा गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके। और भाई ये आर जो सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना। सो कैसे हैं आप सब, क्या है हाल चाल और क्या है आज की शाम में बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी बात, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से आपका स्वागत है, प्रकाश आपका स्वागत है, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, मुस्तफा जी साउदी से, महेंद्र राजस्थान से, प्रमुख कुमार जी लुधियाना से, राजेंद्र, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सविता दुबे गोंडा से आप सभी का स्वागत है, अनोखी शर्मा हाँ स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, सुरेंद्र यादव गोरा चौकी से, शिल्पी बनर्जी जी गोंडा से आपका भी स्वागत है। सो एंजॉय करते हैं हम लोग बिना बिना बिना बिना बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। सो पहली फरमाइश हमारे पास में है प्रमुख कुमार की लुधियाना से, उनको सुनना है गाना नजरें मिलाई तूने दिल ना मिलाया। सो एंजॉय करते हैं ये अतरंगी सा गाना, गुड्डू गिलहरी का गाना, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रमुख जी की फरमाइश पर जो कि है लुधियाना से। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए

मौका मिला या हमने एंजॉय किया है ये नगमा गुड्डू गिलहरी की आवाज में, प्रमुख की फरमाइश पर, प्रमुख कुमार की फरमाइश पर जो की है लुधियाना से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और लखनऊ से आशु जी को सुनना है गाना। तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा 90s का सुपर डुपर हिट नगमा, हमारी सुपर डुपर हिट आशु जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

हमको तुमसे प्यार हुआ है और जीना दुश्वार हुआ है। हमने एंजॉय किया है ये सुपर डुपर हिट सदाबहार नगमा कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में, हमारी आशु जी की फरमाइश पर, आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। और दोस्तों अगली फरमाइश जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से, और अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे जुड़वा जुड़वा नैना। सो तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में छोड़ा है निशानी दिल्ली में। वैसे हम भी कहेंगे कि तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में नहीं नई दिल्ली में और छोड़ा है निशानी दिल्ली में। सो इससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ, तो इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा कजरा रे, सिर्फ हमारी कजरा रे नैना वाली अनुष्का की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। हाय हाय।

दोस्तों बचपन से अभी तक अगर डांस कहीं करना है, पार्टी में कहीं गए हैं, पैर थिरकने वाले हैं, डांस फ्लोर पे हम आने वाले हैं, तो ये गाना तो जरूर बजने वाला है। सो हमने एंजॉय किया है अनुष्का की फरमाइश पे ये वाला नगमा। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। सो क्या आप सभी अगले वाले फरमाइश को, अगले वाले डिमांड को सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काहे नहीं काहे नहीं काहे नहीं। लेकिन उसके पहले कहना चाहूंगी कि दिल में मोहब्बत का होना जरूरी है, दिल में मोहब्बत का होना जरूरी है, वरना जिंदगी तो वैसे भी बोरिंग है। चाय पत्ती कम हो तो चाय फीकी लगती है, सही कहा ना, चाय पत्ती कम हो तो चाय फीकी लगती है, और तुम्हारी याद ना आए तो नींद कहाँ टिकती है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा जी की सऊदी से, उनको सुनना है गाना रब से और सजन से झूठ नहीं बोलना। वैसे मैं कहूंगी काहे सिर्फ और सिर्फ रब से और सजन से, मेरा कहना तो ये है कि दिल इतना साफ रखो, अपनी जिंदगी को इतना खुला किताब रखो कि किसी से झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े, हमेशा सच बोल के ही काम निकल जाए, है ना। एक झूठ बोलने के लिए पहले हम एक झूठ बोल देते हैं, फिर उसके बाद में उस एक झूठ को हम लोग समेटने के लिए हजारों झूठ बोलते हैं। इससे अच्छा हम पहले वाला ही झूठ ना बोलें, क्यों, सही कहा ना मैंने। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, रब से सजन से झूठ नहीं बोलना हमने एंजॉय किया है। अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा जान मूवी का बढ़ते हमारी आज के लिए फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी हमारे पास में मुस्तफा जी की, और अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र की राजस्थान से। एंजॉय करेंगे ये फरमाइश, लेकिन उसके पहले अर्ज किया है डीपी देख कर दिल जो धड़का था कभी, डीपी देख कर दिल जो धड़का था कभी, ब्लॉक होने पर अकल आ गई है सभी, जिसे हम समझते थे अपनी जिंदगी का तारा, ओह माय गॉड, जिसे हम समझते थे अपनी जिंदगी का तारा, वो तो किसी और को भेज रहा था दिल वाला इशारा। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में महेंद्र की, उनको सुनना है गाना चल आना तो पान की दुकान पे। अच्छा जी, तो एंजॉय करते हैं अमित कुमार अलका याग्निक की आवाज में आज का अर्जुन का ये गाना हमारे महेंद्र की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, धर्मेश त्रिपाठी आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा। स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो।
1: सूट बूट ये इंग्लिश तानी, मेरा नाम है भीमा यानी नेम

सुपर डुपर डुपर हिट नंबर एक के बाद एक गाने ऐसे बज रहे हैं ना दोस्तों, ऐसे लग रहा है सच में ये सुपर डुपर हिट गाने आप लोगों ने साजिश और षड्यंत्र रच के बनाई है ये बहुत ही खूबसूरत सी प्लेलिस्ट ये सदाबहार नंगों की। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश जानते हैं किसकी है हमारे पास में। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन जी की आवाज विकास गोंडा से, और उनको आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना डैडी कूल कूल, डैडी कूल कूल। ओ माय गॉड, ये अतरंगी सा यूनिक सा गाना चाहत मूवी का है, सारके का गाना, अनुपम खेर का गाना। हम एंजॉय करेंगे धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पे जो कि है आवाज विकास गोंडा से। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़, आपका तहे हुए दिल से स्वागत है। और के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से आपका भी दिल से स्वागत है। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और अपने अपने फरमाइशी गीतों को भेज सकते हैं तुरंत के तुरंत चैट बॉक्स में। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास जो है वो तो सुनेंगे ही ना दोस्तों। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: वेरी कूल कूल, हमें एंजॉय किया है ये नंग मदर्स, तो बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गुंडा से, और अगली फरमाइश जानते हैं किसकी है हमारे पास में। अगली फरमाइश हमारे पास में है सौरभ मौर्य की गुड़वा घाट गुंडा से, और सौरभ मौर्य को गुड़वा घाट गुंडा से सुनना है गाना। तेनु घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, तेनु दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के। एंजॉय करते हैं अक्षय कुमार कैटरीना कैफ का ये सुपर डुपर हिट नगमा, प्रीतम और दलेर मेहंदीदा का सुपर डुपर डुपर हिट नगमा, सिंग इज किंग पिक्चर का बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और अपने आप में एनर्जी से भरा 440 वोल्ट का झटका देने वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ सौरभ की फरमाइश पर, जो की है गुड़वा घाट कोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आई रियली लव दिस सॉन्ग।
1: ओए आज खुशी का दिन है, आया निकला मुहूर्त चंगा, सूट पहन के भर गया दूल्हा।
0: ये गाना मैं डेडिकेट करती हूँ नागेश्वर धाकर को, इट्स कुमार को, और मेरे जितने भी मेल लिसनर्स हैं उन सबको डेडिकेट करती हूँ जिनके अभी तक शादी नहीं हुई है।

0: ओ चलो वो ढोल वाले बैंड बाजा लेके आ जाओ।
1: इस गाने पे जो नहीं नाचा ना डांस फ्लोर पे उसको समझ लेना म्यूजिक पसंद ही नहीं है। अब आ जाओ ना।

0: थी। ओहो, व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग। हमने एंजॉय किया है एनर्जी से भरपूर वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ सिंग इज किंग पिक्चर का, हमारे सौरभ की फरमाइश पर, जो कि है गोड़वा घाट गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से। और सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना आखिर तुम्हें आना है, और जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। लेकिन यही तो लोगों की गलत फहमी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बारिश के टाइम पे कोई ना कोई काम ऐसा ढूंढते हैं कि बारिश हो रही हो और हम निकल जाएं और हम भीग जाएं और हम बरसात का इतना बढ़िया मजा ले लें, प्रकृति का इतना बढ़िया संस्पर्श कर लें कि मजा ही आ जाए। बारिश से किसको प्यार नहीं है यार। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन उसके पहले मैं और कुछ भी कहना चाहूंगी। जितने मेरे सिंगल दोस्त हैं जिन सबको मैंने ये गाना डेडिकेट किया था, उनके लिए कुछ और भी कहना चाहूंगी कि मोहब्बत के मौसम में हम तन्हा रह गए। आय हाय, मोहब्बत के मौसम में हम तन्हा रह गए, लोग जोड़ते रहे दिल और हम मैगी पास्ता चाय उबालते रह गए। लोग जोड़ते रहे दिल और हम मैगी पास्ता चाय उबालते रह गए, ना कोई शिकायत है ना कोई मलाल है, बस पेट भरा रहे यही अपना सबसे बढ़िया हाल है। सो एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। सोनिया तिवारी, आपका स्वागत है। आई रियली लव दिस सॉन्ग, थैंक यू सो मच, मुझे ये गाना बहुत पसंद है।
1: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
2: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

में तुम्हें आना है जरा देर लगेगी। हम इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश और इस फरमाइशी गीत की उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारे आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। तो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। अगली फरमाइश हमारे पास में है शिल्पी बनर्जी जी की गोंडा से, और शिल्पी बनर्जी जी को गोंडा से सुनना है गाना लगी आज सामन की फिर वो झड़ी है और वही आग सीने में फिर जल उठी है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला बहुत ही प्यारा सा नगमा हमारी बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सुरीली सी शिल्पी जी की फरमाइश पर। मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है, पेट पूजा करके सीधे पटाख से आना विश्राम करने के लिए अपने अपने कमरे में, और अपना अपना फोन उठाना और एंटरटेनमेंट की दुनिया में फिर से फरमाइशी की महफिल में वापस आ जाना। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, लव यू सो मच शिल्पी जी।

0: अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारिसी स्वेंट स्मारक

0: यात्रा है।
1: मालदोवा की पहली राज्य की यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मालदोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू और मालदोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
2: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार

0: कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
2: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2-3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों चलिए एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की, और राजेश सिंह जी को मालवीय नगर से सुनना है गाना ये मेरा जीवन। किशोर कुमार जी की आवाज में ये सैड और मेलोडियस सॉन्ग हम एंजॉय करेंगे सिर्फ और सिर्फ मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसे ही अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। नवीन राजपूत जी एमपी से आपका स्वागत है, सविता दुबे जी आपका भी स्वागत है, और तबिश खान स्टे ट्यून्ड।

हाँ दोस्तों, तो इतनी सी फरमाइश थी हमारे पास में मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की। इंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। और दोस्तों जानते हैं क्या अगली फरमाइश है? मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से। और मोहम्मद मुशीब को बाराबंकी से सुनना है गाना तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। सो एंजॉय करते हैं सड़क का ये गाना कुमार सानू और अनुराधा जी की आवाज़ में हमारे मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

अपना बनाने की कसम खाई है। कुमार सानू और राधा की आवाज में हमने एंजॉय किया है सड़क का ये गाना। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना कहो ना प्यार है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में। मेलोडियस रोमांटिक और सुपर डुपर हिट सुनहरा सा नगमा सिर्फ और सिर्फ अजय मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। ये वही गाने हैं ना जिनको सुनते सुनते बचपन बीता है, शायद मेरा तो बीता है। आप भी चाहे तो बता सकते हैं कि आपका बचपन आखिर किन गानों के साथ में, किस प्लेलिस्ट के साथ में, किन सिंगर की आवाज में बीता है। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

है कि तुमसे प्यार है, दिल मेरा कहने को बेकरार है। हमने एंजॉय किया है ये नगमा हमारे मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर। और अगली फरमाइश जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश है धर्मेश त्रिपाठी की, और धर्मेश त्रिपाठी को सुनना है गाना आवारा दिल मेरा तुझको है ढूंढता। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सिर्फ और सिर्फ धर्मेश की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

भाई क्या है ये, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा सा नगमा दबंग 3 का सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज की अगली फरमाइश होगी हमारी आज की आखिरी फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी की, और सोनिया तिवारी को सुनना है गाना मैंने तुझसे मोहब्बत की है गुलामी नहीं की सजना। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और इसी के साथ में लेना चाहूंगी अलविदा। सो दोस्तों अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं फिर से कल आपकी अपनी फरमाइशी महफिल में, स्टे ट्यून्ड। अच्छा दोस्तों, जहां सफाई अगर आप सच मतलब क्लियर हो, और अगर वहाँ भी सफाई देने की जरूरत ना हो तब भी आपको सफाई देनी पड़े, तो क्या आप सफाई देना चाहोगे कि नहीं, ये जरूर चैट बॉक्स में लिख के बताना। मेरे को बहुत सी कंफ्यूजन हो रही है आज की डेट में, वो कंफ्यूजन थोड़ी सी क्लियर

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9 45 583 53 46।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
6: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
7: मतलब
6: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गैनस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी हाँ, और जब बाहर हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हों, क्या बात है, तो मौसम थोड़ा सा और खुशनुमा हो, बहुत प्यारा हो। और ऐसी स्थिति में अगर आपको आपका माजी याद आ जाए, आपको आपका बीता हुआ कल याद आ जाए, और वो कल अगर इत्तेफाक से खूबसूरत रहा हो वो याद आ जाए, तो ऐसी स्थिति में भाई इंसान अपनी पुरानी यादों में खोता है। और वो कहता ये भी है कि अब यहाँ पर तो मैं बात करूँगा कि कुछ लोग अपने माजी का हाल सच बता देते हैं, बताते हैं कि नहीं मेरा माजी बहुत शानदार रहा और हमसे ऐसी कोई भूल नहीं हुई, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो जिंदगी है वो हम सभी का इम्तिहान लेती है। हम सभी जिंदगी से लड़ते हैं। कहा भी गया है कि सबको लड़ना ही पड़ा अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो या हो गौतम बुद्ध। तो आपके जीवन की लड़ाई है साहब, और हमें आपको मिलकर लड़नी पड़ेगी। हमारे आपके जीवन की जंग को हमें ही लड़ना है। लेकिन जब ये माहौल बड़ा खुशनुमा सा होता है, बाहर हल्की हल्की झीसी पड़ रही हो, ड्रिजलिंग हो रही हो, तो उस ड्रिजलिंग में मौसम का आनंद दुगना हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कभी कभी ये भी होता है कि शायर कहता है कि भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, कहाँ पूछता हूँ मेरा दर्द कोई जान न ले, और ये भी डरता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आंखों में तुझे देखकर पहचान न ले। जी हाँ, एक प्यारी सी गजल सुनाते हैं आपको, और गजल के बाद आते हैं और आपको ये बताते हैं कि आज की शाम हमने किस दानिश्वर के नाम, किस शायर के नाम रखी है। वो हम सभी के बहुत करीब हैं, हम सभी ने उनकी गज़लों को, उनके नगमों को, उनके गीतों को कहीं ना कहीं सुना है। आइए आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल, और मिलते हैं आपसे इस प्यारे से संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। और आइए आज की शुरुआत करते हैं पंकज उधास की बहुत ही प्यारी सी गजल। जी हाँ, अब हम नहीं बताएंगे गजल कौन सी, ये आप खुद सुनिए और बताइए कि ये गजल आपको कैसी लगी। उनके एल्बम का नाम था महक, और महक एल्बम की पंकज उदास की आवाज़ में

जी मुझको देखा पनघट पे वो बातें करना भूल गई। पंकज उदास की आवाज में बहुत ही प्यारी सी गजल सुनी आपने। और आज के बहुत साल पहले राम सहाय श्रीवास्तव, जिन्हें हम फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत पहले से ही इन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से ही इन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। ऐसा होता है कि कोई दूर होकर भी बहुत पास होता है, और ऐसा भी होता है कि कोई पास होकर भी बहुत दूर होता है। आज जिस शायर की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने इल्म से लेकर फिल्म तक का सफर तय किया, मुशायरों की दुनिया से लेकर फिल्म की दुनिया तक का सफर तय करना एक शायर के लिए शायद बहुत आसान काम नहीं होता। और इतना ही नहीं, एक फिल्म आई मुल्क, जिसके संवाद भी उन्होंने लिखे, बहुत प्यारी फिल्म है, कभी मौका मिलेगा तो देखिएगा। और उनका नाम है शकील आजमी, एक ऐसा नाम जो गजलों की दुनिया का युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर किसे कहते हैं, मतलब युद्धे इति स्थिरा, वो युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर हो वो युधिष्ठिर है। मतलब खुशियाँ आती हैं, गम आते हैं, जीत होती है, हार होती है, सुख आता है, दुख आता है, इन सभी स्थितियों में जो एक जैसा है, जीवन एक संग्राम है। अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने जब रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ा तो अपनी प्रसिद्ध पोम प्रास्पिके में उन्होंने लिखा, फियर डेथ टू फील फॉग इन माई थ्रोट, हाँ मौत से डरना, नहीं नहीं नहीं नहीं, उसने कहा कि आई वॉज एवर ए फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। जो वास्तव में सच्चा लड़ाका होता है ना, योद्धा होता है, वो जिंदगी से इतनी जल्दी हार नहीं मानता। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, और ये जीवन एक युद्ध ही है। गीत भी सुना होगा आपने, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। जी हाँ, इसी प्रकार से यहां पर भी आप लोग हैं भाई, और क्या बात है, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आइए आपसे भी रूबरू होते हैं, बावस्ता होते हैं, और इसके बाद चलते हैं शकील आजमी साहब की तरफ। नवीन राजपूत जी हैं हमारे साथ भाई एमपी से, मनु जी राधे राधे, जी हाँ आपको भी राधे राधे। अनोखी शर्मा जी हैं, गुड इवनिंग सर, शुभ संध्या आपको भी। और बेझिझक मुस्कुराए, जो भी गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और धर्मेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं भाई, जी हाँ बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, और जी हाँ नाइस पंक्तियाँ, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद सर, और क्या बात है, जी जी धन्यवाद। और सविता शास्त्री जी चरण स्पर्श करते हैं आपको, बाहुबली जी आ चुके हैं अर्थात प्रबल जी हैं, शुभ संध्या सर जी, राधे राधे, जी हाँ आपको भी राधे राधे। और नाइस सॉन्ग, क्या बात है, चुपके चुपके सखियों से, वो किसी के दिल से उतर कर आया हूँ मैं, अपने मुकद्दर से हार आया हूँ, तुम पूछते हो मोहब्बत में क्या हुआ हासिल, जो था मेरे पास

उन्होंने कहा था मोहब्बत बनियों के बस की बात नहीं है, अर्थात जो ये सोचता हो कि हमने क्या दिया और इसके बदले क्या मिला, उसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, वो उसके बस की बात नहीं है। जी नागेश्वर लिखते हैं महाभारत में जो युधिष्ठिर था फिर वो कौन था? जी बिल्कुल वही युद्धे इतिष्ठिरा, वही युधिष्ठिर वही तो है। आपने कभी उनको झूठ बोलते हुए नहीं देखा होगा, उन्होंने तब भी नहीं झूठ बोला जब प्राण संकट में थे। अस्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने नागेश्वर जी, बिल्कुल सही। और वैसे मैं आपको बताऊं कि युधिष्ठिर जो है वो साक्षात यमराज के अवतार थे, अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, आपने पूछ लिया तो हमने बता दिया। शकील आजमी जी कहते हैं कि पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या, पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या। इंसान आजकल के दौर में साहब फिल्टर्ड हो गया है,

आप किसी को देखते होंगे, किसी का स्टेटस, किसी की डीपी, चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल, वो 24 घंटे में उसकी ज़िंदगी के एक मिनट के कुछ सेकंड की तस्वीर है। हमको लगता है वो खुश है। और पंक्ति मुझको याद आ गई, सुनाता हूँ आपको कि मतलब वास्तव में खुश होना या दुखी होना ये किनके बस की बात है, या इस काम को कौन से लोग कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं, और जी बिल्कुल नहीं पता था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, तो मुसीबत में अकेला है तो हैरत कैसी, तो मुसीबत में अकेला है तो हैरत कैसी, हर कोई डूबती कश्ती से उतर जाता है। जी हाँ, डूबती कश्ती में आपका साथ देने वाले लोग बहुत बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। और खुशनसीब हैं वो लोग जिनके पास ऐसे लोग हैं भाई, जिनका साथ उनको मिल जाता है इस स्थिति पर भी। और परिस्थितियां निर्भर करती हैं कि आप क्या हैं। एक और एक मिलकर दो हो जाएं तो ये गणित है, एक और एक मिलकर 11 हो जाएं तो ये संगठन है, एक और एक मिलकर एक ही रहें तो ये प्यार है, एक और एक मिलकर शून्य हो जाएं तो ये अध्यात्म है, एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए तो ये कूटनीति है, और एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो ये राजनीति है। आप बताइए, आपको एक और एक कौन वाला अच्छा लगा, गणित वाला, संगठन वाला, प्यार वाला, अध्यात्म वाला, कूटनीति वाला, या राजनीति वाला। जी हाँ, कुछ ना कुछ तो अच्छा लगेगा कि हाँ, एक और एक अगर हम होते और ऐसे होते तो कैसा होता। तो लिखा, जो कोई भी ये कहता है कि मजे में है, तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, जो कह रहा है कि मजे में है, जिसका ये ऐलान है कि वो मजे में है, या तो फकीर है या फिर नशे में है। इस दुनिया के दो ही लोग बोल सकते हैं कि मजे में है, दिल से, दिल से, बाहर तौर पर तो सब लोग बोलते हैं। इस दुनिया का सबसे सरल सवाल, कैसे हैं आप, और इस दुनिया का सबसे कठिन जवाब, अच्छा हूं मैं। पहन के झूठी हंसी महफिलों में जाना क्या, शकील आदमी साहब, उदास हैं तो उदासी में मुस्कुराना क्या, शराब छोड़ दी, सिगरेट भी तोड़ दी हमने।

0: शराब छोड़ दी, सिगरेट भी तोड़ दी हमने, तुम्हारे वास्ते अब छोड़ दे जमाना क्या। वो चाहे आंसू का कतरा हो या कोई चेहरा, वो चाहे आंसू का कतरा हो या कोई चेहरा, जो गिर गया है पलक से उसे उठाना क्या। किनारे वाले तो मिलते बिछड़ते रहते हैं, किनारे वाले तो मिलते बिछड़ते रहते हैं, अब इनके वास्ते दरिया पे पुल बनाना क्या। और अंतिम की दो पंक्तियां आप अपने साथ ले जाइएगा, आपकी जिंदगी में काम आएंगी, कि गले लगाने से पहले ये काम करना था। आप किसी को अपना बनाइए तो पहले जांच पड़ताल कर लीजिए कैसा है। गले लगाने से पहले ये काम करना था, अरे बना लिया उसे अपना तो आजमाना क्या। किसी को अपना बनाने के बाद आजमाना ये शायद नहीं सही है। आप आजमाने के बाद अपना बनाइए, वो एक अच्छा विकल्प है। जी हाँ, हमारे साथ मुस्तफ़ा जी जुड़ चुके हैं सऊदी से। और जी, अब चलिए आपको ले चलते हैं फिर गज़लों की दुनिया में। और आइए, अब की बार जो गज़ल आप सुनेंगे उसमें आपको दो आवाज़ सुनाई देगी। आप ज़रा बताइए कि ये दोनों आवाज़ किसकी है। जी हाँ, आवाज़ दो हैं और गज़ल एक है। आप ज़रा गेस कीजिए कि आवाज़ किसकी है। फ़िलहाल आप हमारे बहुत ही प्यारे और जानकार श्रोता हैं तो बिल्कुल बताएंगे, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।
1: कुछ बातें अनकही रह जाए तो बेहतर है। नैनी,

जी हाँ, एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे, और इसके पश्चात मखमली आवाज के मालिक जगदीश सिंह साहब की आवाज में आपने गजल सुनी। हमने आपसे प्रश्न किया था कि भाई जरा कविता, जरा इस गीतकार को पहचानिए, आवाज दी है सविता जी ने। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना है, महेंद्र कपूर के साथ भूपेंद्र सिंह है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बात करने की जिद उसी से करो जो आपसे बात करके खुश हो, उनसे नहीं जो आपसे परेशान हो। क्या बात। और बात पर मुझे याद आया कि बातों बातों में जहां बात बिगड़ जाती है, बातों बातों में जहां बात बिगड़ जाती है, फिर बनाओ भी तो वो बात कहां आती है। एक एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। और बात ये भी करेंगे हम कि बात करने की तीन शर्तें होती हैं। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, बात कौन सी है, कहाँ कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो बात कौन सी है, और वास्तव में दूसरों के साथ बात करना और उस बात को अपने ऊपर कायम कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, दो अलग अलग चीजें हैं साहब। हमने जो देखा, एक गांव में एक किसान की बकरी मर गई, तो एक सज्जन आए, उन्होंने कहा ये नश्वर दुनिया है, क्यों रोते हो, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। इतना नहीं समझ में आया, ठीक है जो ऊपर वाले को मंजूर है वो हो गया। किसान ने चुपचाप उनकी बात सुनी और कहा ठीक है। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद जिन्होंने ये बात बोली थी उनका बैल मर गया, अब वो रोने लगे दहाड़े मार मार कर कि अब कैसे खेत बोऊंगा। तो किसान उनके पास पहुंचा, उसने कहा कि अरे भैया, आप हमको समझा रहे थे कि बकरी मर गई क्यों रो रहे हो, जो आया है वो जाएगा, आज आपका बैल मर गया आप क्यों रो रहे हो। तो उसने उत्तर दिया, अरे पागल, वो बकरी तेरी थी, ये बैल मेरा है। मतलब पद उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन वो काम स्वयं करना शायद बड़ा मुश्किल होता है। कथनी और करनी में एक अक्षर का फर्क है, था और रा का, लेकिन जमीन और आसमान का अंतर है। धरातल पर अगर आपसे करके देखिए, तो हमारे साथ भाई कृष्णा पंडित जी हैं। हेलो जी, हाँ हेलो, कैसे हैं आप। और मुझे वही समझ सकता है जिसके पास मैं जैसा दिलो जी। भाई ताबिश खान जी हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग, आदाब करते हैं आपको, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और आइए, शकील आजमी लिखते हैं, शाम होने को है घर जाते हैं, शाम होने को है घर जाते हैं, अब बुलंदी से उतर जाते हैं, जिंदगी सामने मत आया कर, जिंदगी सामने मत आया कर, हम तुझे देख के डर जाते हैं, ख्वाब क्या देखें थके हारे लोग, ख्वाब क्या देखें थके हारे लोग, ऐसे सोते हैं कि मर जाते हैं, फूल भी रहता नहीं टहनी पर, सुबह फूल खिलता है शाम तक बिखर जाता है, फूल भी रहता नहीं टहनी पर, शाम तक हम भी बिखर जाते हैं, एक दिन
लड़ते हुए दुनिया से। एक दिन लड़ते हुए दुनिया से लोग दुनिया से गुजर जाते हैं। काहे की लड़ाई भाई, दुनिया से लड़ते लड़ते दुनिया से गुजर जाना है, फिर काहे का। मोहब्बत से जिंदगी जी लो भाई मेरे। एक दिन लड़ते हुए दुनिया से लोग दुनिया से गुजर जाते हैं। अब न वो गली है उसकी, अब ना वो है न गली है उसकी, क्या बताएं कि किधर जाते हैं। बंद हैं या खुली है वो खिड़की, मोहब्बत देखिएगा, बंद है या खुली है वो खिड़की, अब बिना देखे गुजर जाते हैं। रात मरहम लिए आती है शकील और हम जख्म से भर जाते हैं। क्या बात है भाई, शकील आजमी जी ने क्या खूब पंक्तियां कही। ख्वाब क्या देखें थके हारे हुए लोग। ऐसे सोते हैं कि मर जाते हैं। मनोहर राणा ने कभी कहा था कि सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जी हाँ, ऐसा तो नागेश्वर जी कहते हैं, सही बात है सर जी जी, जिसकी उंगली कटती है खून उसी का निकलता है, दर्द उसी को होता है। अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते इसी को कहते हैं ओनली वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस, पहनने वाला ही जानता है कि जूता कहाँ काटता है। जी अनिल शास्त्री जी चरण स्पर्श करते हैं आपको, और कैसे हैं आप। धर्मेश त्रिपाठी जी हैं, सर का दिल टूटा है कभी लगता है, क्या बात।

भाई बहुत अच्छी बात कही आपने कि दिल टूटा है, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप हमारे छोटे भाई जैसे हैं, और जब भी इस दुनिया की कोई चीज़ टूटती है ना तो उससे एनर्जी निकलती है। अब उस एनर्जी को कोई क्षण टूटी, कोई भी चीज़ टूट तोड़ कर देखे तो उससे एनर्जी निकलती है, विज्ञान का नियम है। अब वो एनर्जी आप पॉजिटिव वे में लेकर जा रहे हैं या निगेटिव वे में लेकर जा रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे ओवन बना रहे हैं या परमाणु बम बना रहे हैं। एनर्जी तो टूटेगी साहब, तो दिल जब टूटता है तो इंसान की आंखों से आंसू आते हैं। बहुत सही बात कही आपने, और दर्द होता है। दर्द अगर आंखों से निकल जाए तो इंसान कायर कहलाता है, और अगर लफ्जों से निकल जाए तो शायर कहलाता है। मैंने तो खुद कहा कभी कि जिसकी न लुटी दुनिया और जिसका दिल न जला, वो प्रीत करेगा क्या, वो गीत लिखेगा क्या। तो कुछ टूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी तभी निकलेगी जब कुछ टूटेगा। अगर आप साइंस की स्ट्रीम से हैं तो आपको अरे नाइस रिप्लाई सर, एकदम सही बात बोले हैं सर, लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, रिप्लाई नहीं दिया है, आप छोटे भाई हैं तो थोड़ा सा जो अनुभव मेरे पास है, आपने कहा कि टूटा है तो मतलब उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सत्य को स्वीकार कर लेना परंपरा है और स्वीकार कर लेना चाहिए। और मेरा अपना मानना यह है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस नहीं किया उसने ज़िंदगी का एक सुनहरा अध्याय खो दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि जिसने अपने ज़िंदगी में हॉस्टल की लाइफ नहीं जी उसने एक सुनहरा अध्याय खोया। मैं ये मानता हूँ कि जिसने हार्ट, दिल का टूटना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर फिल्म देखी होगी मुझे, जिसमें गाना है चन्ना मेरे या मेरे या, तो उसमें अनुष्का शर्मा कहती है कि यहाँ कुछ है लेकिन वो अभी टूटा नहीं है, जिस दिन टूट जाएगा उस दिन मधुर आवाज़ निकलेगी, इसे टूटने दो। जी हाँ, दर्द कितना खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं, और दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को भूल जाते हैं। जी इसलिए तो कबीर ने कहा कि सुख के माथे सिल परे नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। तुमने कहा सुख चला जाए, दुख आता है तो उनका सुमिरन ज्यादा होता है। देखिए देखने का तरीका है, अभी मैं देख रहा था, जहां पर ईगो है, आई है, वहां पे कष्ट है, क्योंकि वहां पे पाप है। SIN, सिन माने पाप। I stands for ईगो, मैं मतलब घमंड, अहंकार। जहां पर घमंड है, अहंकार है, वहां पे पाप होगा, पक्की बात है। किसी भी घमंडी व्यक्ति को आप देखिए तो वो पाप करता हुआ मिलेगा आपको, सिन करता हुआ, क्योंकि वो ईगो को आगे रखता है। और जिंदगी अच्छी जीनी है तो कुछ नहीं करना है, आई की जगह यू लगा देना है, SUN। यू माने आप, सब कुछ आपका है, ऊपर वाले का है, हमारा क्या है, सभी जानते हैं कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। तो अगर आप ईगो को इम्पोर्टेंस देते हैं तो आप सिन करते हैं, और अगर आप अल्लाह को इम्पोर्टेंस देते हैं, ईश्वर को इम्पोर्टेंस देते हैं, परवरदिगार को इम्पोर्टेंस देते हैं कि यू आप ही सब कुछ हैं, तो आपके अंदर सूर्य के जैसी चमक होती है और ज्ञान होता है। सिन और सन में केवल आई और यू का फर्क है। अब आप ये सोचिए, हम आप मिलकर सोचें कि हम सिन की तरफ जाना चाहेंगे या सन की तरफ। ये तो अपना अपना नजरिया है साहब। यहाँ इट्स कुमार जी आए हैं भाई, बहुत ही प्यारे हमारे श्रोता, बहुत ही ज्ञानवान। इट्स कुमार जी, जी हाँ, हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे।
ये एनर्जी हमने महसूस किया है सर जी, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, जीने का तरीका बदल देती है। क्या बात है भाई प्रबल जी, बहुत अच्छा लगा। नज़र नज़र की बात है साहिब, मम्मी देख लेती हैं तो खाना लेकर दौड़ती हैं और पापा देख लेते हैं तो पनही लेकर दौड़ते हैं, क्या बात है। और मुस्तफ़ा जी हैं अटलापो से, हेलो जी। हाँ सर, झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जी हाँ, अनोखी शर्मा जी कहती हैं हम फिर से आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से आने का। और जी बिल्कुल बिल्कुल, और आजकल सर झुकाओगे तो लोग सर काट लेते हैं। जी बिल्कुल, सही बात कही आपने, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि वो मेरे चेहरे पर अपनी नफ़रतें लाया तो था, वो मेरे चेहरे तक अपनी नफ़रतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। मोहब्बत के आगे न किसी की चली है न चलेगी, ये वो ज़ुबान है जो हर सवाल का जवाब है। जी हाँ बिल्कुल, ईगो नहीं आदत है मेरी, अहमियत न मिलने पर पसंदीदा चीज़ भी ठुकरा देता हूँ सर जी। बिल्कुल सही बात है भाई, स्वाभिमान ज़रूरी है। सचिन जी मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। इंजीनियर अक्षय सिंह जी को बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ। कमल नयन जी आ चुके हैं भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या जी। बात गज़लों की चले और लता जी की गज़ल ना हो तो लगता है कुछ अधूरापन है। आइए इस अधूरेपन को भरते हैं और आपको सुनाते हैं लता जी की एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल।

0: जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता चुकी हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में ठीक 9:30 बजे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।
1: गोंडा शहर की धड़कन, मैं हूं आरजे तनु। आज एक बार फिर हूं आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी जीवन संगिनी। श्वेता प्लीज मुझे कुछ वक्त और दो, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा और मैं होते ही तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा। मगर मैं अब और वेट नहीं कर सकती रोहन। संदीप एक वेल सेटल्ड डॉक्टर है और मेरे पेरेंट्स को पसंद है। पापा मम्मी से अब मैं इस शादी को कैंसिल करने के लिए नहीं कह पाऊंगी। संदीप और उसके पेरेंट्स मुझसे मिल चुके हैं और दोनों तरफ के लोग तैयार हैं। उसके बाद ही यह शादी तय हुई है, अब इसे रोका नहीं जा सकता रोहन। रुक जाओ श्वेता प्लीज मेरी खातिर। पहली बार उसने रोहन की आंखों में आंसू देखे थे। उसके भीतर अब उन आंसुओं का सामना करने की ताकत नहीं थी और वो वहां से अपने अगले सफर की ओर बढ़ गई। 1 महीने बाद डॉक्टर संदीप संग फेरे लेकर एक छोटे से घर की लड़की कई नौकरों चाकरों वाले बंगले में आ गई। आर्थिक संपन्नता का खुला आकाश मन को एक साथ ढेरों पंख लगा देता है और इंसान उन पंखों को फैलाकर उड़ते वक्त ये भूल जाता है कि जिंदगी जीने के लिए ठोस धरातल का भी अपना महत्व है। जब तक इस अनिवार्यता का उसे भान होता है तब तक वो वक्त काफी पीछे खिसक चुका होता है। और अगर कभी जिंदगी मेहरबान होकर कोई चांस दे भी दे तो हवा भरे अतीत पर टिका वर्तमान वाला रिश्ता इस मानवीय जिंदगी को जी पाने के लिए एक बहाने के प्रयोग सा बनकर रह जाता है। श्वेता ने भी शुरुआती दिनों में पंख फैलाकर खूब उड़ान भरी। 20 दिनों का हनीमून और उसके बाद का कुछ महीनों का सफर ख्वाबों के पूरा होते यथार्थ के मखमली गद्दे पर बीता। किसी राजमहल की रानी सी श्वेता कई नौकरों चाकरों सास ससुर और हस्बैंड डॉक्टर पति के साथ जीवन के मजे ले रही थी। समय के साथ खुशियों के खुमार को भी यथार्थ के धरातल का सामना करना ही पड़ता है। संदीप अपने क्लिनिक में व्यस्त रहने लगे। समय समय पर असिस्टेंट के भरोसे क्लिनिक छोड़कर कई कई दिनों के लिए उन्हें शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। ऐसे वक्त में श्वेता बेहद अकेलापन महसूस करने लगी थी। शहर में रहते हुए भी संदीप व्यस्त ही रहा करते थे। श्वेता का दिन कैसे बीता इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। उसके दिन भारी मानसिक तनाव में बीतने लगे थे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है जीवन संगिनी। अब तक आपने सुना श्वेता और रोहन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर से शादी करने के मोह में श्वेता ने रोहन को छोड़ दिया। रोहन मिन्नतें करता रह गया, पर श्वेता आगे बढ़ गई। शादी के बाद कुछ दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जल्दी ही उसका पति अपने काम में व्यस्त रहने लगा और श्वेता का दिन घर में बोरियत और मनहूसियत से भरा हुआ होने लगा। अब उसे अपनी इस जिंदगी से मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन कर भी क्या सकती थी। अब वो इसी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर थी। जिंदगी जैसे चला रही थी वो वैसे ही चलती जा रही थी। अब आगे सोने के बंद पिंजड़े में कैद पक्षी की भी खुले आकाश में उड़ने की इच्छा खत्म नहीं हो पाती। ये तो एक इंसान का मन था, एक औरत का मन, जो अपनी जिंदगी के काफी पल अपने उस प्रेमी के भावों संग जी चुकी थी, जो उसकी एक चाहत पर मैचिंग दुपट्टे तक के लिए अपना सारा काम छोड़कर खुशी खुशी कई कई दुकानों के चक्कर लगाया करता था। दूसरी तरफ उसे हर ऐशो आराम देने वाला पति था, जिसकी मर्जी के बिना श्वेता की जिंदगी का एक पत्ता तक नहीं हिलता था। इसी यथार्थ वाली पटरी पर श्वेता की जिंदगी की गाड़ी खिसकती जा रही थी, आगे भी इसी तरह सरकती हुई बढ़ती रहती। अगर उस शाम सासू जी ने घर आए मेहमान दंपति से मिलवाने के लिए उसे बुलाने के लिए नौकर को उसके कमरे में नहीं भेजा होता। सीढ़ियों से उतरते वक्त जैसे ही श्वेता की नजर मेहमान पर पड़ी, उसी पल चौंकने की स्थिति में वो सीढ़ियों के आखिरी स्टेप पर पैर रखना चूक गई और गिरती हुई श्वेता को बेहद फुर्ती से उठकर उस मेहमान ने संभाल लिया। भाभी जी जरा संभल कर, आपको मोच आ गई तो मेरे भैया और मौसा मौसी जी को भी तकलीफ होगी, अपना ख्याल रखिए। मुस्कुराते हुए वो अपनी जगह जाकर बैठ गया। बहू, ये रोहन है, मेरी बहन का बेटा। संदीप की शादी में नहीं आ पाया था, कुछ महीने पहले ही इसने अपने साथ जॉब कर रही इस प्यारी सी जूही से शादी की है। अब इसका यहीं फरीदाबाद में ट्रांसफर हुआ है, इसी बहाने अब रोहन कुछ वक्त हमारे लिए भी समय निकाला करेगा। क्यों जूही बहू, आने तो दोगी ना हमारे रोहन को हमसे मिलने? जूही की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए दमयंती जी ने कहा, क्यों नहीं मौसी जी, बड़ों का सानिध्य तो छोटों के लिए आशीर्वाद होता है। आप कहें तो मैं रोज रोहन को लेकर आप लोगों से मिलने के लिए आ जाया करूंगी। कहते हुए जूही दमयंती के गले लग गई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है जीवन संगिनी। अब तक आपने सुना, रोहन और श्वेता एक दूसरे से प्यार करते थे। रोहन श्वेता से कह रहा था कि वो उसे कुछ समय दे ताकि वो सेटल होकर उससे शादी कर सके, लेकिन एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर से शादी करने के मोह में श्वेता ने रोहन को छोड़ दिया। कुछ दिनों तक तो उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी। उसका पति अपने काम में व्यस्त रहने लगा और वो सोने के पिंजरे में बंद एक पंछी जैसी हो गई। और फिर एक दिन रोहन अपनी पत्नी के साथ उसके घर आया। वो उसके ससुराल वालों का ही कोई रिश्तेदार था। उसे देखकर श्वेता के मन में अजीब सी हलचल मच गई। अब आगे जूही के इतनी जल्दी मिक्सअप होने के हुनर पर श्वेता को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो आज तक अपनी सास से इस कदर बेतकल्लुफ नहीं हो पाई थी। जबकि दमयंती जी बेशक एक अच्छी सास कही जा सकती थी। रात का खाना खाकर रोहन और जूही अपने घर चले गए, लेकिन जाते जाते श्वेता की ऊपर से शांत दिख रही जिंदगी में एक बड़ा सा पत्थर मार गए। उस रात श्वेता की सोच पर रोहन छा चुका था। सीढ़ियों से फिसलते वक्त रोहन का उसे थाम लेना उन पुराने भावों को पुनर्जीवित करने के लिए काफी था। एक रात का ये सिलसिला कई रातों के साथ अपना याराना बढ़ाते हुए श्वेता की जिंदगी पर अपना वर्चस्व कायम करता जा रहा था। कुछ समय बाद पता चला कि जूही अपने भाई की शादी में 10 दिनों के लिए लुधियाना जा रही है, और इतने दिनों की छुट्टी नहीं मिलने की वजह से रोहन शादी के दिन ही वहां पहुंचेगा। रोहन, इस बीच तुम यहीं आकर खाना खा लिया करना, ये दमयंती जी का फरमान था। नहीं मौसी, मेरा लंच ऑफिस कैंटीन में होगा, और डिनर के लिए जूही मेड को बोल कर जा रही है, वो शाम को डिनर तैयार करके चली जाएगी। वैसे भी दिन भर का थका हारा आने पर यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी। एक संडे मिलेगा, उस दिन मेड को भी छुट्टी देकर खुद अपनी पसंद का खाना बनाऊंगा, रोहन ने मुस्कुरा कर कहा। समय का अनवरत चलना उसकी नियति है। वो संडे भी आया, जब डोरबेल की आवाज पर रोहन ने दरवाजा खोला। 11 बज रहे हैं और तुम अभी तक सोए हो, चलो जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, तुम्हारे लिए आज खाना मैं बनाऊंगी, तुम्हारी पसंद की हर चीज। दरवाजा खोलते ही श्वेता ने रोहन के हाथों को पकड़ते हुए बड़े प्यार से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप भाभी जी? आप मेरे बड़े भाई की वाइफ हैं, एक संभ्रांत खानदान की प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण पिलर हैं आप, उसे मटिया मेट करने की कोशिश मत कीजिए, रोहन बोला।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है जीवन संगिनी। अब तक आपने सुना वो रोहन जिसे श्वेता ने कभी एक रईस सेटल्ड डॉक्टर के साथ शादी करने के लिए छोड़ दिया था, फिर से एक बार उसके सामने आ गया। अब तक श्वेता बड़े घर की बहू के मोह जाल से भंग होकर धरातल पर आ चुकी थी और फिर एक दिन मौका पाकर वो रोहन के घर उससे मिलने पहुंच गई। लेकिन रोहन ने उसे रोकते हुए कहा कि वो खुद पर काबू रखे, क्योंकि वो अब एक प्रतिष्ठित घर की बहू है। अब आगे। रोहन, श्वेता की आवाज में एक टी

रिश्ता सा दर्द था। भले ही आज मैं तुम्हारी भाभी हूँ, पर इससे हमारी वो फीलिंग्स खत्म तो नहीं हो जाती जो हमने साथ में जी थी, श्वेता बोली। उस वक्त आपकी इस फीलिंग का क्या हुआ था जब आप मेरी गुहार को लात मारते हुए आगे बढ़ गई थी, रोहन बोला। अब भूल जाओ ना उन बातों को तुम, सदा जूही के ही बनकर रहना, लेकिन इस तरह अपमानित तो मत करो मुझे, श्वेता बोली। मैं आपको अपमानित नहीं कर रहा, आपकी वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ कि आप एक ब्याहता हैं और एक शादीशुदा मर्द के साथ अकेले उसके घर में मौजूद हैं, ये जानते हुए कि उसकी पत्नी अभी घर में नहीं है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप घर से क्या झूठ बोलकर आई हैं, क्या बहाने बनाकर निकली हैं आप अपने घर से, रोहन ने कहा। रोहन, हम एक अच्छे दोस्त बनकर तो रह सकते हैं ना, श्वेता बोली। नहीं, अब मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा। जो महिला एक कमाऊ पति के लालच में अपने प्रेमी को छोड़ सकती है, जो अपने ससुराल में बिना बताए अपने प्रेमी से मिलने जा सकती है, उसकी पत्नी की गैरहाजिरी में, मैं ऐसी औरत पर विश्वास नहीं कर सकता, रोहन ने तीखे लहजे में कहा। रोहन प्लीज चुप हो जाओ, इस तरह के शब्दों के नश्तर मत चुभाओ और ये आप कहना बंद करो, श्वेता ने लगभग चीखते हुए कहा। सच इतना ही कड़वा लग रहा है तो आप इसी वक्त यहां से चली जाइए, शायद आपको समझ नहीं आए। इसके बावजूद आपको बता दूं कि मेरे लिए शादी एक परंपरा से इतर और भी बहुत कुछ है, जो दो इंसान के साथ साथ दो परिवारों को भी ऐसे प्रेमिल धागे में बांधती है जिसके भाव से लबरेज होकर हम इंसान अगले 7 जन्मों के लिए उसी जीवन साथी को पाने की बातें करने लगते हैं। विश्वास पर टिके इस रिश्ते को भावना और कर्तव्य नामक मोतियों से गूथा जाता है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है जीवन संगिनी। अब तक आपने सुना, एक रईस आदमी से शादी करने के बाद शुरुआत में तो श्वेता हवा में उड़ती रही, पर जल्दी ही वापस धरातल पर आ गई और उसे ये पता चल गया कि वो जैसे एक सोने के पिंजरे में बंद पंछी जैसी हो गई है। और फिर एक दिन उसका पुराना प्यार उसके सामने आ गया। वो खुद पर काबू नहीं कर सकी और एक दिन अकेले में रोहन से मिलने उसके घर पहुंच गई। लेकिन रोहन ने उसे तुरंत संभलने का आदेश दे दिया और उसको शादी के महत्व के बारे में अच्छी खासी सुनाई। उससे ये भी कहा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित घर की बहू है और इस रिश्ते की मर्यादा है जिसे हर किसी को निभाना चाहिए। अब आगे, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दिल से ज्यादा दिमाग की सुननी चाहिए। कानूनी मान्यता मिले इस रिश्ते में दुख और सुख दोनों का सामना मिलकर करने से जिंदगी कैसे गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। और इस समय में अब जूही मेरी हमकदम है, आप नहीं, रोहन ने साफ शब्दों में कह दिया। श्वेता रोहन की बातें सुनते हुए अपमानित सी होकर पत्थर की बुत सी बन चुकी थी। रोहन ने आगे कहना शुरू किया, मैंने शादी के पहले ही जूही को अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बता दिया था और सब कुछ जानने के बाद भी उसने शादी के लिए हामी भरी थी। मुझे नहीं लगता कि तुमने संदीप भैया को अपने पूर्व संबंध की बात बताई होगी। अपने मन के चोर को पुरुष मानसिकता द्वारा नहीं स्वीकार किए जाने वाले खोखले तर्क से ढकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि सच की बुनियाद पर खड़े रिश्ते तुलनात्मक रूप से बेहद मजबूत होते हैं। पर तुम तो डॉक्टर संदीप से शादी करना चाहती थी और तुम अपने पूर्व प्रेमी की बात बताकर इस रिश्ते को खोने का खतरा मोल लेने वालों में से नहीं हो। इतना तो मैं तुम्हें समझता ही हूं। और हाँ, अब एक आखिरी बात, मैंने और जूही दोनों ने एक दूसरे के पूर्व प्यार को जानते हुए इस रिश्ते को स्वीकार किया है और इसमें अब किसी तीसरे का प्रवेश वर्जित है। क्या अब भी तुम्हें कुछ कहना है? नहीं रोहन, अब मुझे कुछ नहीं कहना। तुम दोनों एक दूसरे के साथ भरपूर जियो, बस यही कहना है, श्वेता ने कहा। और डबडबाई हुई आंखों से श्वेता अपने उस प्रेम को अंतिम विदाई देते हुए अपमान के इस ताप को जज्ब किए एक संबंध को खत्म करने की कोशिश में दरवाजे से बाहर तो निकल गई, परंतु क्या सच में किसी संबंध को खत्म कर पाना इतना आसान हो पाता है? श्वेता के दरवाजे से निकलते ही रोहन ने अपनी डबडबा चुकी आंखें पोछी और सोफे पर निढाल सा पसर कर बुदबुदाया, काश तुमने उस वक्त अपनी राहें नहीं बदली होती। कहते हुए रोहन दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर फूट फूट कर रो पड़ा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी जीवन संगिनी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अनगिनत ख्वाब थे, हर मुस्कान में जैसे हजारों जवाब थे। पर्दे पर आई तो चांद भी शर्मा गया, मधुबाला नाम ही सिनेमा का खूबसूरत गुलाब थी। संघर्ष की राह पर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर किरदार में अपनी आत्मा पूरी उतारी। दर्द दिल में था मगर चेहरे पर मुस्कान रहती थी, यही उनकी सबसे बड़ी और सच्ची अदाकारी थी।
2: प्रेम मिला, बिछड़ना भी मिला, फिर भी कभी शिकायत न की। जिंदगी ने जितनी परीक्षाएं ली उतनी ही शिद्दत से जी। कम उम्र में दुनिया छोड़ गई पर अमर हो गई, हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह हमेशा के लिए बना गई। मधुबाला हमें सिखाती है कि सुंदरता केवल चेहरे में नहीं होती, सच्ची पहचान इंसान के कर्मों और मुस्कान में होती है। वो आज भी हर दिल में एक चमकता सितारा है, भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत और अमर धरोहर है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: आज लेकर के आ रहे हैं उस सिनेमा की खूबसूरत धरोहर के बारे में, जो कि आज भी हमारे दिलों में सिर्फ एक प्यार भरा जब नाम आता है तो प्यारी सी गुदगुदाहट सी होने लगती है। वो प्यारा सा नाम मधुबाला। मधुबाला के नाम से ही हमारे सामने हमारी एक बहुत ही प्यारी सी प्रकृति सामने आती है, एक खूबसूरत सी प्रकृति, एक खूबसूरत सा चेहरा, एक खूबसूरत सी आवाज़, एक खूबसूरत सी अदाकारा। तो आइए चलते हैं आज की सफ़र में, हम इसी खूबसूरत सफ़र को लेकर के साथ में उनकी कई चीज़ों को, उनके कई बातों को आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी महकती यादों के बारे में। तो आज का सफ़र होने वाला है भूले बिसरे गीत में मधुबाला को लेकर के। तो आइए पहला गाना सुनते हैं एक प्यारे से गीत को।

0: मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने लगभग 22 वर्षों के फिल्मी करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की अमर अभिनेत्री माना जाता है।
1: मधुबाला का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। उनके पिता की नौकरी छूटने के बाद पूरा परिवार मुंबई आ गया। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। बाल कलाकार के रूप में उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म बसंत, जो कि 1942 में थी। बाद में निर्देशक किरदास शर्मा ने उन्हें नीलकमल 1947 में पहली बार मुख्य अभिनेत्री में अवसर दिया। तो आइए उन्हीं के फिल्म बसंत से एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: 1954 में आई फिल्म महल ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और मधुबाला की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दी। इन फिल्मों में उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ऐतिहासिक और गंभीर हर प्रकार की भूमिका निभाई।
1: मधुबाला केवल अपने अद्भुत सुंदरता के लिए ही नहीं जानी जाती थी, असल में उनका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर था। बल्कि अपने विनम्र स्वभाव, मधुर मुस्कान और सरल व्यवहार के लिए भी प्रसिद्ध थीं। उन्हें अक्सर भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता था। वे समय की पाबंद, मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थीं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाई। वो कहा जाता है ना कि सूरत से सुंदर सीरत होनी चाहिए, और मधुबाला की सीरत उनके व्यक्तित्व का दर्पण थी। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो कि मधुबाला के दर्पण में उनकी प्यारी सी छवि को दिखाता है।

हमारे भारतीय सिनेमा में प्रेम कहानियों का भी अपना ही दौर है। ऐसी एक प्रेम कहानी थी मधुबाला और दिलीप कुमार जी की, बहुत ही चर्चित। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मतभेदों और परिस्थितियों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। बाद में उन्होंने 1960 से 61 के आसपास किशोर कुमार से विवाह कर लिया। तो आइए चलिए सुनते हैं मधुबाला जी का एक प्यारा संगीत।

मधुबाला का नाम आज भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की सबसे चमकदार अभिनेत्रियों में लिया जाता है। उनकी फिल्म मुगल-ए-आजम में अनारकली का किरदार आज भी अभिनय की महान मिसाल माना जाता है। उनकी मुस्कान, मासूमियत और अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। अगर हम संक्षेप में यूं कहें कि मधुबाला का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें संघर्ष, सफलता, प्रेम, पीड़ा और अमर विरासत सब कुछ समाहित है। उन्होंने बहुत छोटा जीवन जिया, लेकिन अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत उनकी ऐसी अमर फिल्मों में से जो एक है।

0: प्यार किया तो डरना क्या। मुगले आजम फिल्म का ये गाना सिर्फ गाना नहीं बल्कि ये भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर है। इसके पीछे दो सबसे बड़े किस्से बहुत ही मशहूर हैं। नौशाद और गीतकार शकील इस गाने की धुन को और बोल को तैयार कर रहे थे। दोनों पूरी रात जागते रहे लेकिन सही बोल नहीं मिल रहे थे। सुबह तड़के नौशाद को एक लोकगीत की पंक्ति याद आई, प्रेम किया क्या चोरी की। इसी को आधार बनाकर शकील ने तुरंत लिखा, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की।
1: आइए अब मैं आपको बताऊंगी इस गाने में जो कि मधुबाला ने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर झेला, भारी जंजीरों का असली दर्द उन्होंने अपने ऊपर इस कदर से झेला था कि इस गाने और पूरी फिल्म में जब अनारकली यानी मधुबाला को जेल में दिखाया गया था तो उन पर असली और बेहद भारी लोहे की जंजीरें बांधी गई थीं। मधुबाला उस समय दिल की गंभीर बीमारी से भी जूझ रही थी लेकिन उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी और उसके बावजूद इतनी प्यारी अदाकारा होने के साथ साथ इस गाने को आज भी जब भी हम लोग देखते हैं और सुनते हैं तो ज़रा सा भी फील नहीं कर पाते हैं, ज़रा सा महसूस नहीं कर पाते हैं कि इतनी भारी जंजीरों का दर्द उन्होंने कैसे झेला होगा। भारी जंजीरों के कारण उनकी त्वचा भी छिल गई थी और वे दर्द से तड़प रही थी लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आने दी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को एक नए अंदाज में।

एक लड़की भीगी भागी सी, ये बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित और रोमांटिक बारिश के गानों में से एक है। इसके पीछे की कहानी काफ़ी मज़ेदार है। किशोर कुमार हॉलीवुड और वेस्टर्न म्यूज़िक के बहुत बड़े दीवाने थे। वे इस गाने के लिए कुछ अनोखा संगीत चाहते थे। उन्होंने संगीतकार SD वर्मन से जिद की कि गाने की शुरुआत किसी वाद्य यंत्र से नहीं बल्कि गैराज के औजारों की आवाज़ से होनी चाहिए, और फिर वैसा ही हुआ। और जब ये गाना बना और सभी ने सुना तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, ये सॉन्ग ये गाना तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। और मेरे हिसाब से जब कभी कोई भी रोमांटिक कपल कहीं भी अगर घूमने जाते हैं और ये गाना ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना आज भी सभी के दिलों को गुदगुदा जाता है। इस गाने ने मधुबाला को उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया था। एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग रूप उनके देखे गए थे। फिल्म के निर्देशक शक्ति सावंत ने बताया था कि जब इस गाने की शूटिंग चल रही थी तब मधुबाला एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया की जी रही थी। एक ही दिन में दो विपरीत दुनिया जी रही थी। वे दिन के एक हिस्से में वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब डांसर के रूप में आइए मेहरबा गाने पर थिरकती थी और दिन के दूसरे हिस्से में वे मुगले आजम के सेट पर भारी अनारकली सूट पहनकर प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग कर रही होती थी। दो अलग अलग किरदारों को इतनी सहजता से निभाना उनकी महानता को दर्शाता है। तो आइए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं जो कि है हावड़ा ब्रिज फिल्म से। आप सही बोला फिल्म।

0: मुस्कानों की वो रानी हर दिल की धड़कन थी। रूप पहले पर्दे पर उतारी जो जैसे चांद की किरण थी। हर अदा में जादू था, हर नज़र में प्यार था। मधुबाला का नाम ही सिनेमा का त्यौहार था। दर्द छुपाकर भी उन्होंने हंसना सीखा। हर किरदार में जीवन का रंग सजाया। वक्त ने बहुत कुछ छीना, फिर भी वो मुस्कुराती रहीं। अपनी कला से हर दिल में अपनी जगह बनाती रहीं।
1: मोहब्बत की कहानी थी, उसके संग अमर हो गई। हर गीत हर तस्वीर जैसे सुनहरी सहर हो गई। कम उम्र में चली गई पर यादों में बस गई। पीढ़ियों के दिलों में एक रोशनी बन गई। तो आइए दोस्तों, आज इस सफ़र को यही विराम देते हैं, लेकिन मधुबाला की मुस्कान के संग हम संग मधुबाला की मुस्कान के संग हम सभी उनको सलाम करते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत थी जिनके बहुत सारी ऐसे किरदारों को हमने अलग अलग रूप में देखा। जब वो सेट पे होती थी तब भी मुस्कुराते हुए काम करती थी, जब वो एक गंभीर बड़ी बीमारी के साथ जूझ रही थी तब भी उनके चेहरे पर हमेशा से मुस्कान हुआ करती थी। तो आइए दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत को, इस महफिल को यही विराम देते हैं। मैं हूं आपकी आज ख्वाहिश
0: और मैं हूं आरजे गुमसुम।
1: भूले बिसरे गीतों की ये शाम यही थम जाए, फिर मिलेंगे अगली महफिल में। तब तक आप सभी को शुभरात्रि।
0: शुभरात्रि।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
4: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
4: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 9125-70-75-93 और 9696-74-40-06। कपड़ा फैक्ट्री।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
7: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।